0: था क्या आपका अर्ली मॉर्निंग और अभी उसके बाद का? I'm pretty sure आपने ब्रेकफास्ट कर ही लिया होगा. क्या ब्रेकफास्ट क्या है मुझे बताइए. मैंने फाइनली अपना रूटीन जो है पुराना वाला वो कैचअप करना शुरू कर दिया है, विच इज लुकिंग अमेजिंग अमेजिंग. सुबह टाइम से उठना, वैसे भी मैं टाइम से उठता ही था, उठता नहीं था, उठाया जाया करता था बाय माई लिटिल बेबी. उसके जो सुर लगते हैं सुबह सुबह, उस वजह से जल्दी उठना ही पड़ता है. बट यस, इट इज काइंड ऑफ दोस थिंग यार, लाइक बीइंग न्यू पेरेंट्स, इट्स अमेजिंग यार, अमेजिंग फीलिंग. बट यस, माय ओवर हियर व्हाट माय पॉइंट इज कि आप मुझे बताइए आपने आपके जो मॉर्निंग है कैसे गया. मैं सुबह अभी ऑब्वियसली 8 बजे उठ गया एंड देन उसके बाद किंडी छोड़ दिया, किंडी के बाद खुशबू को ऑफिस भी छोड़ दिया एंड नाउ आई एम हियर एट रेडियो. जी हाँ, सो यस, बहुत ही अमेजिंग दिन जा रहा है एंड आई होप कि पूरा दिन ही ऐसा मौसम जो है खुला रहे और बहुत ही सुहाना रहे. बट यस, आप बने रहिए अनटिल 3. मेरा नाम केतन है और बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे गपशप करने हैं और अमेजिंग अमेजिंग कॉन्टेंट भी आपके लिए लेके आने. होम सिक रेमेडीज के लिए आप मुझे मैसेजेस भेजिए थोड़ी देर में, यानी कि अभी से शुरू हो जाइए.
1: बचाओ क्या,

0: honest, we're Australian.
1: Sorry about that.
0: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
1: Kogan Mobile. True Aussie value.
0: Terms and conditions apply.
2: There are easy ways to save up to $500 on power bills this winter, like only heating the rooms you're actually using, by shutting doors and blocking sneaky gaps, or turning off appliances that aren't in use, especially the ones you might have forgotten were even on, or by checking if an off-peak plan is right for you to make the most of when power's cheaper. For more winter saving advice, visit EECA, that's EECA.govt.nz.
3: Jen didn't think she needed a DVS system.
4: Oh, I've got insulation in that.
3: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
4: Ah, yeah.
3: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: As a baby, I was burnt in hot water.
6: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
7: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
8: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
9: Non-stop Bollywood.
10: Hum.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
11: Lunchbox with Ketan.
12: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
11: Hum. Office shout out.
13: वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं ऑफिस शाउट आउट की। जी हाँ, आप अपना फ़ोन उठाइए। वैसे यस, मैंने तो बोल दिया था आपको कि आप मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं 5599 पे, ताकि यहाँ पे हम मैसेजेस पढ़ें आपके दिए हुए। सो यस, आप मुझे मैसेज भेजें ऑफिस शाउट आउट के लिए, यानी कि अभी एग्जैक्टली आप वेदर यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और ऑफिस और इन द पार्क, आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं। अगर नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, बट मेन पॉइंट इज टू आस्क अबाउट व्हाट यू गाइस आर हैविंग राइट नाउ। लंच टाइम हो चुका है, और लंच बॉक्स में लंच टाइम के बारे में ना पूछा जाए ये तो हो नहीं सकता। नाम है तो ऑफकोर्स डेफिनेटली सब्जेक्ट भी है। सो यस, अपना फोन उठाइए और मुझे 5599 में भेज दीजिए दैट व्हाट यू गाइस आर ईटिंग। और मैंने एक सवाल भी किया था थोड़ी देर पहले कि आपके यहाँ पे खिचड़ी का मतलब क्या होता है। कुछ उसके भी रिस्पॉन्स आए हैं जो मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगा, बट अभी हाल फिलहाल आप फ़ोन उठाइए 5599 पे, अपने नाम के साथ मुझे भेज दीजिए एग्जैक्टली व्हाट यू गाइस आर हैविंग, एंड ऑफ कोर्स इज़ दैट बीन प्रिपेयर्ड बाय योर पार्टनर, और यू योरसेल्फ डिड इट, और योर पेरेंट्स, और यू बॉट इट फ्रॉम आउटसाइड। अगर बाहर से किया है तो कहाँ से किया है, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। बट यस, कुछ और भी अपडेट्स हैं उसके बारे में भी बात हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, और एक से बढ़कर एक अमेजिंग शोज हो रहे हैं। सबसे पहले पॉडकास्ट की ही बात कर लेते हैं। AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या यहाँ पे आए थे, और उनके साथ रुजबेन सैनी ने बहुत ही अच्छे से बात करी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। वाई? बिकॉज राइट नाउ वी आर मोर लिविंग लाइक इन AI वर्ल्ड। We are consuming not just water, not just food, but actually AI as well. Indirectly for now, for sure, but definitely we are. तो आपको पता भी नहीं है, बट ऐसी चीज़ें आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं जो AI से इर्द गिर्द ही घूमती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ़ोन है, मान लो एक ब्रांड है, ठीक है, एप्पल का फ़ोन है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, काफ़ी लोग, मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ, और ये AI लॉन्च होने से पहले, यानी कि 2-3 साल हो गए मेरे को, दो तीन साल नहीं, जब से फ़ोन आया तब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसमें सिरी करके हुआ करता था, राइट? नॉट प्रमोटिंग हेयर, नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, बट जस्ट सेइंग कि सिरी जो है वो खुद भी तो AI है, राइट? तो एक बेटा वर्जन था, एक छोटा सा ये था वो AI वर्जन जो आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं विदाउट यू नोइंग कि आप एक्चुअली AI को यूज़ करते आ रहे हैं। सो ये मत सोचना कि आपको AI कैसे समझेंगे, क्या नहीं है, समझ से बाहर, ऐसा नहीं है, काफ़ी ईजी है। इट्स जस्ट दैट आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए और वही सुनना चाहिए, और थोड़ा टाइम होके ये पॉडकास्ट जो है डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं।

0: कुछ कंसर्न्स बताए हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स बताए हैं जो आपके जहन में डेफिनेटली होंगे, और जॉब्स का क्या होने वाला है आगे उसके बारे में भी है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी AI के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स आप अपने स्किल्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं बाय यूजिंग द AI टूल्स फॉर द फ्यूचर। ये कॉन्वर्सेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए। आप हमें ड्राइव लिखिए और 5599 में भेज दीजिए। पर ये रहे कुछ मैसेजेस जो मुझे जस्ट मिले हैं। रोहन कहते हैं, होममेड खिचड़ी टुडे, मम सेज इट्स परफेक्ट फॉर दिस वेदर। माहौल तो गर्म है थोड़ा सा बाहर, नॉट टू गर्म, बट यस इट इज सो यप। उसके बाद सारा कहती हैं, आवर टीम ऑर्डर बर्गर्स फॉर द लंच टुडे, बेस्ट मंडे एवर। डेफिनेटली इट साउंड सो यमी यार, थोड़ा इधर भी भेज देते हैं। एनीवेज इमरान कहते हैं, लंच बॉक्स पैक्ड बाय माय वाइफ दिस मॉर्निंग, नथिंग बीट्स होम फूड। वो तो है डेफिनेटली है, घर का खाना को कोई भी बीट नहीं कर सकता, एज लॉन्ग एज खुद के हो, खुद के घर का।
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंचबॉक्स। चलिए बात करते हैं आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की। बट यस, उससे पहले एक मैसेज आया था, थोड़ा लेट हो गया था तो मैं ऑफिस शाउट आउट में ऑब्वियसली बोल नहीं पाया क्योंकि उनका मैसेज मुझे लेट रिसीव हुआ। बट देयर इज समवन हु सेंट मी द मैसेज विदाउट नेम एंड सेइंग दैट आई जस्ट हैड यमी क्रैब करी एंड राइस। वाओ, दैट मस्ट बी वेरी वेरी यमी। दो आई डोंट ईट, बट द वे हाउ यू हैव रिटन इट मोर साउंड लाइक इट डेफिनेटली मस्ट बी वेरी वेरी यमी। एक्चुअली पता नहीं क्यों, आई हैव सीन, ये देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ऑब्वियसली प्योर वेजिटेरियन ही था, प्योर वेजिटेरियन था, लेकिन व्हेन आई वाज इन इंडिया। ऑब्वियसली मेरी मम्मी को पता है, नाउ ईट आई ईट नॉन वेज एज वेल, सो दैट्स फाइन। बट यस, मेरी जो शुरुआत है वो बहुत ही दोस्तों के मज़े के कारण हुई। मुझे पनीर बोल के मुझे चिकन खिलाया गया था, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऐसा हार्श नहीं कि मैं नहीं खा सकता, ऐसा नहीं है, और ना ही उन्होंने कोई अगेंस्ट जाके किया था, बट इट्स जस्ट दैट मैं खुद में ही इतना था कि नहीं ये नहीं खाना। बट देन उन्होंने इस तरह से शुरू किया और जब मैंने खाया तो ऐसा खाया कि आज तक खा रहा हूँ मैं, और उस बात को करीबन 20 साल हो गए। जी हाँ, देखिए टाइम कहाँ से चलता है। वैसे आपकी भी स्टोरी में जानना चाहूँगा कि इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन कन्वर्टेड, नॉट बाय बर्थ बट ऑफकोर्स कन्वर्टेड नॉन वेजिटेरियन, तो आई वुड लव टू हियर सम स्टोरी कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी। बट अभी के लिए हाल फिलहाल यस, हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड पे बात कर लेते हैं। एक काफ़ी इंस्पायरिंग हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था आज के दिन, 29 जून 1990 की ये बात है, जब डॉक्टर पेनी जेमिसन, दुनिया की पहली फीमेल एंग्लिकन डायसन एंड बिशप बनी, और उन्हें न्यूजीलैंड के डनेडिन का बिशप अपॉइंट किया गया। ये सिर्फ उनकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं बल्कि दुनिया भर की एक वुमेन के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन भी था, और उस समय कुछ लोग इस डिसीजन से काफ़ी खिलाफ थे, लेकिन डॉक्टर पेनी जेमिसन ने हिम्मत और लीडरशिप का एग्जाम्पल जो है उसे बहुत ही अच्छे से सेट किया, और टैलेंट और डेडिकेशन जेंडर से नहीं बल्कि मेहनत और कैपेबिलिटी से डिसाइड होता है, ये उन्होंने दिखाया।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
2: We pulled it off, Johnny. We're rich!
3: Oh, no. I've left my glasses in the vault.
2: What? You're kidding me? Oh, they'll be covered in your fingerprints.
3: Oh, Pete! I went to Specsavers and got a smudge-resistant coating. They're not going to find a single print.
4: Someone's been to the Specsavers winter sale. There's 50% off lens options, including light reactive, drivewear, and smudge-resistant. With two pairs from $169 or above. Limited time, conditions apply.
3: I think I dropped my wallet, too.
5: There are easy ways to save up to $500 on power bills this winter, like only heating the rooms you're actually using, by shutting doors and blocking sneaky gaps, or turning off appliances that aren't in use, especially the ones you might have forgotten were even on, or by checking if an off-peak plan is right for you, to make the most of when power's cheaper. For more winter saving advice, visit EECA, that's eeca.govt.nz.
6: Lunchbox with Ketan.
7: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी। हम
8: चटनी शॉट्स। वेलकम बैक। चलिए चटनी शॉट्स पे आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम अभी न्यूज पढ़ लेते हैं। अभी की क्या है आज की ताजा खबर? वेल, ऑकलैंड हाई कोर्ट ने एक फ्रिंज रिलीजियस ग्रुप के लीडर को किडनैपिंग और मैनस्लॉटर का गिल्टी करार दिया है। ये एक कोर्ट केस के बारे में बात हो रही है जो रिसेंट न्यूज में आया है, और ये केस करीबन 70 साल के शुलाई वोंग की डेथ से जुड़ा है, जिनकी बॉडी प्लास्टिक बैग्स पे लपेटी हुई एक फिशरमैन को मिली थी। वैसे कोर्ट ने एविडेंस देखने के बाद फैसला भी लिया था कि विक्टिम को इलीगल तरीके से रोका गया और उनकी डेथ के लिए जिम्मेदारी जो थी। और ये केस हमें ये भी याद दिलाता है कि कोई भी ग्रुप या बिलीफ लॉ से ऊपर नहीं होता, और हर इंसान की सेफ्टी और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे इस इंसिडेंट ने हमें ये तो सिखाया कि मिलती है कि जस्टिस सिस्टम सच में सच का सामना करना और विक्टिम्स को इंसाफ दिलाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक फ्यूचर के लिए एक स्टैंड भी होता है कि आप जो नेक्स्ट होपफुली कोशिश ये रहती है कि कोई दूसरा ये जो जुर्म हुआ है वो रिपीट ना करे। जी हाँ, ये एक मेन इंटेंशन होता है, बट होपफुली दैट इज ग्रेट कि फाइनली कुछ तो डिसीजन हो गया है फाइनली।

ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है, रुक तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां तो जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: वेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Weather ke hal chal aaj 16 degrees maximum temperature rehne wala hai, 7 degrees aaj ka minimum temperature rehne wala hai. Kaafi sunny hai, moderate southerly winds bhi hone wali hai, lekin barish ke aasar aaj nahi dikha rahe hain. Sunset hoga 5:15 pe.
0: Lunchbox with Ketan.
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
0: लंच के मंच पे लंच बॉक्स विद केतन
3: आ गया.
1: क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में. वेल यस, काफी कुछ बातें बतानी है आपको. इफ यू आर अ बिग फैन, सबसे बड़ी बात पता है क्या बतानी है? हम ऑब्वियसली इतने सेलिब्रिटीज आने यहाँ पे हैं, उनके शोज के आपको हम मौके देते हैं टिकट जीतने के. आज एक और महारथी के लिए टिकट्स हम यहाँ पे देने वाले हैं, मौके आपको जहाँ पे आप उस पे पार्ट लेके जीत सकते हैं ढेरों इनाम. एज यू ऑल नो, 25 अगस्त को कोई आ रहा है. एनी आइडिया कौन आ रहा है बताइए मुझे 5599 पे. 25 अगस्त को आ रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सिंगर यहाँ पे. कौन है आप मुझे 5599 पे बताइए, बिकॉज उन्हीं के बारे में एक कॉम्पिटिशन में रन करने वाला हूँ इस आर में, ताकि आप जीत सकेंगे. मौका है आपके पास एक डबल पास जीतने का. बढ़िया, सबसे पहले बताइए 25 अगस्त को कौन आ रहा है, बताइए मुझे 5599 पे. बट यस, थोड़ी देर में आपको लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी कॉल करने को मैं बोलूंगा कि कुछ ऐसी बातें बताइए या फिर कुछ और भी धमाकेदार जो थिएटर्स हो रहे हैं यहाँ पे उनके बारे में बात होगी. बट यस, सुनते रहिए और एंजॉय करिए मेरा शो. डाउनलोड रोआ ऐप, उसके जरिए भी आप मुझे सुनिए, बिकॉज रोआ ऐप के जरिए आप हमें कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं बिना किसी फ्रीक्वेंसी एरर के.
0: बचाओ क्या,

0: से ले जाएंगे।
1: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
2: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
1: कौन है?
2: Hunua और Waitakere।
1: अच्छा Hunua west में?
2: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप।

0: Media Voice complaints. How can I help?
1: My kids won't shut up.
0: I'm not sure that's our problem.
1: They keep reciting lines from one of your radio ads.
0: Aw, cute.
1: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
2: What do you want, son?
3: I want me some of that real southern chicken.
1: 28 times.
0: So where are you now?
1: Eating chicken.
4: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
5: Film bilkul fake aur danger ekdam real. India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle, starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Warsi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
6: Ek zabardast kahani hai.
7: Aur title kya hai film ka?
6: Welcome to the Jungle.
5: Welcome to the Jungle, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films, rating TBC.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
9: हाँ। अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
11: लंच बॉक्स विद केतन
12: मुझे पसंद है लड़का
11: हम लंच टाइम रेंट लाइन
13: चलिए लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आपके लाइंस जो हैं फ़ोन की वो हो चुकी है शुरू आप मुझे कॉल करिए और बताइए कुछ ऐसी चीज़ जो आपके साथ अभी हाल फिलहाल हुई है सो यस आई मीन इन द मॉर्निंग और एनीथिंग मेरा वीकेंड में हुआ था सेम थिंग यहाँ पे मैंने नोटिस किया पता है मैं एक्सट्रीम साउथ गया था एक्सट्रीम साउथ ऑकलैंड और वहाँ पे ये सिचुएशन हुई दैट आई वॉज ड्राइविंग एंड ये पता नहीं मेरे साथ ड्राइविंग में बहुत होता है बहुत बहुत ज़्यादा होता है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली राउंड अबाउट आया एंड आई हैड टू गिव वे टू द राइट पर्सन राइट लेफ्ट वाले को मुझे देना है मतलब वो गिव वे मुझे देंगे एंड आई वॉज लिटरली ड्राइविंग एंड सडनली उधर से कैरेविन जो है वो अंदर से वो उसने निकाल दी उसको लेफ्ट लेना होगा उसने भी निकाल दी सेम टाइम लिटरली आई हैव टू स्टॉप इन बिटवीन और मैंने उसको अंदर बैठे बैठे इशारा किया कि भाई क्या है ये एंड देन मुझे कहना नहीं चाहिए बट अन यू नो बहुत ही गुस्सा भी आया मेरे को बाद में रियलाइज़ मैंने हॉर्न क्यों नहीं बजाया बेसिकली उसने मुझे बहुत ही गंदा वाला साइन दिया मुझे वाइल्ड टेकिंग लेफ्ट एंड देन ही जस्ट लेफ्ट एंड आई वाज लाइक यार मेरे को उस टाइम क्यों नहीं क्लिक किया कि मैं उस पर हॉर्न बजा सकता था कुछ भी बजा सकता था बट मैं कुछ किया नहीं मुझे लगा शायद आगे रुकेगा तो मैं बस उसके पीछे जाता रहा और सडनली वो निकल गया सो या मतलब मेरे को थोड़ा फील हुआ कि यार क्यों नहीं किया मैंने कुछ ऐसा आपके साथ ऐसा कभी हुआ है अगर हाँ तो मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए ऐसा कुछ हुआ है और आपने उस टाइम क्या किया है अगर नहीं किया है तो क्या करना चाहिए आई मीन इन अ गुड वे क्या सही रहता ताकि सामने वाला सीखे कि भाई ये क्या ये तरीका सही नहीं था

0: तो अगर यहाँ पे कोई है जो मेरे साथ शेयर करना चाहता है 0800 004866 पे, तो मुझे बता सकता है। टेक्स्ट भी भेज सकते हैं आप मुझे 5599 पे। But there you go, कुछ मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले आया है नेहा का, Why does everyone break for no reason on the motorway? ट्रैफिक होगा इसलिए मे बी, उसके अलावा तो कोई क्यों रोकेगा, मतलब हाँ आई डोंट नो, हाँ हो सकता है ट्रैफिक ही हो, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो, मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर आपने किया है तो यार कंसर्न वाली बात तो है, काफ़ी रिस्की भी है कि अचानक से कोई ऐसे रिस्क बना रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो इट इज़ नॉट गुड। अमित कहते हैं पीपल हु डोंट रिटर्न शॉपिंग ट्रॉलीज, व्हाई? यार मैं तो करता हूँ, इतना मुझे पता है, मतलब मैं जब शॉपिंग करता हूँ ट्रॉली बाहर लेके जाता हूँ और ट्रॉली वापस वहीं रखता हूँ जहाँ से मैंने उठाई है, और अगर वो आउट ऑफ रीच है तो मैं आसपास देखता हूँ कहाँ पे झुंड का पड़ा हुआ है, वहीं पे मैं रख देता हूँ। बट आई डोंट कीप, बिकॉज आई हैव सीन मैनी मैनी वीडियोज़ जहाँ पे क्या है कि कभी भी वेदर ख़राब हो सकता है, यहाँ पे अगर विंड बहुत ज़्यादा है तो जस्ट इमेजिन वो ट्रॉली जो है आपने ऐसे ही लेफ्ट ओवर रख दी, कहीं पे भी लावारिश की तरह रखी और वो ट्रॉली इतना तेज़ से हवा की तरह जाए जा रही है, सडनली उसने बैंग कर दिया किसी कार को। अब वो बेचारा कार वाला भी क्या करेगा, उसने देखा नहीं कि भाई वो ट्रॉली किसने रखी है, और जिसकी है वो भी नहीं पता भाई कि वो ऑब्वियसली क्या करे। तो हाँ, अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वापस उसी जगह रख दिया करो, क्योंकि पता नहीं कल को किसी और ने भी रख दिया और वो फिर आप ही के साथ हो गई, यू नेवर नो, राइट? इट एंड इट इज़ नॉट गुड एज वेल, बट यस थैंक यू। लगता है कोई शेयर नहीं करना चाहता आज रेंट लाइन, रेंट वाली बातें कोई शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए किसी ने फ़ोन नहीं किया अपार्ट फ्रॉम मैसेज। बट थैंक यू सो मच नेहा एंड अमित भाई, थैंक यू सो मच। आप एंजॉय करिए अगला गाना तेरे पास में, दीपाली सहाय की आवाज में, टॉप हिट ऑफ द आर में।
1: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: स्वागत करते हैं फिर से आज के लंच बॉक्स शो में। चलिए अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मार्क मिशेल एक चैरिटी रग्बी मैच खेलते वक्त गिर गए और उनकी दो रिब्स टूट चुकी है। ये मैच रंबल इन रसल नाम की चैरिटी इवेंट्स का हिस्सा था जहां एमपीज फॉर्मर्स और ब्लैक्स और मीडिया पर्सनैलिटी ने कम्युनिटी के लिए फंड रेज किए। इंजरी के बाद भी मार्क मिशेल्स ने मजाक में कहा कि उन्हें फनी मैसेजेस मत भेजना क्योंकि हंसी और खांसी ब्रोकन रिब्स के साथ बहुत दर्द देती है और वो अगले ही दिन अपने काम के लिए वेलिंगटन भी लौट चुके हैं। वैसे इस इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिला, ये कम्युनिटी सर्विस और चैरिटी के लिए लोग कभी कभी रिस्क भी लेते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स हमें टीम वर्क करेज और डेडिकेशन की इंपॉर्टेंस भी सिखाता है। यहाँ पे कोई है जो शेयर करना चाहे मैसेजेस के थ्रू 5599 पे, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स डू यू यूजुअली गो नॉट फॉर समथिंग टू सीक आउट बट जस्ट फॉर फन सो दैट आप अपने दोस्तों के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कर सको, बताइए 5599 पे आप मुझे भेज सकते हैं इसका जवाब।

na na. बहुत ही प्यारा गाना यार. Painted Red, विशाल ददलानी, शंकर महादेवन और भी अनगिनत इसमें सितारे जो सेलिब्रिटीज हैं, लेजेंड्स हैं, उन्होंने अपनी आवाज दी है. पर यस, आप बने रहिए. गाने से याद आया, ऑफ कोर्स मेरा भी एक गाना लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द, 10 तारीख को. मैंने टीजर डालने भी शुरू कर दिए हैं. आप मेरे सोशल मीडिया पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि क्या कुछ पोस्ट कर रहा हूँ. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, द सिंगर साहेब, SAHEB. जी हाँ, ये साहेब की स्पेलिंग है, नॉट साहब. सो यस, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और जस्ट केतन कुमावत के नाम से भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी, एंड डू फॉलो मी ताकि आप मेरे अपडेट्स जो है वहाँ पे दे सकते हैं. वैसे हम भी, आप फॉलो करिए हमें, हमको, बिकॉज उसके ज़रिए भी आप सुन सकते हैं. बट 10 जुलाई को मेरा नया म्यूज़िक वीडियो लॉन्च होने वाला है जिसे आप इन्जॉय करेंगे, बहुत ही बढ़िया. एंड देयर वी गो, अभी ऑकलैंड आप सभी रेडी हो जाइए, एक बहुत ही बढ़िया एंटरटेनमेंट आने वाला है जो बहुत ही ज्यादा वाला, मतलब मुझे पर्सनली बहुत मजा आने वाला है. गुड जुबाइन एक्सचेंज ऑफर शेयरिंग द लेजेंडरी स्टारिंग कौन, वन एंड ओनली स्टारिंग सिद्धार्थ रंडेरिया. जी हाँ, काफी फेमस है अपने शोज को हाउसफुल करवाने में, उनके लास्ट मिनट में भी सोल्ड आउट हो ही जाते हैं. और यहाँ पे आपके पास मौका है बिफोर इट गेट्स सोल्ड आउट बाय एनीवन एल्स, आप टिकट ले लीजिए बिकॉज ज्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं. 3 जुलाई को होने वाला है 7:30 बजे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में इनका शो. कैसे एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफर, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ साथ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आते हैं, एक से बढ़कर एक डायलॉग है और ऑफकोर्स क्या एक्टिंग हुई है. तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, बहुत मेहनत की इन्होंने, आप गुजराती ह्यूमर भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो यस, होल फैमिली अपने दोस्तों के साथ जाइए और विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर जो कि 3 जुलाई को 7:30 बजे के बाद आप एंजॉय कर सकते हैं. premierticket.co.nz पे जाके आप टिकट ले सकते हैं. लंच बॉक्स विद केतन, हीरा लड़का है,

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
2: Get fresh deals from the fresh food people at New World North Island. Get skinless chicken thigh cutlets $11.99 per kilo or new season avocado $1.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: As a baby, I was burnt in hot water.
4: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
5: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
6: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
7: Lunchbox with Ketan.
8: Iske peeche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
7: Iske peeche. Lunch ke munch pe.
9: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। यहाँ पे हम फटाफट से बॉलीवुड की खबर ले लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिकॉर्ड्स भी हो रहे हैं, काफ़ी कलेक्शंस भी हुए हैं बॉलीवुड की फिल्मों में, जो बात करेंगे हम थोड़ी देर में। बट सबसे पहले अभी ये खबर बता देते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है। डायरेक्टर इम्तियाज़ अली अभी फिर से लाइमलाइट में है बिकॉज ऑफ अभी की जो मैं वापस आऊँगा फिल्म से। बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन हुई, बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग भी उन्होंने की है। सो यस, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये भी रिवील किया है कि उनकी जो पुरानी फिल्म है जब वी मेट, जिसमें करीना कपूर और शाहिद कपूर ने रोल किया था, तो जब वी मेट बनने में शाहिद कपूर को बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बताया कि वो शाहिद और किसी और फिल्म के लिए मिले थे, लेकिन शाहिद ने ट्रेन में मिलने वाले एक लड़के और लड़की की स्टोरी के बारे में पूछा। जब इम्तियाज अली ने वो स्टोरी सुनाई तो शाहिद को वो इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने कहा कि वाई आर नॉट वी मेकिंग दिस फिल्म, और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से जब वी मेट शुरू हुई। यानी कि इम्तियाज अली किसी और स्क्रिप्ट के लिए उनके पास गए थे, बट देन ही आस्क कि यार मेरे को वो वाली स्टोरी बताना जो आप एक बार मुझे आइडिया बता रहे थे, वो ट्रेन वाली जहाँ पे एक लड़का एक लड़की मिलते हैं वो। एंड देन इम्तियाज अली ने वहाँ पे बताना शुरू किया एंड ही एक्चुअली फेल इन लव, एंड ऑफकोर्स उसी टाइम फेल इन लव विथ यू नो हु आई एम टॉकिंग, जो ऑब्वियसली आगे ज़्यादा बड़ी नहीं बट यस, इसी वजह से जब वी मेट बनी और आप सभी के सामने एक आइकॉनिक फिल्म बन के रेडी हुई। और इसी वजह से 2007 की जो सबसे आइकॉनिक रोमांटिक मूवी में से एक भी माना जाता है, और आज भी हम जैसे लोग, शायद जेन जी इतना रिलेट नहीं कर पाए, बट यस हम जैसे लोग आज भी अगर इस फिल्म को देखें तो हमें बुरा नहीं लगता, एंड वी स्टिल गेट सेम एंटरटेनमेंट फ्रॉम दिस फिल्म, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप भी। बताइए मुझे 5599 पे, डू यू स्टिल वॉच टुडे, लाइक वुड यू बी ओके इफ यू वॉच इट टुडे विद योर फैमिली और फ्रेंड्स।

0: क्या नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, बोला आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो, जो आप हमें सुनते हैं हम 104.2 FM के जरिए। एंड एज आई ऑलवेज मेंशन दैट अगर आपको फ्रीक्वेंसी एरर आ रहा है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, रोआ ऐप इज द थिंग जो आप बिल्कुल चला सकते हैं और आप आराम से सुन सकते हैं। वैसे आई एम नॉट श्योर अगर वो डिस्प्ले का सीन है या नहीं है, डेफिनेटली अगर नहीं है तो वी शुड बी वर्किंग ऑन दैट, बट अगर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जो कार डिस्प्ले होता है वहाँ पे ऑब्वियसली जो इंस्टॉल हो जाता है तो उसमें शायद यू कैन प्ले द रोआ एज वेल, और उसके जरिए भी यू कैन हैव एक्सेस एंड यू कैन एंजॉय अस एनी टाइम एनी वेयर, चाहे प्ले लिस्ट हो या फिर बहुत सारी अलग अलग यू नो रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि कुछ पॉडकास्ट हो गए या फिर हमारा रेडियो है जो आप हमेशा सुनते ही हैं 24/7, और उसके साथ जो प्लेलिस्ट जो मैंने बताया कि 1960s के गाने, 70s, 60s, 70s एंड देन 80s के गाने, उसके बाद राहत फ़तेह अली खान जी के गाने वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, जिसके बारे में बहुत ही यू नो अच्छे से प्रमोशन करें तो उनके बारे में बात होगी। बट यस, ये सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं कम्प्लीटली फ्री। और डेटा की अगर आपको लगता है कि यार डेटा बहुत कंज्यूम होगा, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि आप जो स्टोरी डालते हैं ऑनलाइन, जितना डेटा 20 सेकंड के स्टोरी पे जो कंज्यूम होगा इज इक्विवेलेंट टू लिसनिंग टू अस थ्रू रोवा फॉर 1 आवर। यहाँ 1 घंटे तक आप सुन सकते हैं उस 20 सेकंड के वीडियो जो आप ऑनलाइन डालते हैं, इतना कम यू नो डेटा आपका कंज्यूम होगा। बट यस, आप बने रहिए, बिकॉज इस आवर में आपको बताना है कि कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव लेके आ रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल चीज लेके आए जहां पे आप जीत सकते हैं डबल पास इस इवेंट के लिए, तो आप बस बने रहिए। और एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट भी मेरे को आपको देनी है, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए लंच बॉक्स शो में।
1: बचाओ क्या,

वेल ये तो गाना तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत काफ़ी एनर्जी वाला था, बट आई थिंक यहाँ पे जो इंडियन क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा होगा कल का दिन, कल का आज का एक ही बात बोल दो बिकॉज मिडनाइट थी वहाँ पे। बट यस, इंडिया एक तरफ आयरलैंड, इंडियन मेन क्रिकेट टीम एक तरफ आयरलैंड के अगेंस्ट हारी है, नॉट अ ग्रेट डे, ऑफ कोर्स नॉट अ ग्रेट डे, और हारी तो ठीक है, सीरीज हारी है जो कि पहली बार हुआ है। सवाल फिर से उठने लग गए हैं, पहली बार तो आयरलैंड के अगेंस्ट हारी है सीरीज, और सवाल इसके उठ गए हैं दैट गंभीर के एरा में ये एक और चीज़ आ गई है, तो काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं ऑडियंस की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, फैंस की तरफ से, कि गंभीर के एरा में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सचमुच नामुमकिन के बराबर है। काफ़ी यू नो अनएक्सपीरियंस नहीं बोलूँगा, पता नहीं इसको सही है बोलना नहीं बोलना, बट रैंकिंग के हिसाब से देखें तो ऑफकोर्स ये टीम जो लाइक इंडिया इज़ अ चैम्पियन, इंडियन मैन क्रिकेट टीम्स आर अ चैम्पियन, करंट चैम्पियन, पास्ट चैम्पियन एज वेल, और उनको हराया है आयरलैंड ने 2-0 से, माई गुडनेस। और दूसरी तरफ वुमेंस, इंडियन वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का जो आगाज़ था वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है भारत की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया से हारी है, नॉट अ ग्रेट डे अगेन, जो देखा था अगर स्कोर बोर्ड की अगर बात करें तो काफ़ी क्लोज मैच रहा है वैसे, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 3 रन और चाहिए थे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर रहते हुए मैच जीत लिया, यानी कि 6 विकेट से मैच जीता है, इंडिया पहले खेलते हुए 170 पे 4 बनाए जो कि डिसेंट स्कोर था, नॉट वेरी बैड, बट आई थिंक बॉलर्स और फील्डर्स ने उतना अप्रोप्रिएट यू नो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया, और उस वजह से 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीत गई है और अब ऑफकोर्स पहुँच चुकी है आगे, सो दैट्स गोना बी क्रूशियल। नाउ इंडिया का जो चैप्टर है यही खत्म हो गया 2026 के T20 वुमेन वर्ल्ड कप का, बट लेट्स सी अभी क्या होता है, काफ़ी कुछ यू नो डिसअपॉइंटमेंट तो देखे ही है, मिक्स रिएक्शन भी है, बट आपको क्या लगता है जो इंडिया की हालत है, इंडियन मेंस क्रिकेट की हालत है, उसका आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार होगा, इज इट द कैप्टन और इज इट द कोच, तो यस आप मुझे 5599 पे बताइए, कुछ मैसेजेस आए हैं थोड़ी देर में उनके बारे में बात होगी, बट यस आज ऑफकोर्स 29 है तो कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें कनाडा ने 1-0 से मैच जीत लिया है, कुछ मैचेस हैं कल, तो कल देखते हैं कल क्या स्कोर रहता है, ब्राज़ील वर्सेस जापान, देन जर्मनी वर्सेस प्राग, नीदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को, इनके बीच में भी मैच है जो मेरे टाइम पे लंच बॉक्स के टाइम होगा वो होगा नीदरलैंड वर्सेस मोरक्को, उसके बारे में जरूर बात होगी। लंच बॉक्स विद केतन, हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे। वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: didn't think they needed a DVS system?
1: We've got double glazing.
0: Have you still got that cold, damp feeling?
2: Yeah, we do.
0: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
4: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much

0: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई है।
1: इसके पीछे
2: चलिए एक लेटेस्ट खबर लेके आया हूँ आपके लिए। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस, मैं जब तीन साढ़े तीन साल पहले मैं गया था 5 दिनों के लिए साउथ आइलैंड। पूरा मैंने ट्रिप मारी थी अपने कलीग के साथ, और मतलब हम दोनों की वाइफ, मतलब उसकी वाइफ और मेरी वाइफ, हम साथ में ट्रिप पे गए थे। बहुत ही मज़ा आया था। मैं बात कर रहा हूँ होकीटिका की, वहाँ की एक फेमस ड्रिफ्ट फुट साइन जो वेस्ट कोस्ट को एक काफ़ी आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाते हैं, सस्पेक्टेड वैंडलिज्म में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यानी कि अगर आप गए हो वहाँ पे तो यू विल नो कि वहाँ पे स्टिक्स को लेके उन्होंने होकीटिका लिखा हुआ है, एक बना रखा है बहुत ही। आप फोटो भी सर्च करेंगे होकीटिका, वो आएगा ही आएगा वहाँ पे, जो वेस्ट कोस्ट की एक आइकॉनिक टूरिस्ट का जो है पूरा उसको डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये साइन हर साल हजारों टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करता था और टाउन की पहचान भी बन चुकी थी। पुलिस इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिम्मेदार जो भी होगा उसकी सर्च भी जारी है। वैसे साइन को लोकल आर्टिस्ट डॉन नेल ने बनाया था और उन्होंने कहा कि एक इंसान की हरकत ने पूरी कम्युनिटी को और विजिटर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब वो लोकल वॉलंटियर्स की मदद से इसे दोबारा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट सो कूल यार, मतलब आप छेड़छाड़ क्यों करते हो? बट देखो अभी अब हम जज भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या रीज़न था, किसने किया है या फिर वेदर की वजह से हुआ है। बट इट डजंट लुक लाइक वेदर से हुआ होगा बिकॉज काफ़ी स्ट्रांग है, तो ऐसे तो देखने में तो ये लग रहा है कि किसी ह्यूमन एफर्ट से ही वो डिस्ट्रॉय हुआ है। बट लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या रिजल्ट आता है, क्या सर्च में पुलिस को मिलता है।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, काफी एक्साइटिंग मेरी आवाज दिख रही होगी, वैसे तो होती है, नहीं दिख नहीं रही होगी, सुनाई दे रही होगी। अभी हमने एक रील डाला है और उस रील में बेसिकली बताया गया है कि सैंडी को मैंने चैलेंज दिया था कि वो विद इन 5 सेकेंड हंसती है या नहीं। अब चीज ये थी कि उन्होंने क्या बढ़िया एक्टिंग करी, मुझे तो ऐसा लग रहा है एक्टिंग ही करी उन्होंने। इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने कंट्रोल की कि उन्होंने 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15-20 सेकंड तक उन्होंने पूरी रील लिखी और 1% हंसी नहीं। लेकिन अब जब मैंने रिएक्शन रिकॉर्ड मतलब रिएक्शन जो उनका था वाइल वॉचिंग दैट वीडियो, वो रिकॉर्ड उसमें हंस रही है। तो आप देखिए, जाके हमारे इंस्टाग्राम के हम पेज पे जाइए और वहाँ पे मैंने रील भी डाली ओरिजिनली और स्टोरी भी जाके देखिएगा कि उनका रिएक्शन क्या था वाइल वॉचिंग हर ओन वीडियो। जी हाँ, बट यस, एक बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास जहाँ पे आप जीत सकते हैं एक डबल पास फॉर एक अमेजिंग लाफिंग द ग्रेट कॉमेडी नाइट विद कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन न्यूजीलैंड। वेल, मेरा सवाल पता क्या है? सवाल ये है, अगर आपने सही जवाब दिया तो आप डबल पास जीतने के लिए आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, आपको क्या करना है मुझे बताइए, कृष्णा अभिषेक के जो मामा है उनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बोले तो पूरा नाम, 3 वर्ड का पूरा नाम है, वो क्या है कृष्णा अभिषेक के मामा का? ये आप मुझे 5599 में भेज दीजिए एंड देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। बट यस, ये जो शो है वो 18 जुलाई को हो रहा है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। आप टिकट अभी जाके ले सकते हैं bookmyevent.co.nz पे। कुछ दिक्कत हो रही तो उन्हें कॉल करिए 0210432720 पे। आफ्टर पे ऑप्शंस भी वहां पे अवेलेबल है। सो यस, गेट रेडी टू लाफ लाइक नेवर बिफोर। बट अभी के लिए आप अपनी जल्दी से फोन से रिप्लाई कर दीजिए, कृष्णा अभिषेक के मामा का फुल नाम क्या है, ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सके। कुछ मैसेजेस आए हैं मुझे, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या किस रीज़न से। एक ने भेजा है दिल को ज़रा सा आराम, और फिर भेजा है अपनी यादों को आई प्यार इश है, अपनी यादों को। शेल्विन भाई बताइए मुझे क्या कहना है आपके यहाँ पे, ये क्या तात्पर्य था बोलने का, प्लीज़ डू लेट मी नो। किसी का मैसेज आया है रिगार्डिंग द कृष्णा अभिषेक के मामा का नाम क्या है, क्या बात है यार, एफआस भाई ऑन टॉप ऑन टॉप। और भी भेजिए, और भी लोगों को मौके मिलेंगे, जल्दी से भेज दीजिए मुझे।

Well, guess एक जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, दैट देयर इज अ सरप्राइज. वेल, सरप्राइज को अभी भी वहीं रखते हैं. बेसिकली मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि इमेजिन करिए, एक आप सुबह उठे हो, मस्त सनराइज का व्यू आपके आंखों के सामने, एक दोस्त भी है आपके साथ, एक रोड ट्रिप जो है उसकी भी प्लेलिस्ट सेट है, बहुत सारा खाना और एंडलेस लाफ. क्या लग रहा है, क्या क्या आपके जहन में क्या आ रहा है? मस्ट बी कमिंग की यार, ये तो कोई फिल्म की स्टोरी लग रही, राइट? वेल, नो, दिस स्टोरी कुड बी योर्स, और उसी के लिए हम आपको जल्दी बताएंगे. इट कुड बी योर ईस्टर 2027. जी हाँ, इस बारे में और बातें सुनने के लिए आप बस स्टे ट्यून रहे. वैसे यस, थोड़ी देर में आपके लिए टेक टॉक भी लाने वाला हूं, यहाँ की टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नई खबर आई है, उसे भी आप वहीं रहिए, कहीं मत जाइए. आई मीन लाइक, इफ यू आर ड्राइविंग स्टिल ड्राइव, ऐसा नहीं कि बीच में एकदम रोक दिया आपने, वैसा मत करिएगा, आराम से कार चलाते रहिए, बट डोंट यू नो ट्यून ऑफ. तो आप यहीं पे रहिए और सुनते रहिए मुझे, अभी टिकटॉक की खबर लेके आता हूँ. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
2: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
3: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
4: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the redeveloped Waitemata station, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, noodles with friends in a Kingsland restaurant. In just 13 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
5: It's the last day to get a massive 30 months interest-free store-wide at Big Save. Do you need a washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? Big Save's big whiteware deals are on today. Get a Robinhood 6.5kg washing machine, only $3.98. Or a Samsung 310-litre fridge, only $8.99. We have heaps of stock. Take it home today. Get New Zealand's best value whiteware from only $3.98. Must end today, only at Big Save.
6: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
7: Non-stop Bollywood.
8: Hum.
7: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
9: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
7: Iske piche.
10: Hum.
7: Tech Talk.
11: वेल चलिए टेक टॉक के सेगमेंट में आपका स्वागत करते हैं, साथ में आपको टेक टॉक की कुछ खबरें भी बता देते हैं. वेल यस, एक इंटरेस्टिंग एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर की दुनिया की एक खबर लेके आए हूँ चाइना से. चाइना में एआई और चिप कंपनीज का आईपीओ मार्केट फिर से तेजी से ग्रो हो रहा है और इस साल टेक्नोलॉजी कंपनीज ने चाइनीज स्टॉक मार्केट से $3.1 बिलियन से ज़्यादा फंड रेज कर लिए हैं, जो पिछले साल के मार्केट के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है. और ये ग्रोथ चाइना की एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है. यानी कि अब आप और भी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगे जो चाइनीज़ ने, मतलब चाइना से प्रोड्यूस हो रही है या चाइना से क्रिएट हो रही है. सो यस, यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ मोर क्रिएटिविटी इन द टेक वर्ल्ड फ्रॉम चाइना. वेल, कई बड़ी एआई और चिप कंपनीज अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी कर रही है और इसे उन्हें नए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट मिलेंगी और इनोवेशन को बढ़ावा भी मिलेगा. वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई इंडस्ट्री फ्यूचर में जॉब्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल के अपना एआई की दुनिया से भी रूबरू होइए, वहाँ से भी पहचान बनाइए कि भाई क्या कुछ कर सकते हैं, सो दैट यू नो यू डोंट फील योर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स. जी हाँ, आप आराम से सीखिए, जितना हो सके कंज्यूम करिए इंफॉर्मेशन, सो दैट यू ऑल्सो फील लाइक आई एम इन द वर्ल्ड. जी हाँ.
7: दिल से

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, बातें और ऑफर. आपने बहुत ही बढ़िया मैसेजेस किए हैं मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप बस बने रहिए. सैंडी इज जॉइनिंग शॉर्टली इन द कॉफी ब्रेक, उनका साथ दीजिए, एंजॉय करेंगे शो. फिर उसके बाद ड्राइव शो में रूस भी उनका साथ देंगे. सो यस, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग टू हम 104.2 FM. बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3.

A very very good afternoon to you. Coffee break आपके लिए शुरू हो चुका है. You're humming along with Sandy right now. And अभी से लेकर 4 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे coffee break में रहने वाला है. So कैसे हैं आप और आपका weekend कैसा गया है? It was quite nice weekend and अभी जो weather है वो तो आने वाले दिनों में अच्छा ही दिखाई दे रहा है. जुगनों में chilly weather as well. लेकिन धूप वाला chilly weather रहता है ना तो actually में काफ़ी अच्छा रहता है. सो यस, आपका कैसा गया ये वीकेंड? बहुत ही जल्दी हम एक लॉन्ग वीकेंड की ओर भी आने वाले हैं जिसके बाद एक लंबा टाइम लग जाएगा नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड को आने में. एंड इसके बारे में खैर और भी बातें करेंगे. तो आने वाले दिनों में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या जीतने का आपको मौका मिलने वाला है, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी. स्टे ट्यून्ड.

कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। एंड रिसेंटली न्यूज आई है कि यंग ऑकलैंडर ने जीता है फॉरेस्ट एंड बर्ड यूथ अवार्ड फॉर स्विचिंग अप कंजर्वेशन सोशल मीडिया गेम। सो एबी पैटरसन जो कि यहाँ की ऑकलैंड की है, इसे मिला है फॉरेस्ट एंड बर्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड। काफ़ी यंग न्यूजीलैंडर्स को इसने इंस्पायर किया है टू केयर अबाउट द नेचर। शी मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे शी स्पेंड हर बिजी टू ईयर्स एज कम्युनिकेशन मैनेजर फॉर दिस प्रोग्राम। इसने ये वॉलंटियर रोल लिया था टू इनकरेज अदर पीपल टू इंगेज विद कंजर्वेशन एंड द ग्रुप्स इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल वर्क। तो अपनी स्किल को इसने, इंस्टा की स्किल को इसने बहुत ही अच्छे वे से यूज़ किया। एक साइंस कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस इसने हासिल किया एंड नाउ अवार्ड भी एक्चुअली में इसने हासिल किया है। वेल यहाँ पे इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करके आपके बच्चे भी ढेर सारे अवार्ड्स या ढेर सारी चीज़ें जो है, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स में एक्चुअली में शामिल हो सकते हैं। देयर सो मेनी थिंग्स दे कैन एक्चुअली गो एंड पार्टिसिपेट। कंजर्वेशन की वेबसाइट्स आप एक्चुअली में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे यंग जो लोग होते हैं एंड टीनेजर्स के लिए भी वॉलंटियर रोल्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं।

0: Streaming on Rover.
1: For a limited time, ventilate four or more rooms in your home and you'll get one vent for free. That's right, one vent for free when you purchase a DVS home ventilation system. T's and C's apply.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

बॉलीवुड मोस्ट वांटेड गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे। वैसे न्यूजीलैंड पुलिस ने एग्जीक्यूट किए हैं सर्च वारंट एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे सस्पेक्टेड ब्रीच हुए हैं ऑफ द कंट्रीज सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। तो जो रेड्स है ये कैरी हुई थी ऑकलैंड में, एंड जिसमें पुलिस, कस्टम एंड बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज भी थी। अथॉरिटीज़ का कहना है कि वो कुछ लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या बिजनेसेस की भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हु मे हैव एक्सपोर्टेड रिस्ट्रिक्टेड गुड्स टू रशिया या फिर रशिया को हेल्प किया टू ऑब्टेन आइटम्स डिस्पाइट न्यूजीलैंड सैंक्शंस। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, एंड पुलिस ने रिवील नहीं किया है कि कौन सी कंपनीज इसमें, कौन से बिजनेसेस जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। न्यूजीलैंड ने रशिया सैंक्शन एक्ट 2022 ये इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे आफ्टर रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ये जो लॉ है ये अलाउ करता है गवर्नमेंट टू बैन एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, फ्रीज करना कुछ एसेट्स को, रिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डीलिंग्स एज वेल, एंड पेनलाइज एनी वन हु नोइंगली हेल्प रशिया इवेड सैंक्शंस। सो अगर कोई कन्विक्ट होता है कैन फेस अप टू 7 years इन प्रिजन और फाइन अप टू लाइक $100,000, वाइल कंपनीज कैन बी फाइंड अप टू $1,000,000। ये मैटर क्यों करता है? बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोर हाई प्रोफाइल इन्फोर्समेंट एक्शन अंडर न्यूजीलैंड रशिया सेंक्शन रिजाइम, तो इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। पर खैर अभी भी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, डिटेल्स आएगी तो आपके साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर करेंगे।

0: सयूनी ये गाना आप सुन रहे थे, जुनून एल्बम का गाना। फिलहाल 3:32 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। ट्रेल्स के बारे में अगर बातें करते हैं ना, तो आने वाले दिनों में अगर अपना आप प्लानिंग कर रहे हैं, छुट्टियाँ प्लान करने वाले हैं, लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। बाय द वे द रूट बर्न ट्रैक मुझे पता चला है रिसेंटली, एंड द रूट बर्न ट्रैक बहुत ही ब्यूटिफुल वॉक है। न्यूजीलैंड की 11 ग्रेट वॉक्स में से एक है। ये रिगार्डेड है एज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट ब्यूटिफुल एक्चुअली में हाइकिंग के लिए। सो द इट्स 33 किलोमीटर दो, एंड ये आपको फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क के थ्रू, देन माउंट एस्पायरिंग नेशनल पार्क, ये सब आपको बीच में मिलेंगे। काफ़ी ट्रैम्पर्स जो है इसे 2-4 डेज में कंप्लीट करते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से सर्च करते हैं, देन यू प्लान इसके बारे में। एंड वहाँ पे वाटरफॉल्स भी हैं, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बीच आपको मिलेगी, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड नेटिव वाइल्ड लाइफ भी है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। सो ये जो वॉक है, ग्रेट वॉक है, ये 33 किलोमीटर की है वन वे, 2-4 डेज के बीच में कम्प्लीट होती है। डिफ़िकल्टी इसकी इंटरमीडिएट यहाँ पर लिखी है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब इंटरमीडिएट लिखा होता है तो थोड़ा टफ होता है हमारे लिए। अगर इजी लिखा होता है तो इंटरमीडिएट है, अगर इंटरमीडिएट लिखा है तो मतलब हार्ड है वो। सो यस, इट कैन बी हार्ड एंड चैलेंजिंग इन विंटर बिकॉज स्नो भी रहती है। सो बेस्ट टाइम विल बी टिपिकली नवंबर टू अप्रैल, बिकॉज जो हट्स है, कैंप साइज जो है वहाँ पे होती है, लेकिन एडवांस में उसकी बुकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेक श्योर यू गो टू द वेबसाइट, इनकी जो वेबसाइट है एक्चुअली में doc.govt.nz, वहाँ पे पार्क्स एंड रिक्रिएशंस में जाएगा एंड रूट बर्न ट्रैक आपको मिलेगा। सो आई एम जस्ट रीडिंग कि इसे फ़िलहाल विंटर के लिए रिमूव किया गया है बिकॉज स्लिप्स भी वहाँ पर होती है, बट इट विल बी ओपन फॉर द समर। सो मेक श्योर वहाँ पर जाके आप बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा, एंड या यू कैन बुक इट। रूट बर्न के बाय द वे स्पेलिंग है ROUTE, रूट बर्न ट्रैक। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट फॉल इन ग्रेट वॉक इन न्यूजीलैंड। ट्रेल चेक।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड। जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं। हम

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल काफी कमाल, फील्स लाइक 14 डिग्रीज. ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 6 डिग्रीज टुनाइट. काफी कोल्ड नाइट होने वाली है आज. 5:15 पे होगा सनसेट. कल का दिन भी वेरी ब्यूटीफुल, ब्राइट, सनी एंड वेरी कोल्ड एज वेल.

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
3: चार बजकर दो मिनट हुए हैं. गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे. हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून.
4: गुड आफ्टरनून रुज़बे, कैसे हो तुम?
3: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ सैंडी. हाउ आर यू डूइंग? हाउ वाज योर वीकेंड?
4: वीकेंड वाज गुड, वेरी बिजी बट गुड वीकेंड.
3: गुड वीकेंड,
4: या.
3: अच्छा,
4: व्हाट अबाउट यू?
3: आपने हाइक वाइक पे जाना बंद क्यों कर दिया यार?
4: क्यों?
3: नहीं, ऐसी मैं जस्ट इन जनरल पूछ रहा हूँ.
4: ये वाला बिजी था, उसके नेक्स्ट में जाऊंगी ना हाइक पे.
3: अच्छा ठीक है,
4: या. क्या हुआ?
3: नहीं नहीं कुछ नहीं, बहुत ही बढ़िया. जाओ यार थोड़ा हाइक वाइक पे, ऐसा ब्रेक मत दिया करो.
4: क्या हुआ, तुम्हें मीट टाइम नहीं मिल रहा क्या?
3: नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल रहा मैं.
4: Okay.
3: ऐसा अच्छा रहता है ना, थोड़ा मन खुला खुला. अच्छा, बाहर हाइक पे जाना सही रहता है.
4: Yeah, 100%. Just to let you know guys, अगर आप थोड़ा सोच रहे हैं तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइक पे मैं अकेली नहीं जाती हूँ. हाइक पे मेरे साथ नुशीन भी जाती है जो कि रुज़बे की बीवी है.
3: नहीं नहीं ऐसा, इसके लिए नहीं मैं
4: और
3: बोल
4: इसलिए
3: रहा था.
4: वो खुद, आई नो, मैं कम्प्लीट नहीं किया.
3: हाँ.
4: और इसलिए रुज़बे को बड़ा अच्छा लगता है जब नुशीन ऐसा बाहर जाती है, वादियों में एंजॉय करती है. तो ही जस्ट लव्स दैट कि शी इज एंजॉयिंग राइट नाउ. एंड और फिर रुज़बे ऐसे उसको मिस करता है.
3: हाँ,
4: शी ही लव्स द मिसिंग फीलिंग.
3: दैट इज द पॉइंट कि वो मिसिंग वाला फीलिंग वो बहुत सही होता है.
4: या Oh my God.
3: अरे मतलब
4: yeah. देखो बचा लिया मैंने, मतलब
3: बहुत अच्छे से किया आपने. मैं और बोलूंगा तो हक दूंगा, इसलिए मैं अभी चुप बैठ रहा हूँ. But yeah, I think we all need like a friend like Sandy. When you behave like this.
4: When I behave like this, yeah, okay, yeah. वैसे FIFA World Cup भी हो रहा है रुज़बे, इसमें अर्जेंटीना की जीत हुई जॉर्डन से 3-1 के साथ, कनाडा की जीत हुई साउथ अफ्रीका से 1-0 के साथ.
3: अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका की हार हो गई यार.
4: या यू लाइक्ड साउथ अफ्रीका?
3: माय बॉस सपोर्ट्स साउथ अफ्रीका.
4: ओके, इसीलिए. सो अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के बीच में 3-3 के साथ आज ड्रॉ हुआ. एंड या क्वाइट इंटरेस्टिंग मैचेस. वैसे पोर्चुगल कोलंबिया के बीच में 0-0 रहा, 0-0 रहा बेसिकली. तो ऐसे मैचेस रहे, लेकिन मैसी इस समय पे छाया हुआ है अर्जेंटीना से.
3: हाईएस्ट गोल स्कोरर मैसी.
4: या सो फार.
3: कितने पता चला आपको? कितने
4: जितने भी किए उसी ने किए.
3: उसने किए, बाकी तो सब ड्रॉ ही हो रहे.
4: जितने किए हैं ये मैच में भी मेरे को लगते हैं उसी ने किए ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो लेट मी, नहीं नहीं नहीं, ये मैच में एक ही किया मैसी ने. इस मैच में एक था, चलो बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट किया इस मैच में.
3: नहीं ऐसा नहीं होता है, जब वो गोल भी मारता है स्ट्राइकर तो बाकियों का भी कंट्रीब्यूशन होता है.
4: 100% यार होता है ऐसा. कौन कौन बोला कि नहीं होता है?
3: जो सपोर्ट देता है उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है मेरे हिसाब से.
4: या बट न्यूजीलैंड के लिए बुरा लगा ओवर द वीकेंड. सो न्यूजीलैंड का मैच था, न्यूजीलैंड हारी. एंड इट वॉज डिफिकल्ट मैच दो, बिकॉज बेल्जियम के अगेंस्ट था एंड बेल्जियम इज ऑलरेडी अ स्ट्रॉन्ग टीम. सो एक ही गोल स्कोर कर पाई थी न्यूजीलैंड, वो भी सेकंड हाफ में. एंड बेल्जियम वाज ऑलरेडी लीडिंग इन द फर्स्ट हाफ.
3: अगर आपको न्यूजीलैंड के लिए बुरा लगा, आपको इंडिया के लिए नहीं बुरा लगा क्या?
4: अरे इंडिया का भी हुआ ना, इंडिया दोनों टीम्स के लिए बुरा लगा मुझे. दोनों टीम्स बाहर हो गई.
3: या वेरी सैड. या
4: सैड आयरलैंड के अगेंस्ट.
3: आयरलैंड के अगेंस्ट हार गए यार.
4: या
3: ये तो बहुत ही, लेकिन यही होता है ना जब आप इंडिया से बाहर खेलते हो सडनली. अब इंडिया में इतनी आदत हो गई थी वो पाटे, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट पिचेस की. कि अब आयरलैंड
4: कौन से वाले मैच की कर रहे हो? मेन के बारे में बात कर रहे हो?
3: हाँ, मैं मेन की बात कर रहा हूँ, T20 की बात कर रहा हूँ मैं. विमेन कप इज वेरी सैड कि वो एक्चुअली में काफी गेम में थे, बट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है भाई.
4: 100% वो ले गए गेम को. सो बट या आयरलैंड के खिलाफ जो उनकी हार हुई है, क्वाइट क्वेश्चंस श्रेया सैयर के ऊपर भी उठ रहे हैं, उसके ऊपर या गौतम गंभीर के ऊपर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं. अब कोच है या कैप्टन है नहीं समझ पा रहे लोग. बट श्रेया सैयर की बहन ऑलरेडी इन द न्यूज है बिकॉज ऑफ द लॉकअप सीजन 2.
3: ओह, श्रेया सैयर की बहन
4: है या पता नहीं कौन है. या शी इज इन लॉकअप ना.
3: मेरे को नहीं पता.
4: सो लॉकअप नेटफ्लिक्स पे आया है जिसमें फराह खान और रितेश देशमुख, एकता कपूर का प्रोडक्शन है और इसमें राम कपूर है.
3: Oh, wow.
4: या इसी में है राम कपूर.
3: Oh, इसी में है राम कपूर.
4: तो उसका एक एपिसोड आया है जहाँ पे राम कपूर भी आया है एंड गौरव खन्ना की बीवी आई है.
3: हाँ, उसने बोला ना कि उसका डिवोर्स हो गया है ऐसा कुछ.
4: एंड डिवोर्स होने वाला है.
3: Oh, होने
4: एक
3: वाला
4: साल
3: है.
4: से सेपरेट रह रहे हैं.
3: एक साल से तो अभी बिग बॉस जीत के साथ में घूम रहे थे.
4: हाँ, तो इट वॉज ऑल जस्ट ऐसे दिखाने के लिए.
3: तो ये क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं भाई? हम इंटरेस्टेड थे क्या उनके परिवार में? क्यों हमको इंटरेस्ट करवाया और फिर अभी बोल रहे क्या नहीं हम चीटे हैं, अप्रैल फूल हम नहीं है साथ में, ये क्या है? ये क्या?
4: अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट एनीवे सो या गाइस ये सब चल रहा है अभी, और भी बातें करेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: 2025 का टॉप सॉन्ग ऑन हम सफायर आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
1: यस एंड अभी खैर वक्त है कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करने के लिए. ये हफ्ता है और आपको एक्चुअली मैं अगले हफ्ते 3 जुलाई को आपको पता चलने वाला है कि इतने समय से हम ईस्टर 2027 के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं.
0: अच्छा ईस्टर 2027.
1: या यू विल गेट टू नो किस दिन बोला था हमने रुजबे 2 जुलाई को ना.
0: जी सेकंड फर्स्ट जुलाई ना. फर्स्ट जुलाई या सेकंड जुलाई.
1: सेकंड जुलाई. ओके
0: सेकंड जुलाई को बोलना है. यस
1: अगले हफ्ते नहीं इसी हफ्ते.
0: अगले हफ्ते नहीं यही हफ्ते है संडे.
1: यही हफ्ता है या.
0: ओहो हो बिग वीक.
1: बिग वीक 2 जुलाई को ड्राइव शो में आपको पता चलने वाला है कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि ईस्टर 2027
0: 2027 को लेकर क्या है
1: जो इतने दिनों से हम बोल रहे हैं. न्यू फ्रेंडशिप्स हो सकती है. रोड ट्रिप प्लेलिस्ट हो सकती है आपकी. ग्रेट फूड हो सकता है. एंडलेस हंसी हो सकती है.
0: खर्चा नहीं वो नहीं.
1: ये आपकी कहानी हो सकती है. थोड़ा ऊपर उठते हैं रुजवे लाइफ में ना. आज ही मैंने किसी से सुना है.
0: हाँ, क्या
1: कि
0: सुना?
1: बहुत कुछ होता रहता है बट लिव योर लाइफ.
0: दैट्स राइट. क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है.
1: जिंदगी 100% यार. एंड ईस्टर 2027 के लिए लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी समय हमें चाहिए प्लानिंग करने के लिए. सो मेक श्योर गाइस कि 2 जुलाई को ड्राइव शो में 5 बजे आपको पता चलने वाला है वॉट इज हैपनिंग.
0: या एनी गेसेस 5599 पे आप मैसेज कर सकते हो.
1: क्या लग रहा है आपको क्या अनाउंसमेंट होने वाली है. ऐसा क्या हम यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं. क्यों ये जो हमने अभी तक आपको हिंट दिए हैं इससे आपको क्या समझ में आया है. अगर कोई गेस है तो यहाँ पे आप बताइए. 5599 पर क्या लगता है.
0: क्योंकि हमें समझ
1: कॉल करके भी बताइए ना. कॉल करके बता सकते हैं.
0: अच्छा कॉल करके बताइए. अभी कॉल कीजिए. 0800-004-866 नंबर है. कॉल कीजिए यहाँ पे.
1: कॉल कीजिए और शेयर कीजिए क्या लगता है आपको कि किस चीज की अनाउंसमेंट होने वाली है ईस्टर 2027 के बारे में. एंड या दिस विल बी द नेक्स्ट ईयर अराउंड मार्च के बारे में बात कर रहे हैं हम.
0: कुछ मैसेजेस सुनते हैं
1: मार्च के बारे में.
0: उस मैसेजेस के टाइम पे अगर आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो तो कॉल करो. एंड
1: अदरवाइज मैसेज 5599 पर.
2: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. गूगल PFSL टुडे. अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. एंड इंडेलिबल होम्स योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स. विजिट indelibleHomes.co.nz.

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.

0: It works complaints. How can I help?
1: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
0: Thank you.
1: It's all I can think about.
0: What does it sound like?
1: Yeah, I'd rather not.
0: Go on, why don't you have a crack?
1: Okay, got a plumbing problem.
0: Oh, I need a bit more than that.
1: They've got your back.
0: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
1: Oh, okay.
2: There's no better plumber to give it a crack.
0: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
1: No, I want a plumber.
3: Advertise with
4: Media Works.
3: New Zealand listens to us.
5: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
6: Sorry about that.
5: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
7: Are you ready to go home?
8: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
9: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
10: 421 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी एंड रुज़बी राइट नाउ. वैसे हमारा जो पॉडकास्ट है ये भी आप ज़रूर सुनेगा, बिकॉज इस पॉडकास्ट में हमने इस बार एआई के बारे में बातें की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने बातें की है. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं. एआई हमारी लाइफ में है, वो एज अ थ्रेट है या फिर एआई हमें हेल्प करता किसी चीज़ में, ये सब में हम बहुत ही डिटेल में गए हैं. एंड हमारे साथ दर्शित पांडे जो कि शामिल हुए हैं, जो कि एआई स्पेशलिस्ट है. इन्होंने ऐसे समझाया जैसे एक 10 साल के बच्चे को समझाते हैं, यू नो, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए एआई की दुनिया के बारे में. ऑल्सो शेयर अबाउट कि एआई के ज़रिए जो वेरेबल टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो आगे जाके हमें ही हेल्प करने वाली है. सो थोड़ा सा बिट मैं आपको सुनाती हूँ इसका.
11: पीओसी मोड जो जोमेटो का इंडिया का जोमेटो का जो फाउंडर है दीपिंदर गोयल, ही ऑलरेडी लाइक ट्रायलिंग हिमसेल्फ. उसने उसकी कंपनी है, उसका इन्वेस्टमेंट है टेंपल करके, वो डिवाइस यहाँ पे लगा के आता है.
10: ओके,
11: सो माइंड का जो ब्लड फ्लो जाता है ना, इट विल डिटेक्ट एंड एनालिसिस एवरीथिंग, लाइक आप कितनी फ्रिक्वेंसी पे जाते हो,
12: हु इज मेकिंग यू फील हाउ, ऑल ऑफ दोस थिंग्स.
11: एग्जैक्टली,
12: बाप रे,
10: माय गॉड,
11: ये जाता है. सो ये चीज, और ये सब में मैं एक चीज़ बताऊं कि भाई सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट इतना है कि आपका टाइम तो ऑप्टिमाइज हो गया, लेकिन उसके साथ जो टाइम बचा खुद के लिए तो है, फैमिली के लिए भी है. पूरा फैमिली का टाइम बच रहा है ना. सेम मॉडल अगर फैमिली सब्सक्रिप्शन में $60 में ले लिया, तो आपको एक पैटर्न मालूम पड़ेगी कि भाई ये चीज़ ये चाहिए, मेरी वाइफ को ये पसंद है, बेटीज को ये पसंद है, ये मेरे जो वैकेशन पे जाना है, हम लोग ये ट्रिप पे गए थे, लेकिन वी लाइक दिस पर्टिकुलर होटल, वी लाइक दिस पर्टिकुलर फ्लाइट टाइमिंग्स एज वेल, क्योंकि बच्चों के साथ मैं 6 बजे की मॉर्निंग की फ्लाइट में नहीं जा पाऊंगा, राइट. तो उसको मालूम है, अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो 3-4 महीने पहले से वो एडवांस में वो चीपेस्ट फ्लाइट ढूंढना शुरू कर देगा.
12: अच्छा,
11: ताकि बच्चों के साथ जा रहे हो, आफ्टरनून फ्लाइट चाहिए, ताकि टाइम मिल पाए, ये मिल पाए.
10: यहाँ पे इन्होंने काइंड ऑफ लूपिंग के बारे में समझाया है. यू नो, प्रॉम्प्ट देना एक अलग बात होती है, लूपिंग एक अलग बात होती है. लूपिंग है कि आप उसको एक टास्क देते हो जो वो लूप में करता है, अंटिल अनलेस एक डिजायर्ड रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है. आपने जैसे बता दिया कि हमें ये फ्लाइट चाहिए, ऐसी अकोमोडेशन चाहिए, ये पसंद है मेरी फैमिली को या मुझे ये पसंद है, so it will start working on it and then give you the result eventually. But there are ways to do it. ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर लिख देंगे and आपको वो समझ में आ जाएगा. So इसी podcast में हमने ये सब बातें की है कि you know, अगर अपनी life को AI तो है ही ना, अभी AI को use कैसे करना है, उसके ज़रिए अपनी life को आपको कैसे easy बनाना है. जब भी कोई technology आती है, उसको जब हम सीखते हैं तो वो हमारा ही बेनिफिट होता है, और हमें पता चलता है कि हमें कितने लिमिट में इसको यूज़ करना है, कितना सीखना है, कितना आगे पास ऑन करना है. सिमिलर विद AI, इंटरनेट आया, फास्टली स्प्रेड हुआ, AI उससे भी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है. इनफैक्ट एवरी डे कोई ना कोई नई न्यूज़ आ रही है एआई के बारे में, बिकॉज बहुत सारी

0: कंपनीज है जो कि अभी AI को ही अडेप्ट कर रहे हैं. सो हाउ यू कैन लर्न AI एंड बेसिक आप कैसे सीख सकते हैं ताकि अपने काम में भी आप उसको यूज़ कर सके, ये सब कुछ एक्चुअली में इस पॉडकास्ट में बताया गया है. एंड हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है बिकॉज दिस इज समवन हु इज इन न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के लॉज के हिसाब से हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में एक्चुअली में इसमें हमने बातें की है. सो अगर आपको फुल पॉडकास्ट सुनना है दे आर मैनी वेज, ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा. अदरवाइज आप रोवा पे जाके सर्च कीजिए, रोवा पे जाइएगा, हम पे क्लिक कीजिए, सर्च कीजिए अनफिल्टर विद सैनी एंड रुज़बे, तो आपको हमारा पॉडकास्ट का लिंक मिलेगा जहाँ पे बिल्कुल टॉप पर ये एपिसोड आपको मिलेगा. एपिसोड का नाम है कि बिफोर AI चेंजेस एवरीथिंग लिसन टू दिस. सो ये एपिसोड आपको मिल जाएगा. अदरवाइज गो टू स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक पे जाइए, सर्च कीजिए, यू विल गेट होल एपिसोड.
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम. ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Super से ऊपर ये शो आपके लिए हम 4 से 5 के बीच लेकर आते हैं.
3: Yes, और इसमें ढेर सारी आपके साथ बातें हम करते हैं, शेयर करते हैं क्या क्या हो रहा है आपकी सुपर सिटी में और भी क्या क्या हो रहा है. मेरे पास ना आज सवाल है तुम्हारे लिए रुजबे.
2: हाँ, पूछो पूछो.
3: तुम्हें कोई ऐसा 4-letter word पता है? What is a 4-letter word with laugh in the middle?
2: With laugh in the middle.
3: Yeah.
2: 4-letter word.
3: तो आप भी गेस कीजिएगा. मैंने कहीं पे देखा एंड व्हाट इज अ 4-letter word विद लाफ इन द मिडल. अगर आपको समझ में आया है तो मैसेज करके बताइएगा 5599 पर.
2: 4-letter word विद लाफ इन द मिडल.
3: या सो इसमें आपको क्या समझ में आया गाइस? व्हाट इज अ 4-letter word विद लाफ इन अ मिडल. इस स्टेटमेंट का आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या समझ में आया? 5599 इज द नंबर.
2: अच्छा ठीक है, जल्दी फटाफट मैसेज कीजिए यार, मुझे भी नहीं पता. 4-letter word laugh in the middle, ये पक्का कोई टिकटॉक या रील पे आया हुआ आइटम है.
3: Obviously, और भी को कैसे पता चलेगा?
2: नाइस. अगर आपको पता है, आपने सुना है इसके बारे में, तो जरूर हमें यहाँ पे मैसेज कीजिए.
3: थोड़ी देर. व्हाट इज अ 4-letter word विद लाफ इन द मिडल.
2: तो क्या बोलना है इसके बारे में?
3: 5599 पे बताओ
2: क्या
3: क्या समझ में आया आपको.
2: के व्हाट इज द वर्ड जिसके लाफ इन द मिडल है, लेकिन WHAT हट है वो, तो लाफ कैसे आ गया उसमें? व्हाट इज द 4 आपने पूछा ना के बोला.
3: व्हाट इज द 4-letter word
2: ये कंफ्यूज कर लिया ऐसा सेकंड टाइम पूछ के यार.
3: ठीक है,
2: आप भी मैसेज करके बताइए 5599 पे.
4: थोड़ा तो हॉल बना दे.
5: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है. रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है.

0: emotion hai, drama hai, tragedy hai.
1: ड्राइव शो जारी है आपके लिए ओनली ऑन हम प्लिंक बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: और जो मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपको जो बताया था, आपको बताना था कि कैसे क्या समझ में आया. काफी लोगों के जवाब आ चुके हैं. व्हाट इज द फोर लेटर वर्ड विद लाफ इन द मिडल? WHAT इज द फोर लेटर वर्ड विद लाफ इन द मिडल. हाँ यार,
1: I almost got it.
2: बस उसी में फंस गए. हाँ हाँ, जरूरी नहीं है, हाँ भी तो है.
1: हाँ भी है.
2: या एनीवे गाइस, ऐसी बातें और भी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं. आपकी सुपर सिटी में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं. जैसे रुजबे की आने वाले दिनों में कॉमेडी नाइट्स ये शो होने वाला है, जिसमें कृष्णा अभिषेक राजीव ठाकुर के साथ आके यहाँ पे लाइव परफॉर्म करने वाले हैं.
1: जी, ये लोग, इन्होंने बहुत ही बढ़िया कॉमेडी शोज किए हैं. कपिल शर्मा के साथ काफ़ी बार परफॉर्म किया है और वो यहाँ पे हमारे सुपर सिटी में आने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल नाइट के लिए. विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में इनका शो होने वाला है ऑन 18th of July.
2: या 18 जुलाई को इनका शो होने वाला है. और यहाँ पे आपको चांस मिल रहा है टिकट्स जीतने का. आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लिख के भेजना है ड्राइव कीवर्ड के साथ. ड्राइव कीवर्ड, किस सबब में आप रहते हैं ये लिख के भेजना है इन ऑर्डर टू बी इन द ड्रॉ टू विन अ डबल पास फॉर द शो, जहाँ पे कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. सो ड्राइव स्पेस, किस सबब में आप रहते हैं, बस आज इतना से ही आपको लिख के भेजना है 5599 पर. रिमेंबर 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये लाइव परफॉर्म करेंगे. आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है.
1: एंड न्यूज़ भी आई है, मोस्ट हाउसहोल्ड्स ने रिकॉर्ड किया है एवरेज 8% इंक्रीज इन पावर प्राइसेस दिस विंटर. वेल, अब तक विंटर आई भी नहीं है और लोगों ने प्राइसेस इंक्रीज ये एक्सपीरियंस कर लिए. 8% इंक्रीज इन पावर प्राइसेस, आपने एक्सपीरियंस किया है? आपके पावर बिल हाई गए हैं?
2: Yeah, quite high.
1: Winter's not here yet, but still the prices are really up. आपका कितना फर्क पड़ा है बताइए हमें.
3: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
4: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
5: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
6: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
2: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
6: कौन है?
2: Hunua और Waitakere.
6: अच्छा, Hunua west में.
2: किधर है Hunua?
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
4: Weekdays 6 to 10 a.m.
3: Hum Accurate Traffic.
7: Spend the holidays at Mission Bay The Promenade.
8: Mainly clear with a low of 8. And on the southern, there was a crash heading southbound just after the Panama Road overbridge, and it is still blocking the centre and right lane, so do expect delays there. It's just under an hour 5 out of town on the southern to Drury. And around the rest of the city, the Mondayitis is really starting to hit now, with heavy traffic pretty much everywhere around town.
7: New arrivals, familiar favourites, and iconic waterfront location, Mission Bay The Promenade.
9: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
10: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, राइड्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours. That's 0800 4786 86. लिमिटेड स्पेसेस.
11: क्या
9: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
11: Dad, I feel sick.
12: Yep, we've all been there, and so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're traveling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness. Avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
13: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.

0: ऊपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Let's go.
0: Straight from the heart.
2: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में ये गाना भी आप सुनने वाले हैं, लेकिन रिमेम्बर यहाँ पे मैसेजेस आप करते रहेगा अगर आप डबल पास जीतना चाहते हैं फॉर द कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव, जो कि ट्राइविजन इवेंट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट. सो आप यहाँ पे ड्राइव कीवर्ड के साथ आपको लिखना है कि किस सबर्ब में आप रहते हैं, 5599 पर अपना आंसर लिख के भेज डालिए और आपका नाम स्ट्रॉ में जाएगा जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Show with Sandy and Rizbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: 5:02 हुए हैं on the 29th of June. Good evening.
5: Good evening. Sandy. Yeah, good evening, Rizbe.
4: सोच रहा था मैं अभी एक मिनट के लिए.
5: By the way, मैंने एक चीज नोटिस की है about toddlers. Have you been around toddlers? रहे होंगे तो बहुत. तुम तो वैसे बच्चों के बहुत फेवरेट रहते हो.
4: ओह वाओ, थैंक्स सैंडी. बट हाँ, थोड़ा बहुत, लाइक या नॉट टू मच.
5: बढ़िया. और कभी किसी टॉडलर ने तुम्हें स्टिकर लगाया है?
4: नहीं.
5: Not that favorite. So,
4: Achha.
5: It's a thing. If a toddler puts a sticker on you, that's a sign of great respect in their culture.
4: Oh, that is meaning tested, okay.
5: Yeah.
4: कि ये भाई अपना पंटर है.
5: Toddlers के culture में अगर वो तुम्हें sticker लगा रहे हैं, you are approved person for them basically. ऐसा है.
4: हो सकता है
5: बचपन. क्योंकि अपना sticker दे रहे हैं वो तुम्हें. समझ रहे हो? It's a big thing.
4: That's right. आपको लगाया आपके ने sticker हमेशा.
5: हाँ.
4: तो वो आता क्यों नहीं यहाँ पे? स्टिकर तो दिख रहा नहीं है आपके ऊपर.
5: मैं स्टिकर लगा के यहाँ पे घूमूंगी. चेहरे पे स्टिकर लगा होगा और मैं यहाँ पे आऊंगी.
4: चेहरे पे स्टिकर लगा?
5: या डायरेक्ट चेहरे पे. तो या ऐसा ही होता है. इवन आई हैव सीन द वीडियोस ऑफ मेनी पीपल. खैर वो तो स्टिकर ही लगाता है. कई तो लड़कियाँ, तो जो टॉडलर लड़कियाँ होती है वो तो मेकअप भी लगाती है ना.
4: अच्छा.
5: वो तो डैड्स के भी मेकअप लगाती है.
4: हाँ. अभी अभी मेरे दोस्तों में काफी लड़की आई है. अभी वो उम्र तक गई नहीं है जहाँ पे वो मेकअप वाले
5: एक्सपेरिमेंट करे.
4: बट हाँ, मुझे लगता है नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक होता है ना उनको. डैड के उंगलियों पे और वो सब.
5: या यू कैन शेयर एज वेल इफ यू हैव अ टॉटलर एंड कुछ आप इन दिनों में कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं.
4: समथिंग.
5: Yeah, have you had the sticker?
4: Have you had the sticker from your toddler?
5: Your sticker stories भी आप यहाँ पे share कर सकते हैं. और या ऐसा आपके बच्चे जब toddler थे, जब हुआ था, तो वो भी आप share कीजिए.
4: What was their sign of approval? मतलब वो क्या ऐसे कुछ करते थे क्या? जैसे मेरे को मालूम है अभी off late अभी मेरे काफी दोस्तों के बच्चे हुए हैं. And if they look at you, मेरा simple funda होता है toddler के around. के देखो, you don't have to be their favorite.
5: Yeah.
4: But you never can be the person who made them cry.
5: Oh yeah.
4: तो इसलिए मैं बहुत ही subtle play करता हूँ. मैं बोलता हूँ फेवरेट नहीं होना है मेरे को. कोई बात नहीं.
5: फेवरेट हो गए तो फिर साथ साथ में रहेंगे. ऐसा
4: नहीं, नहीं, वैसा नहीं है. क्योंकि फेवरेट होने के लिए तुम्हें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा. और वो रिस्क और एफर्ट में शायद तुम रुलाने वाले बन सकते हो.
5: वो अच्छा, ओके.
4: हाँ, क्योंकि मेरा तो एफर्ट कुछ ज्यादा ही होगा ना फिर. मतलब मैं एक्सपेरिमेंटल हूँ थोड़ा वैसे भी.
5: या
4: तो मैं रेडियो पे लोगों को रुलाता हूँ तो फिर
5: कहाँ रुलाते हो यार तू.
4: नहीं मतलब ऐसा होता है कभी कभी कभार ना. बट ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि That's why I take it very easy. But what is your approach been? You have to been around you
5: kids
4: to...
5: yeah, बहुत friends के भी and या घर पे भी. तो yeah, a lot of kids. तो
4: you are the favorite one, ऐसा
5: बन जाती हूँ मैं. या most of the time.
4: अच्छा.
5: Not all like favorite पता नहीं, but yeah, loved बन जाती हूँ.
4: Loved बन जाते हो आप.
5: Yeah.
4: मैं ना एक जमाने में होता था ऐसा लव्ड वाला. अब मुझे फील हो रहा है मैं अंकल हो गया हूँ.
5: मैंने तुम्हें ये बोलना था उसमें. हाँ, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है. पता
4: हो रहा है ना. पता नहीं क्यों यार ऑफ लेट मैं. एक्चुअली एक स्विच हुआ है मेरे अंदर.
5: हुआ है.
4: या सीरियसली
5: आई कैन एग्री ऑन दिस 100%.
4: या इट्स लाइक हाउ वुमेन हिट मेनोपॉज. आई थिंक अ लॉट ऑफ मेन हिट अंकलहुड.
5: या कह सकते हैं अंकलहुड. नॉट इज द आई विल से उसके रिलेटेड रॉन्ग कंपैरिजन आई विल से. बट अंकलहुड कभी कभी होता है कि
4: अरे दैट टिपिकल इंडियन अंकल यार.
5: या
4: लाइक यू नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन पर्टिकुलर अंकल. बट वो अंकल एक होता है हर किसी के फैमिली में, हर किसी के अराउंड. एवरीवन इज ग्रोन अप अराउंड दैट अंकल.
5: तुम हर किसी की शादी में डांस कर रहे हो. पहले करते थे.
4: मतलब मैं
5: अब करे मतलब वो भी there are few things to checklist for that as well.
4: Because at the end of the day मुझे समझ में आया अंकल बिहेवियर, अंकल मेंटेलिटी क्या है. अंकल मेंटेलिटी इज यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग फन. पीपल विल ऑटोमेटिकली हैव फन. मेरा माइंडसेट ये रहता है.
5: ओके.
4: विच इज कम्प्लीटली अंकल माइंडसेट.
5: थिन लाइन. व्हाट डू यू थिंक गाइस? मैं इस पे कमेंट नहीं ज्यादा कर सकती
4: बिकॉज़ यू आर एन आंटी.
5: आपका क्या टेक है इसके बारे में, आप बताइए यहां पे कॉल करके.
4: व्हाट इज लाइक हैव यू आल्सो एवर फेल्ट दैट कि भाई अभी ना एकदम ऐसा अंकल टाइप फील आ रहा है. That I have reached that.
5: Not uncle. Uncle type is not in a rude way. I will say uncle type as in कि कई बार behavior जो है.
4: But आप ऐसा rude कहीं को ले रहे हो. मतलब मैं खुद मतलब मेरे को allowed है नहीं है क्या? मेरे को uncle ही बोलते हैं ना अभी.
5: अरे uncle is a respect also ना रुस्बे.
4: अच्छा वैसा नहीं नहीं.
5: हाँ बुलाना uncle या auntie बुलाना is not a disrespect. It's a respect.
4: इस community में वो disrespect ही होता है.
5: कैसे?
4: हाँ यार.
5: नहीं होता है यार यहाँ पे अपने रिलेशंस को.
4: हमने कितनी बार हमारे लिसनर्स को फोन पे अंकल अगर बोल दिया तो बोलते हैं अंकल काय को बोल, अंकल कौन है.
5: वो एक माइंडसेट होता है बट मुझे लगता है कि आंटी या अंकल बोलना तो एक रिस्पेक्ट होता है बिकॉज यहाँ पे तुम ये देखो कि वेस्टर्न रिलेशंस में मामा मामी चाचा चाची नहीं बोलते. हाँ, क्या बोलते हैं
4: अंकल बोलते हैं.
5: अंकल आंटी बोलते हैं ना.
4: बट इंडियन अंकल इज नॉट रिस्पेक्टेड.
5: एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट्स अ माइंडसेट ओनली आई विल से.
4: एक्चुअली आज का दिन ही हमारा ना देसी नॉट सो देसी.
5: तो बताइए
4: एक मिनट आज वो बहुत परफेक्ट लिंक हो गया.
2: देसी और नॉट सो देसी
4: बातों बातों में आज हमारा ये सेगमेंट भी हो रहा है. देसी नॉट सो देसी. व्हाट डू यू थिंक अंकल इंडियन अंकल is a desi thing. You will not find an Indian uncle aisa not desi mein. Matlab, you know. This trait is only stuck with Indian uncles. Jahan pe wo log rotlugiri karenge kuch kuch baat ko lekar. Kya re ye kya service hai. Abhi main for example main weekend pe ek jagah pe kuch lene gaya.
5: Tum to bahut zyada kar rahe ho abhi.
4: Theek hai. To main wahan pe us main mere ko wo jisne mere ko becha उसके कस्टमर सर्विस से मैं खुश नहीं था.
5: ओह गॉड.
4: तो वो मैं इतना नाखुश था मैं उस चीज को लेकर कि मैं वो कल शाम से मेरे मन पे वो लटका वो
5: रिव्यू किया तुमने.
4: मैं बार-बार उसको बोल रहा हूँ वो चीज मतलब मेरी वाइफ को बोल रहा हूँ मैं बार-बार. तो आज सुबह वो बहुत इरिटेट हो गए मेरे से. बोलते है बस करा अभी तेरा ये
5: ऑब्वियसली यार
4: क्या है ये नाटक. मैं बोला अभी क्या करूँ लेकिन ना कुछ चीजें नहीं यू कांट जस्ट लेट गो. So anyway, that is
5: आपको
4: my
5: क्या लगता है? Is this a desi behavior? It's a not so desi behavior. Western लोग भी ऐसा करते हैं या फिर it's a desi thing? मुझे honestly लगता है कि मेरा take इसमें ये रहता है कि अगर कोई आपको अंकल या आंटी बोल रहा है ना तो it's a form of respect. I will say because they're saying कि तुम्हारी thinking is really matured. Yeah. और बच्चे तो अंकल आंटी बोलेंगे ना. बच्चे क्या बोलेंगे यार.
4: वो तो
5: देवल से अंकल आंटी बोली ना
4: वो कहेंगे वो. हाँ, मैं अग्री करता हूँ उसका.
5: तुम्हारे एज के तुम्हें अंकल बोल रहे तो वहाँ पे गड़बड़ है.
4: हाय ये ना वही तो है. हाय आपका स्वागत है.
6: हेलो हेलो हेलो गाइस.
4: हाय
5: हाय.
6: एक पांच दस मिनट से सुन रहा था मैं. मैंने बोला चलो लेट इट गो करें लेकिन यार दोस्त मेरे दोनों बेटे संस्कारी बोलते हैं
4: ना. वो अपना बज रहा है.
6: तो गाइज ये रुस्बे ने जो बोला दोनों ना बात सही है लेकिन रुस्बे की जो बात है ना आई हाईलाइट दैट कि इंडियन अंकल जो बोला ना थोड़ा सा बात अलग है एक्चुअली यू नो सैंडी. मतलब आप जो प्यार से बोल रही हो ना दैट इज वेरी नाइसली सेड. आई मीन आई रिस्पेक्ट बीइंग नाउ इन न्यूजीलैंड. लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ मतलब हिंदुस्तान में जब हम थे तो देखो क्या बोलते थे. इसमें बहुत जोक भी निकले एक्चुअली. तो दैट इज नॉट सो गुड when we say Indian uncle.
4: Indian uncle like, is not a compliment.
6: Hi, yaar, not a compliment to be honest.
5: But हम कॉलोनी में जैसे कोई था अंकल तो उनको अंकल ही बोलते थे ना. जैसे कोई लाइक एल्डरली एज के होते हैं तो उनको तो अंकल ही बोलते हैं.
4: नहीं नहीं बोलते हैं बट मैं वो टर्मिनोलॉजी जो बोल रहा हूँ ना दैट टर्मिनोलॉजी इज नॉट अ प्लेजेंट टर्मिनोलॉजी फॉर एग्जांपल.
5: उसको बना ऐसा दिया है ओवर द टाइम.
4: हाँ.
6: मतलब डायलॉग कभी कभी सैंडी वो डायलॉग होता ना आपने हिंदी फिल्म में अबे आगे जाओ ना अंकल.
5: आप समझ में आया गड़बड़ कहाँ है. बॉलीवुड
4: मुंह तो बंद करो अंकल. हाँ. देखा
5: बॉलीवुड इज द गड़बड़. गाना भी तो है आंटी जी
4: वो गेटअप एंड डांस.
6: मतलब तुमको मैं और कॉमेडी बात बताओ. दो यंग बंदे मतलब तुमने डायलॉग सुना भी होगा कि ऐसे कॉलेज के चार पांच बंदे बैठे हुए है और फिर भी कोई बंदा है बंदी किसी को ऐसे बोल रहा है. नॉट दैट पर्सन इज एट दैट एज लेकिन वो बोल के उसको मजाक उड़ा रहा है यू नो. ये टर्मिनोलॉजी एंड ऑफ
4: राइट. आई कंप्लीटली.
6: और कॉमेडी बात ये है ना कि तुमको समझ में भी ना था तुम कब उस एज पे चले गए.
4: तुम चले गए हो क्या वो एज पे.
6: क्या बोला क्या बोला अच्छा बोला इट्स नाइस
4: बढ़िया
5: सही है थैंक यू
4: थैंक्स ओमकार थैंक्स फॉर योर कॉल यार
6: चलो सी यू बाय
5: थैंक यू ओमकार बाय प्रशांत का मैसेज आया है अंकल एज इंडियन इज देसी बट आउट ऑफ इंडिया लिसनिंग अंकल इज डिपेंड्स ऑन ऑपोजिट पर्सन्स एज और एक ने है हाय टू यू बोथ वन टाइम वी वेंट टू फीजी वर शॉपिंग एंड द सेल्स गर्ल कॉल अंकल टू माय हस्बैंड आई सेड ही इज यंग नॉट अंकल येट आई वाज टीजिंग माय हस्बैंड ही सेड ही इज प्राउड टू ग्रो ओल्ड एंड बी कॉल्ड अंकल पीपल रिस्पेक्टिंग हिम ही सेड दे आर शोइंग रिस्पेक्ट हाँ रिस्पेक्ट फॉर्म भी होता है
4: अच्छा है भाई ऑप्टिमिज्म भी अपनी एक चीज है भाई
5: आई डोंट थिंक इट्स अ देसी थिंग टुडेज इंसिडेंट एट माय जॉब दिस लेडी हैड वीपीएन इश्यूज ओवर द वीकेंड एंड शी मेड श्योर शी स्पोक टू 6-7 डिफरेंट टीम मेंबर्स अबाउट इट इन द ऑफिस कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड बेस्ट पार्ट इज टुमारो इज अ
4: लास्ट
5: डे बिफोर रिटायरमेंट
4: या ओके एनीवे इनसे भी बात करते हैं हाय आपका भी स्वागत है
7: वो अंकल बोलना हम लोग भी जब यंग एज अब मेरा एज अबाउट 58-59 हो गया हम जब इंडिया में भी थे जब क्रिकेट खेलते थे और कोई आता था तो ऐसा अपनी स्लो मोशन कर देता था चलते चलते जानबूझ के तो हम बोलते थे अंकल अब कितना देर लगाओगे यहाँ से पास होने में स्ट्रीट में खेल कभी बॉल लग जाएगी ना वो उसको बोलते हैं खिल्ली उड़ाना
5: तो शुरू से वो स्लैंग्स ही ऐसे रहे हैं ना कि
7: खिल्ली उड़ाना और कभी कभी अंकल आते थे अपनी टोपी घुमा के बात करते थे क्यों ये लड़को ये आजकल ये क्या कर रहे हो क्या पढ़ रहे हो अरे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें से किसी को उसके बाद मैं जब मेरा यंग था तो कोई भी आता था अपने सामने जो अपने बुजुर्ग बोलते हैं इस वर्ड आटे इस बुजुर्ग और उनको मैं रिस्पेक्ट से अंकल बुलाता था
4: वो अलग है मतलब वो
7: सामने वाला आदमी सामने वाला क्या कैसे आपको बुलाता है अगर आपकी खिल्ली उड़ाता है तो
5: आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द टोन ना कि आप किस टोन में अंकल कह रहे हो
7: आफ्टर अंकल वो क्या बोल रहा है अंकल बोलना इट्स नॉट अ बैड अब मुझे भी बहुत शर्म आती है कभी कभी मैं निकलता हूँ अंकल ये बोलते हैं तो मुझे शर्म आती है बट आई हैव टू एक्सेप्ट इट दिस इज माई एज and the opposition person is a young age
5: yeah 100%
4: nahi but hamare liye aap prashanti ho
7: ab so, ab ab jaise buzurg log bolte hai jaise rusbe bol rahe hai
4: yeah buzurg log bolte hai rusbe bol kya hello excuse me
7: I'm just joking
4: nahi
7: to aapse bhi buda hu
4: आपसे भी बूढ़ा हूँ यार ये तो
5: मतलब अच्छा
4: ठीक है चलो एनीवे थैंक यू
7: यार बाप बन जाओगे तो
4: अच्छा आपके मुंह में घी शक्कर
5: बाय प्रसाद Are you happy now?
4: Yeah, what to do? Yeah. Or comparisons. Let's listen to a song now.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे एक से गाने लेकर आते हैं ड्राइव शो में और बातें भी लेकर आते हैं कुछ कुछ इधर उधर की.
1: Yeah, so इधर उधर की बातें ये हो रही है कि you know teaser आया अभी श्रद्धा कपूर की मूवी की इथा इस मूवी का नाम है.
0: क्या हमने ऑन एयर?
1: Yeah, लेकिन is already in the controversy even before the release.
0: क्या बात है, क्या controversy हो गई अभी?
1: Well, controversy ये हो रही है because this movie is based on the लेजेंडरी लवानी एंड तमाशा आर्टिस्ट विथा भाई
0: लावनी
1: ओके लावनी एंड तमाशा आर्टिस्ट विथा भाई इनका नाम था. अभी पंगा ये हो रहा है कि काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका जो टाइटल है वो सही नहीं है, कि बेस्ड ऑन दिस मूवी एंड उसी का नाम होना चाहिए विथा या विथा भाई होना चाहिए, ऐसा टाइटल होना चाहिए. इथा इसका नाम जो है वो नहीं होना चाहिए.
0: ओ. तो इथा क्यों रखा ये लोग ने ऐसा? मेरे को लग रहा है फैमिली से कंसेंट नहीं लिया ये लोग ने ये सब चीज के ऊपर.
1: आई एम नॉट श्योर अबाउट इट.
0: अच्छा, वो क्योंकि अगर फैमिली का कंसेंट होता तो वो नहीं करते ना इतना तमाशा.
1: नहीं, उनका ये कहना है कि जो बायोपिक उसको सेलिब्रेट करिए, विथा भाई को अगर सेलिब्रेट करिए उसकी लाइफ को, अचीवमेंट को, सो द फ्यूचर जनरेशन शुड रिकॉग्नाइज द वुमन हु प्लेड द डिफाइनिंग रोल, तो उसके नाम के ऊपर ही वो मूवी होनी चाहिए बेसिकली. ये उनका कहना है.
0: But it looks a very intense movie. हाँ यार, ये इसका जो teaser भी देखा हमने,
1: मेरे को बहुत अच्छी लग रही है. In fact, एक reel famous हो रही है जहाँ पे इथा श्रद्धा कपूर is dancing और पीछे जो dancers है ना, reel famous हो रही है पिछली वाली dancer के ऊपर.
0: Oh.
1: Yeah, कि for a change I'm not watching श्रद्धा.

0: कपूर पर द डांसर बिहाइंड हर, एक रील उसकी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है.
1: दैट्स वेरी कूल यार. बट डांस डांस का जो कम्युनिटी है इंडिया में, दैट्स गॉन लाइक बिग ह्यूज
0: ह्यूज है यार.
1: एंड आई थिंक दैट्स स्लोली स्टार्टिंग टू शो इन बॉलीवुड एज वेल नाउ.
2: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
3: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी.
4: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
5: Accurate traffic.
6: Dry July starts Wednesday.
7: Mainly clear with a low of 8, and traffic is looking shambolic on all drives heading out of the city. On the northern at the moment, there's heavy patches to Dairy Flat. It's just under 40 minutes out of town, the Constellation Drive. And on the southwestern, there's heavy patches citybound between Massey Road and Mount Roskill, and southbound between Onehunga and Manukau. And city to the airport's just under 35 minutes.
6: Go dry this July to raise funds for cancer support. Search Dry July to register.
8: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Twistec range of beds has exclusive smart suspension technology, and right now it's half price. Discover better sleep with Twistec, available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
9: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
10: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
11: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
10: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
12: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
13: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
14: It's winter, but you already know that.
15: What you might not know is that demand for blood and plasma donors is high.
14: Yet the supply of blood and plasma donors is low.
15: It happens every year when the dreaded lurgies do their darndest.
14: You know, the cough.
15: The splutter.
14: The nose that runs like Usain Bolt.
15: So we're asking you to get your blood buddies together and book a group blood or plasma donation today at nzblood.co.nz.
14: Give blood. Give plasma, save lives.
16: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
17: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
18: Are you ready to go home?
19: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
2: Power Drive at 5.
11: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernised, customised designs for your dream kitchen.
1: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits and Karan Aujla fans. थोड़े ध्यान लगा के सुनिए अभी आप.
0: करण औजला जो कि बहुत ही जल्दी अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके यहाँ पे ऑकलैंड में आने वाले हैं. मैसिव शो होने वाला है रुजबेन का
1: स्पार्क अरीना में
0: 25 अगस्त को. लेकिन उनके साथ हिट मेकर इक्की भी आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक एंड एनर्जी आपके लिए लेके आएंगे. टिकट्स की इन्फॉर्मेशन वैसे आपको hum.rover.nz पे जाके मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको यहाँ पे टिकट जीतनी है, इफ़ यू कैन विन अ डबल पास ओवर हियर, तो आपके लिए यहाँ पे अभी कंपटीशन है.
1: जी, कंपटीशन में होगा ये, मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, करण औजला का ही गाना है वो. आपको बस उसका सही सही टाइटल यहाँ पे मैसेज करना है.
0: इस गाने का टाइटल क्या है? टाइटल, यू नो, कई बार क्या होता है कि कुछ गाने के जो टाइटल्स हैं स्पेसिफिकली एल्बम के गानों के, कई बार एक वर्ड या दो वर्ड्स इस वजह से होते हैं. लेकिन अगर आप वो टाइटल गाने का कैसे गाया जाता है, अगर आप वो लिख के भी भेज सकते हैं यहाँ पे 5599 पर, तो वो भी एंट्री वैलिड मानी जाएगी.
1: क्या कीवर्ड यूज करना है?
0: के ए करण औजला. सो के ए स्पेस अपना आंसर लेके भेज डालिए 5599 पर.
1: बस एक ही चीज है कि के और ए के बीच में स्पेस मत डालना.
0: स्पेस नहीं है, के ए इज वन वर्ड, का इज वर्ड.
1: का 5599 पे आपने भेजना है, ठीक है,
0: आंसर के साथ.
1: आंसर के साथ. और अभी क्वेश्चन ये है, मतलब गाना ये है, आपको बताना है इसका टाइटल क्या है. होपफुली बजे तो नहीं, ये नहीं बज रहा है.
0: ओ, यहाँ नहीं बज रहा है ये.
1: So, Sandy, now we have a new problem.
0: New problem नहीं है, बहुत easy है. थोड़ा एक गाना सुनते हैं तो आपके लिए हम लेके आते हैं.
1: अच्छा ठीक है.
0: Yeah.
1: तो एक गाने के बाद
0: गाने के बाद आपके लिए कंपटीशन लेके आते हैं.
1: Sorry, our bad. एक गाने के बाद कंपटीशन लेके आ रहे हैं.
0: But you have more time now. You will be prepared now.
1: तो क्या अभी क्या रिवीजन करेंगे वो? हर एक गाना सुनेंगे
0: ना. हाँ.
1: क्या है यार सर?
11: Bollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
18: मैं लाऊं अपना A game.
11: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits and we are back with Karan Aujla ka competition jahan pe aapko hame gaane ka bit sunayenge aur aapko yahan pe uska title likhkar bhejna hai 5599 pe KA keyword ke saath
1: aur ye gaane ke na do versions hai aapko pehle clear kar deti hu दो वर्जन है और एक एल्बम का वर्जन है एक मूवी का वर्जन
0: जो वर्जन आपको पता है वो डालो
1: जो टाइटल आपको पता है बस आपको वो टाइटल लिख के भेजना है 5599 पर तो सुनते हैं
0: लेट्स गो

0: दो विच कोठी।
1: बस इतना गाना
2: बहुत है। सो आपको बताना है ये कौन सा गाना है, के ए कीवर्ड के साथ 5599 पर। क्या है ना कि अब अगर आप फैन हैं करण औजला के, टिकट जीतना चाहते हैं, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये गाना कौन सा है। और इतना हिंट आपको दिया है, गाने के दो वर्जन है, एक मूवी का है और एक एल्बम का है।
1: ये तो मोस्टली हर करण औजला के गाने के साथ है ना, हर काफी गाने के साथ है।
2: नहीं, सिर्फ आई थिंक उसका यही एक गाना है जो कि रीमेक है।
1: ओह नहीं नहीं यार,
2: करण औजला का। हाँ, बाकी सारे गाने ओरिजिनल है।
1: क्या बात कर रहे हो।
2: या वो जो विकी कौशल वाला गाना है, दैट्स ओरिजिनल वन।
1: ओरिजिनल है वो।
2: या
1: वो रीमेक नहीं है। वो
2: रीमेक नहीं है।
1: वाओ, दैट्स सो कूल यार।
2: सो दिस इज ओनली वन सॉन्ग एज फार एज आई नो।
1: और ये मेरे को मालूम है, ये ट्रू फैंस जो ओरिजिनल वाला गाना बता रहे हैं।
2: हाँ, जो ट्रू फैंस है वो ओरिजिनल गाना बताएंगे। लेकिन मूवी का टाइटल भी चलेगा।
1: वो भी चलेगा। आप भी ट्रू फैन हो यार, ऐसे नहीं है।
2: या
1: एवरीवन इज अ ट्रू फैन। बढ़िया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैसेजेस के लिए आप भेजते रहिए 5599 के ए की वर्ड है, उसके साथ आप भेजिए।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Do Diwane Seher mein reprised version aap sun rahe the Bhupinder Singh ki awaaz mein.
1: Aaj Trend Makers mein 6 baje ke baad aap sunne wale hain Vishal Dadlani special.
0: Oh, Vishal Dadlani ka birthday gaya?
1: Yeah, Vishal Dadlani ka birthday kal tha Ruzbe. And kya artist hai yaar, unki composition se leke unke gaaye hue gaane. पता कोई भी फैन हो जाए।
0: I think विशाल ददलानी किया मैंने मेरे को ना हमेशा मेरा ड्रीम रहा है टू अटेंड विशाल एंड शेखर का कॉन्सर्ट।
1: Yeah.
0: Because all their songs are hit songs.
1: शेखर रवजानी always been someone romantic. जब उन्होंने गाने गाए हैं तो romantic की और उन्होंने romance की ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। And विशाल ददलानी always the one जो कि dance numbers के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है।
0: full ऐसा heavy metal type feel आता है उससे।
1: मलहरी, जय जय शिव शंकर, मतलब जितने भी dance number guys आप सोच सकते हैं विशाल ददलानी की compositions के बहुत सारे हैं। So today we're gonna celebrate him and उनके बहुत सारे hit गाने आज आप यहाँ पे सुनने वाले हैं।
0: So it's gonna be a banger show tonight, 6 to 7, like always.
1: गाए हुए, basically आज उनके सिर्फ compositions नहीं, आज विशाल ददलानी के गाए हुए गाने आप सुनने वाले हैं।
0: Yeah, and Vishal Dadlani, I think, is known to be very outspoken, very vocal.
1: Yeah, I like him.
0: yeah, obviously you like him.
1: Yeah, not that. See, मैं तो किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ.
0: ऐसा मत बोलो ना.
1: मैं कौन सी पार्टी के फेवर में बोलूँ?
0: आप.
1: हाँ.
0: आप.
1: बताओ ना, मतलब सच्ची में. हाँ. I'm not.
0: अच्छा, yeah, you're not.
1: Yeah, I'm not actually में.
0: You're anti.
1: लेकिन मुझे एक्चुअली में सेलिब्रिटीज में वो बात बहुत अच्छी लगती है। आई लाइक दैट थिंग अबाउट मार्क रफेलो द हल्क। जो हल्क है वो आके बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में आके उसके अंदर बहुत वो कहते हैं कि जिगरा है कि वो ट्रंप तक के बारे में बातें करता है कि राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज नॉट राइट, या वैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को वो यूज करता है ऐसी चीजों को एड्रेस करने के लिए।
0: देखो, ट्रंप के बारे में तो कोई भी बोल सकता है,
1: लेकिन
0: अगर उसमें दम है
1: या
0: तो किसी और के बारे में बोल के
1: वो बोलता है। मार्क रफेलो इज द वन गाय हु इज ऑलवेज वोकल। तो मुझे कई बार ऐसे सेलिब्रिटीज बहुत अच्छे लगते हैं जो सिर्फ एक प्रेशर में आके नहीं, अपने आप को थोड़ा खुल के जाहिर करते हैं, तो काफ़ियों के लिए वो चैलेंजिंग भी हो जाता है बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो है वो साथ में मिलके चलती है, तो जब एक से पंगा लो तो दूसरा तीसरा ऐसे चेन होती है वहाँ पे। तो नॉट एवरी सेलिब्रिटी कैन बी आउट एंड अबाउट वोकल अबाउट द थिंग्स दे माइट फील बट दे कैन नॉट से अबाउट इट। ऐसा भी है एंड आई थिंक दैट्स अनफॉर्चुनेट थिंग बट ऐसा है। एंड ऐसा चीज़ मेरे को लगता है वो आर्टिस्ट कर सकते हैं जो थोड़े एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनको डर नहीं है।
0: हाँ, मतलब जिनका अभी फ्यूचर सॉर्टेड है, जिनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है, रिस्क नहीं है, कल को नई भी नौकरी मिले, काम मिले, कुछ भी मिले,
1: उनको टेंशन ही नहीं है,
0: टेंशन नहीं है, वैसे लोग कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और बोल सकते हैं चीजें बेझिझक होके। अभी आज के डेट में समय रहना, इसलिए तो इतनी सारी चीजें बोलता है ना बिंदास।
1: समय रहना, देखो ना जिसको बैन करने के बारे में बोल रहे थे, उसके कंटेंट को गालियां दे रहे थे, नेटफ्लिक्स ने हायर किया, मतलब नेटफ्लिक्स पे आ चुका है वो बंदा,
0: और नेटफ्लिक्स ने भी ऐसा नेगोशिएट किया उसके साथ जैसा वो लोग ने और किसी के साथ पहले नेगोशिएट नहीं किया
1: कि उसका एपिसोड यूट्यूब पे भी रिलीज होगा, नेटफ्लिक्स पे भी रिलीज होगा, ऐसा किसी आर्टिस्ट के साथ नेटफ्लिक्स ने कभी नहीं किया है।
0: सो या, पैसा बोलता है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो एनीवे, और आपको पता क्या हुआ फिर उसके बाद का अपडेट? तो नेटफ्लिक्स पे उसके एपिसोड को 50 मिलियन व्यूज, नेटफ्लिक्स पे नहीं, यूट्यूब पे 50 मिलियन व्यूज आ गए और नेटफ्लिक्स पे कुछ 3-4 मिलियन ही आए।
1: हाँ, क्योंकि ये स्टिल यूट्यूब हैवी रहेगा ना उसके लिए।
0: यूट्यूब स्टिल लाइक या 50
1: स्टिल विनिंग।
0: सो या, एनीवे और भी बातें करेंगे आपके साथ, बट अभी के लिए थ्रोबैक में एक मस्त गाना।
2: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान।

0: Sleepyhead Sleepeasy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
3: You're listening to the Drive Show with Sandy and Rizvi. 6 baj chuke hain aapke liye yahan pe Trend Makers mein. Aaj hum lekar aa rahe ek special show where we are shouting out Vishal Dadlani, the man.
4: Yeah, Vishal Dadlani ke bare mein hum yahan pe aaj baatein karne wale hain. Unke gaane jo hai aapke liye hum play karne wale hain. Vishal Dadlani is the पर्सन जो बहुत सारे इन्होंने गाने बनाए हैं, बहुत सारे
3: जो विशाल शेखर के विशाल है ना, वो है ये
4: विशाल शेखर के विशाल है ये. बहुत सारे रियलिटी शोज में लोग इनके फैन बने हैं, बिकॉज रियलिटी शोज
3: में इनके में काफी इन्होंने किया है ना,
4: इंडियन आइडल.
3: और ये एक्चुअली मैं बहुत बढ़िया इंसान भी, मतलब इंडियन आइडल पे भी ही ऑलवेज लाइक लुक्स आफ्टर पीपल, लुक्स आफ्टर सिंगर्स, वांट्स टू ग्रो देम, हेल्प देम ग्रो. वो सारे इनिशिएटिव काफी उन्होंने हमेशा लिए हैं.
4: एंड ऑल्सो मेन मेंबर ऑफ द बैंड पेंटाग्राम. पेंटाग्राम सो पेंटाग्राम इनका एक बैंड था जो कि रॉक अभी भी है. खैर 1994 में इन्होंने शुरू किया था. एंड या इसमें इन्होंने विशाल शेखर ने एक्चुअली में शुरू किया था ये, जहाँ पे गिटारिस्ट भी थे एंड बहुत और ड्रमिस्ट भी थे इसमें.
3: बट आपको पता है कि अंटिल ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड उनको वो म्यूजिक में बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं थे. ही हैड नॉट डन एनीथिंग इन म्यूजिक और ही वॉज नो वेयर क्लोज टू इट. वो तो ही वेंट इन टू लाइक प्रॉपर, एक्चुअली ही इज नॉट गॉन थ्रू प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एज वेल, बट उन्होंने एक बैंड को परफॉर्म करते देखा और उन्होंने बोला कि अरे इससे बेटर तो मैं भी कर सकता हूँ. और ऐसा बोल के इन्होंने शुरू किया कि ये तुम सुन रहे हो इससे बेटर तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ. और वैसे करके उन्होंने वो बैंड फॉर्म किया एंड देन इट ऑल यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री
4: स्टार्टेड देयर. या विशाल वदलानी का कंपोज किया और उनका गाया हुआ गाना फिलहाल अभी हम यहाँ पे सुनने वाले हैं.
3: सो चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ. और भी बहुत बातें करेंगे विशाल वदलानी के बारे में इन दिस आवर. एंजॉय कीजिए ट्रेंड मेकर्स.

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Vishal Dadlani, Vishal and Shekhar ke fame wale Vishal ka birthday celebrate kar rahe hum, jinka birthday kal tha
1: and unke gaane, unke banaye hue gaane hum yahan pe sun rahe hain. So Shekhar was not involved in Pentagram band.
0: So as per little bit research jo ho raha hai, usme pata ye chal raha hai ki Vishal aur unke childhood friend Shekhar, वो एक्चुअली में बॉलीवुड म्यूजिक में सेम मूवी में इंट्रोड्यूस हो रहे थे बट एज राइवल्स. सो प्यार में कभी कभी 1999 की ये मूवी, विशाल ने कुछ ट्रैक्स रिकॉर्ड किए थे उनके पेंटाग्राम बैंडमेट्स के साथ और शेखर अपनी खुद की कॉम्पोजिशन लेकर आ रहा था, फ्यू सेपरेट ट्रैक्स, और उन्होंने दे बम्प्ड इनटू ईच अदर और उन्होंने बोला कि एक काम करते, चल साथ में करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका जो केमिस्ट्री था वो अनमैच था, लाइक इट वाज रियली गुड एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड विशाल शेखर, दैट्स हाउ दे फॉर्मड इट.
1: ओके,
0: वहां से
1: काफी मूवीज इन्होंने की है, लाइक आई थिंक द ब्रेक थ्रू वाज झंकार बीट्स.
0: हां, झंकार बीट्स आल्सो वर वेरी, पुराने गानों को रिक्रिएट किया था ना उसमें भी,
1: या थोड़े से पुराने गानों को भी रिक्रिएट किया था, या पर झंकार बीट्स बीन अमेजिंग मूवी यार, बहुत ही अच्छा इसका म्यूजिक था. देन ओम शांति ओम दोस्ताना,
0: मैंने एक बहुत पुराना इंटरव्यू चेकआउट किया अभी जिसमें मूवर्स एंड शेकर्स करके एक शो होता था, शेखर सुमन का और उसमें विशाल दलानी आया था और ये वो टाइम की बात है जब विशाल दलानी के सर पे बाल होते थे, चाहे थोड़े होते थे लेकिन होते थे. और उस टाइम पे उसने कहा था कि माय अपकमिंग प्रोजेक्ट इज झंकार बीट्स और उन्होंने बोला कि बहुत ही स्ट्रेंज नाम है, अतरंगी नाम है, लेकिन बढ़िया प्रोजेक्ट रहेगा ये.
1: एंड मूवी भी थोड़ी म्यूजिशियंस के ऊपर बेस्ड थी ना,
0: हाँ,
1: तो इसी के कारण वो काफी सूट किया था वहाँ पे. वेल यार, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विशाल ददलानी को बिकॉज उनका बर्थडे कल था, तो आज उनके हिट गाने, उनके कंपोज किए गए गाने, उनके गाए हुए गाने इस आवर में आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं.
0: जी, एक और खास बात विशाल ददलानी की जो काफी मेन इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ही इज नॉट कंफर्टेबल इन एक्सपेंसिव सूट्स, ही लव्स हिज टी-शर्ट्स.
1: Raw,
0: unfiltered. Yeah.

0: ट्रेंड मेकर्स।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
2: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
4: Award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
7: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
6: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
7: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
1: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
8: फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल। इंडियाज फर्स्ट 2000 करोड़ फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल, स्टारिंग अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, अरशद वासी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर।
9: एक जबरदस्त कहानी है।
7: और टाइटल क्या है फिल्म का?
9: वेलकम टू द जंगल।
8: वेलकम टू द जंगल नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: करते हैं
1: yeah.
0: तो वो उनके काफी गानों में एक्चुअली में फील करेंगे.
1: एक्चुअली बिफोर इवन गेटिंग इन टू बॉलीवुड एंड बींग अ हिट मेकर, वो एक्चुअली में एक अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन के एक बड़े रिबेल थे इंडिया के अंडरग्राउंड सीन में. उन्होंने पेंटेग्राम तो फॉर्म किया ही 1994 में, बट वन ऑफ इंडियाज पायनियरिंग इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक रॉक बैंड्स उन्होंने फॉर्म किया था. सो इट वॉज ही वॉज ऑलरेडी ऑलवेज अ रिबेल. अभी भी काफी रिबेल ही करते हैं
0: अभी तो. हाँ, वो नेचर में शुरू से ही रहा है.
1: बट पहले से ही हमेशा रहा है कि भाई जो बाउंड्रीज है उनको एक्सटेंड करो, उनको ब्रेक करो. एंड दैट्स व्हाट विशाल दलानी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर, आई बिलीव.
0: सो ही रीडिफाइंड बॉलीवुड म्यूजिक इनटू हाई एनर्जी क्लब ईडीएम रॉक फ्यूजन स्टाइल, ये सब उनके गानों में हमें फील हुआ.
1: और ये जो गाना अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ दैट.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. India wale, aap sun rahe the Vishal Dadlani aur Shankar Mahadevan along with KK. All great singers, sabke awaaz mein aapne saath mein suna. And coming up next song is ये विशाल ददलानी ने गाया ये गाने को, मेरे को पता नहीं था मल्हारी गाना
1: मल्हारी या हाई एनर्जी सॉन्ग एक्चुअली में हाई एनर्जी गाने विशाल ददलानी के वो मेन वो रहे हैं.
0: No wonder they this Malhari is such a hit song, yeah.
1: It is hit
0: song. Jo energy gayi hai, energy se gaya hai is gaane ko.
1: Hmm.
0: I think it's outstanding, yeah. Vishal Dadlani ko actually main itna singing ke liye itni unki baatein nahi hui hai kabhi.
1: Unki hamesha compositions ke liye baat hoti hai. But because also Ruzbe, because उन्होंने international collaborations पे तो कितनी की है. Akon वो जो गाना है चमक चलो.
0: Oh right, yes.
1: वो उसका then Diplo के साथ उन्होंने collaborations की है. The Vamps के साथ उन्होंने collaboration की है. He actually collaborated with lot of global artists, जहाँ पे उन्होंने अपने गाने जो है वो mainstream के आगे भी रखे.
0: That's pretty cool. Yeah, so definitely. काफी उन्होंने काम किए, लेकिन एक और चीज थी उनके बारे में. इनको कॉलेज में गुंडा कहा जाता था.
1: हाँ.
0: या एंड तो रिबेल के बारे में तो हमने पढ़ा ही है पहले, बट यस गुंडा वाज अ टर्म दैट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब हिम फॉर ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज. एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज ही वाज वेरी ओपिनियनेटेड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग वोकल. हर एक किसी को भी ब्रश कर सकते
1: कुछ भी बोल देना,
0: ब्रश टॉकर दैट वे.
1: सो ये हुआ भी था ना इंडियन आइडल में. सो ही बी नोन फॉर द ब्लंट एंड समटाइम्स स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ कंटेस्टेंट्स. सो एट डिफरेंट पॉइंट उसकी डिबेट्स होती थी एंड ही हैज आल्सो टेकन ब्रेक एंड स्टेप्ड अवे फ्रॉम द शो एज वेल. ये भी किया हुआ है.
0: अच्छा, ये भी किया है. वाओ. सो एनीवे लेट्स लिसन टू सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स. विशाल ददलानी स्पेशल आपके लिए आज.

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now.
1: Trendmakers, आप सुन रहे हैं 104.2 FM और Rova app के जरिए. और वैसे अगर सिटी के अंदर आप है तो 87.7 FM पे भी आपको शायद सुनाई दे रहा है.
2: यार ये भी आप ट्यून इन करके देखिएगा.
1: मुझे तो वेस्ट तक सुनाई दे रहा है भाई 87.7.
2: मैंने स्वानसन में सुना.
1: स्वानसन में भी सुना.
2: It was that good as 104.2 FM.
1: Honestly, मैं भी ये आपको बोलने वाला था.
2: In स्वानसन.
1: मैं वेस्ट में मैसी तक गया. काफी क्लियर आता है 87.7.
2: या काफी क्लियर था. या एंड इसी गुड नोट पे आपको बताया कि राहत फतेह अली खान इज कमिंग टू योर सुपर सिटी 25th ऑफ जुलाई को इनका शो होने वाला है ट्रस्ट अरीना में. सो मेक श्योर कि आप टिकट्स खरीद रहे हैं dryticketsdotcom, वहां पे जाके आपको टिकट्स मिल जाएंगी. एंड ऑल्सो एक और शो होने वाला है रुजबे, दिस इज गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर. ये शो होने वाला है 3rd जुलाई को, इसी फ्राइडे को होने वाला है ये शो.
1: इसके टिकट्स भी आप बुक कर लीजिए विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. ये भी शो हो रहा है आपके लिए और
2: प्रीमियर टिकट्स पे जाके इसकी टिकट्स आप बुक कर सकते हैं.
1: द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया आ रहे हैं यहाँ पे और उनका नाटक और उनका कॉमेडी अगर आपको ट्राई आउट करना है, चेकआउट करना है, तो आपने जरूर इस शो में जाना चाहिए. इफ यू नो अबाउट हिम यू नो अबाउट हिम. बेसिकली सिद्धार्थ रंदेरिया इज दैट. सो या डेफिनेटली वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू विटनेस हिम लाइव हियर इन ऑकलैंड, तो जाइएगा और इसका फायदा उठाइएगा आप.
2: इसी नोट पे बाय कहते हैं विशाल ददलानी के. आज आपने गाने यहाँ पे सुने बैक टू बैक, उनके हिट म्यूजिक आपने यहाँ पे सुने, उनके गाए हुए गाने आपने यहाँ पे सुने, जो कि अपने आउटस्पोकन ओपिनियंस के लिए तो जरूर जाने गए हैं, कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं, बट हिज म्यूजिक ऑलवेज बीन अ डिफरेंट एंड हर किसी ने पसंद किया है.
1: जी डेफिनेटली 1 hour इज नॉट इनफ टू जस्टिफाई विशाल ददलानी, बट या अभी के लिए इतना ही काफी. और भी गाने आपके लिए लेकर आएंगे हम उनके. बट कीप लिसनिंग. और ट्रेंड मेकर्स को अगर आपको रोवा पे चेकआउट करना है तो रोवा पे हमारा एक म्यूजिक स्टेशन आ गया है ट्रेंड मेकर्स, वहाँ पे भी आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं.
2: सिर्फ रोवा पे अवेलेबल है वो.
1: या ओनली ऑन रोवा.
2: सो रोवा पे जाइएगा, हम पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे ट्रेंड मेकर्स के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यू कैन लिसन टू बैक सॉन्ग्स विदाउट एनी एड. And talk, of course,
1: talk के लिए तो सुनते हैं यार. All right, sir. Bye bye.

0: Happy Hour on Hum.
1: Now listen.
2: Get up.
1: That's right.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: Save, save big sale ends today. Get New Zealand's best value furniture and beds and save big today. Save big on lounge suites. Lounge suites now from $19.99. Save big on beds. Get the snow bed. Queen, king or super king, only $9.99. Save big on recliners. Get two recliners for $6.99. Plus get a massive 30 months interest-free store-wide. TCs and credit criteria apply. Must end today, only at Big Save.
6: Some things belong in a warm home. A cup of tea, a cozy hot water bottle, a steaming hot bowl of soup. In homes just like yours, serious burns happen every day, especially to curious little hands over winter. Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
7: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
8: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
9: Don't miss it. Get 2 months free when you sign up to NIB Everyday Health Cover for dental, physio, GP and more. Offer extended to 30 June 2026. Credit applies after paying for your first month. Eligibility criteria and T's and C's apply. Visit nib.co.nz to find out more.
10: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Good evening. For latest at 8, I'm Alexander Goldsmith. A body found on the Waikato coastline has been identified as missing fisherman Delane Harding. A police helicopter spotted it near Albatross Point at Taharoa on Saturday. Search efforts began about 11 days ago when the 55-year-old failed to return home. It's believed he was fishing alone. There's concern over the accessibility of meth utensils around Whangarei. A local woman wants a sale ban in dairies and vape shops, even hand-delivering a letter to several owners explaining the harm caused by the drug. Jodie Rameka says they've been around since she was an intermediate.
12: It's been happening for years. It's almost like we've normalised, you know, having these displayed, having these seen.
11: Cromwell police are investigating the theft of 1,000 litres of fuel from a commercial dress in Terrace. They say a number of items vital for day-to-day operations were also taken. In sport, rugby was shift four. Forward coach Jason Ryan has jokingly called himself the lone survivor of the All Blacks. The only member of the previous coaching group admits a lot has happened in a short period of time.
13: A few different moving parts, but you know, I'd like to say just stayed pure to who I am and been lucky enough to get an opportunity with Renz and this crew and really looking forward to it.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
14: World's best. Hamari good brands nahi hai.
10: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
15: गुड इवनिंग एवरीवन, मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए। हमारा साथ रहेगा मिडनाइट तक, और नाइट कैफे हमेशा होता है मंडे टू थर्सडे हमारे साथ, और इस हफ्ते भी नाइट कैफे हमारे साथ होगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका साथ देने के लिए। एज यूजुअल मंडे नाइट्स को तो होता है नो लॉजिक मंडे, मंडे ब्लूज इज ओवर, क्योंकि काम का दिन ख़त्म हो चुका है, अभी आप आराम कर रहे हैं। तो कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं, नो लॉजिक जिसमें हो, जिसमें कम समझ हो, गाने भी ऐसे ही हम लेकर आए हैं आपके लिए। मैं क्रिश आ गया हूं आपका साथ देने के लिए, और देर ना करते हुए शुरू करते हैं नो लॉजिक मंडे।
10: Where sense takes a break. No Logic Monday.
15: वेलकम एवरीवन, नो लॉजिक मंडे में मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूं। आज मंडे है, 29 जून है, और नो लॉजिक से भरी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं। आज मंडे है तो मंडे को हम लेकर आते हैं कुछ लाइट टॉपिक्स, लाइट सब्जेक्ट पर बातें होती है, ताकि बहुत ज़्यादा दबाव ना हो सर पर, दिमाग पर, और आराम से ही ये चिल करते हुए ये मंडे नाइट कट जाए। आज मैं आपको बताऊँगा पॉपुलरिटी ऑफ AI जनरेटेड शो ड्रामाज, जिसके वजह से फेस बाइंग ट्रेंड शुरू हुआ है। जापानीज ओइस्टर इन्फ्यूज्ड सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम निकल चुका है। यूरोप्स लास्ट जेंडर सेग्रीगेटेड बीच भी है, इस पर जानकारी। एक आदमी ने अपने आँखों पर गन का ऑयल लगाकर मसाज किया, और इससे क्या हुआ इस पर जानकारी मैं आपको बताऊंगा। मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम टू नो लॉजिक मंडे।
16: Tikiro

0: party over. Go.
1: Where sense takes a break.
2: No Logic Monday.
3: नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल सरप्राइज कर दे। ऐसी एक स्टोरी है चाइना 26 जून ऑफ दिस ईयर पब्लिश किया गया है, जहां पर चाइनीज एआई जनरेटेड शो ड्रामास काफी बड़ा मैसिव एंटरटेनमेंट ट्रेंड बन चुका है। कंटेंट क्रिएटर्स अब लोगों के फेशियल लाइकनेस को लाइसेंस कर रहे हैं टू क्रिएट एआई एक्टर्स। इस प्रैक्टिस को फेस बाइंग कहा जाता है, जिससे अब एक न्यू डिजिटल मार्केट प्लेस खुल चुका है। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे क्वेश्चंस खड़ी होती है अबाउट इमेज राइट्स और कंसेंट, लेकिन ये फेनोमेनन जो है इट रिफ्लेक्ट्स रैपिड ग्रोथ ऑफ एआई पावर्ड एंटरटेनमेंट जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है चाइना में। आपको तो पता है चाइना 10 कदम आगे हैं और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, तो अब एआई जनरेटेड शो ड्रामास भी बन रहे हैं। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और गाने, उसके बाद में नो लॉजिक मंडे में और भी बातें आपके साथ।
4: पतली कमर मटका के
5: हाय हाय हाय हाय हाय हाय
4: नागिन से बल खा के
5: हाय हाय हाय हाय हाय।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go.
2: समझ में नहीं आ रहा तेरे घर का पता है यार, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया।
3: कटिंग लाना है।
2: अरे मैं क्या बोल रहा हूँ।

0: where nonsense makes perfect sense. No Logic Monday.
1: You're listening to number one. I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. No Logic Monday आपके लिए जारी है. Japanese oyster infused soft serve ice cream हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? Iwate Prefecture, Japan में ये एक जगह है. 26th of June of this year publish किया गया है story जहाँ पर एक roadside diner ने introduce किया है एक unusual oyster flavored soft serve ice cream. इस डिज़र्ट को ऑयस्टर एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है टॉप्ड विद सोया सॉस और काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्ट हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर और यूनिक कलनरी एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर जा रहे हैं. काफ़ी विजिटर्स ने डिस्क्राइब किया है टेस्ट एज सरप्राइजिंगली बैलेंस्ड डिस्पाइट इट्स इंग्रेडिएंट्स, मतलब इंग्रेडिएंट्स जो ऑयस्टर है और सोया सॉस इस सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम में इस्तेमाल करने के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि सरप्राइजिंगली बैलेंस्ड टेस्ट आ रहा है. और ये डिज़र्ट अब वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर और काफ़ी लोग जापान में जो घूमने के लिए जा रहे हैं इसको ट्राई करना चाहते हैं. क्या आप भी ट्राई करेंगे? अब हमें साउंड्स वेरी डिफरेंट, थोड़ा बहुत वियर्ड शायद कि ऑयस्टर फ्लेवर्ड सॉफ्ट सर्व कैसे लगेगा या कैसा लगेगा, लेकिन दिस इज़ हैपनिंग ऑल इन जापान. आपको तो पता है जापान के खाने और टेक्नोलॉजी ये लोग भी बहुत आगे हैं और यहाँ पर भी एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है जब भी आप जाएंगे. आई पर्सनली लव्ड जापान, तो आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इवाते प्रीफेक्चर जापान जाना पड़ेगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए, लेकिन अभी दो गाने आपको सुनाते हैं.

स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Crispy on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: There are easy ways to save up to $500 on power bills this winter, like only heating the rooms you're actually using by shutting doors and blocking sneaky gaps, or turning off appliances that aren't in use, especially the ones you might have forgotten were even on, or by checking if an off-peak plan is right for you to make the most of when power's cheaper. For more winter saving advice, visit eka, that's eeca.govt.nz.
2: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Henderson in just 35 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
3: As a baby, I was burnt in hot water.
4: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
5: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
6: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
0: Night Gaffey on Hum. No Logic Monday.
7: Afternoon rap ka number one hum playing Bollywood's biggest hits Krish ka saath hai. 25th June ko ye story published kiya gaya hai Scotland mein, jahan par ek यंग आदमी ने मसाज गन का इस्तेमाल करके अपने आँखों के अराउंड ऑन एंड अराउंड हिज आईज इस मसाज गन को इस्तेमाल किया और ये इंटेंस वाइब्रेशन जो हुआ है इससे मल्टीपल रेटिनल टीयर्स हो चुके हैं इनके आँखों में, मतलब आँखों में काफ़ी इंजरीज आ चुके हैं इसकी वजह से, और सीरियस आई कंडीशन भी हुआ जिसमें अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट इनको लेना पड़ा. डॉक्टर्स ने वॉर्न किया है कि मसाज गन्स शुड नेवर बी यूज्ड नियर द आईज, और इन्होंने कहा है कि ये केस हाईलाइट करता है द डेंजर्स ऑफ मिसयूजिंग वेलनेस डिवाइसेस. तो काफ़ी ऐसे वेलनेस डिवाइसेस बनते हैं और काफ़ी कोशनरी अप्रोच भी लेना पड़ता है कि कहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे किस तरह से करना पड़ता है, डायरेक्शंस भी दिया जाता है ऑफ यूजेज. तो अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो इस तरह का जो डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, आपका साथ मैं 12 तक दूंगा, लेकिन 9 बजे तक आपके लिए चलता रहेगा नो लॉजिक मंडे.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai kuch aur interesting information aapke saath mein share karna chahunga. Ek ghar ko ek ghar ke andar banaya gaya hai. Ye Brek Island, Croatia mein hua hai. 25th of June ka ye story hai. Ek tiny stone house is completely enclosed within a larger building. Aur ye unusual structure kaafi visitors ko puzzle kar diya hai for more than a century. Its exact origin abhi bhi uncertain hai despite local stories. Lekin is building ko bahut पॉपुलरिटी मिली है, पॉपुलर अट्रैक्शन बना दिया गया है फॉर आर्किटेक्चर एंथुजियस्ट और कहा गया है कि इट इज़ वन ऑफ क्रोशियाज स्ट्रेंजेस्ट आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स. आज के लिए नो लॉजिक मंडे में बस इतना ही.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
7: It's winter, but you already know that.
8: What you might not know is that demand for blood and plasma donors is high.
7: Yet the supply of blood and plasma donors is low.
8: It happens every year when the dreaded lurgies do their darndest.
7: You know, the cough.
8: The splutter.
7: The nose that runs like Usain Bolt.
8: So we're asking you to get your blood buddies together and book a group blood or plasma donation today at nzblood.co.nz.
7: Give blood. Give plasma, save lives.
9: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
10: Sorry about that.
9: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
0: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good evening, with the latest at 9, I'm Alexander Goldsmith. The Prime Minister says he still has confidence in Police Commissioner Richard Chambers. It was recently revealed that complaints against him are being investigated by police and the independent watchdog. Christopher Luxon was asked about the matter today.
12: I do support him, but there's a process going on at the moment where an investigation's underway, and it's entirely appropriate we let that run its course.
11: It's hoped storm damage will dial home the importance of clearing gravel from rivers early. Farmers in South Wairarapa have the District Council's support, but are looking to Greater Wellington after extensive flooding. Local Federated Farmers President Robert Hickson says it's not an isolated problem.
13: What's necessary is to get some sort of clear action plan as to how we are going to ensure that these flooding events and property damage don't continue through lack of action.
11: A petition opposing the restoration of Christchurch's famed cathedral has exceeded 12,000 signatures just days after being launched. It calls on the City Council to reconsider its $15 million investment into the rebuild. And in sport, the Black Caps need 6 wickets to complete a Test Series win over England, starting in an hour in Nottingham. Batter Daryl Mitchell likes the position the Black Caps are in.
14: To have four of some of their best batsmen out is really pleasing. We know got a couple more to get through in the morning.
4: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
4: Night Cafe on Hum.
0: Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
15: वेलकम बैक एवरीवन, यू लिसनिंग टू नंबर 1 हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स नाइट कैफे में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं और नो लॉजिक मंडे के बाद चलो शुरू करते हैं हमारा यूजुअल जो नेक्स्ट आवर होता है आफ्टर नो लॉजिक मंडे ऑन मंडे नाइट्स व्हिच इज कि इस घंटे पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट हो गया और अभी ऑफिशियली आपका स्वागत करते हैं ऑन दिस आवर और आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स जो हमेशा होता है आपके लिए ये आप जरूर एंजॉय करें क्योंकि बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स मैं लेकर आया हूं एंड आई कैन लुक एट इट राइट नाउ now, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ जिसमें अली से थी और शय गिल, विनोद राठौड़, अलका याग्निक, शान, श्रेय घोषाल, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, अजीज कौर जैसे सिंगर्स अभी इस लिस्ट में शामिल है जो एक बैक टू बैक मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ. इसमें पसूरी भी शामिल किया गया है एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ. स्वागत है आपका नेक्स्ट.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है. श्री राम लीला आपके लिए आयोजित किया जा रहा है. स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर. रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है. सेव द डेट, ये डेट आपको मार्क करके रखना है. 8 अगस्त को होगा और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8 अगस्त. क्रिश के साथ और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.

0: सकते हैं चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स. मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक वीव का द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
0: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
3: Are you ready for some extra money? If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. Look out for information from Entrust in your letterbox or email inbox. Check your payment details are correct and let us know of any changes as soon as possible. If we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in late September. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
4: On Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
5: You're humming along with Krish on your number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. AI सभी जगहों पर है तो हम podcast सुनना ना भूले, क्योंकि इसमें रुजबे और सैंडी बहुत ही interesting बातें करते हैं with AI specialist दर्शित पांड्या. ये एक senior principal engineer है platform at Zerko and an AWS community builder, जो बहुत ही बारीकी से breakdown करते हैं the world of artificial intelligence in a way that actually makes sense. चाहे ChatGPT हो या AI at work हो, to job security, privacy concerns, opportunities या कोई भी skills that you need for the future, ये conversation ये सारे questions का जवाब देता है और discuss करता है इन मुद्दों को. चाहे आप excited हो, curious हो या फिर little nervous about AI, ये episode आपके लिए एक practical guide है to understand कि technology किस दिशा में जा रही है और कैसे आप technology के साथ साथ चल सकते हैं. तो AI is everywhere, लेकिन इसका क्या मतलब हमारे ज़िंदगी के लिए होता है, हमारे काम के लिए होता है, ये एपिसोड आप सुनना ना भूले. 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव फॉर द फुल ऑडियो. इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी आप हमारे पास 5599 पर BF भेजे, जहां पर फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय एंड पूजा होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. तो हमारे पॉडकास्ट को आप सुने, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए यहां पर डिस्कस किया जाता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good evening. For latest at 10, I'm Alexander Goldsmith. The body of missing fisherman Delaine Harding has been found on rocks along the Waikato coastline. It was spotted near Albatross Point at Taharoa by the Eagle helicopter. The 55-year-old was reported missing on the 18th. Wellington police are sounding a warning after 6 drug overdoses within days. The latest has left a person hospitalised in a serious condition. The cases involve GHB or GBL, and officers say they're investigating the matter as a priority given the risk to the public. Princess Catherine of Wales has been scaling mountains to raise money for a cancer charity. She's completed the Three Peaks Challenge, which involves climbing the highest peaks in England, Scotland and Wales over 24 hours. She says the journey had been a personal one.
7: I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
6: In sport, 6 wickets is all that stands between the Black Caps and another Test Series win over England. Entering the final day of the third Test in Nottingham, England are 103-4, needing 270 runs to claim the series themselves. Black Cap batter Daryl Mitchell says they dismissed 4 quality batters last night.
8: Got a couple more to get through in the morning, and that's going to be really tough work, and we've got to be really ruthless with how we want to do that.
1: Sports News.
5: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
5: Hum. Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
9: वेलकम बैक एवरी वन. नाइट कैफे में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. आज 29th जून है. अगर आपका जन्मदिन है, वेरी हैप्पी बर्थडे. टीम हम की ओर से बहुत सारा प्यार और बेस्ट विशेज आप तक पहुँचे. हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं. कोई स्पेशल डे है उसके लिए भी आपका स्वागत है और आपको बहुत सारी बधाई. वेलकम बैक. इस घंटे पर भी 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक हम लेकर आने जा रहे हैं आपके लिए. न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट से हम आपको अपडेटेड रखते हैं करंट अफेयर्स में या क्या कुछ हो रहा है हमारे अराउंड. एंटरटेनमेंट में भी हम नंबर वन है क्योंकि न्यूज़ के बाद तुरंत आपके लिए हम लेकर आते हैं 30 मिनट्स के लिए नॉन स्टॉप म्यूजिक. तो आप ये एंजॉय करें. क्रिश के साथ है एंड नाइट कैफे आपके लिए जारी है.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ग्लोबल सेंसेशन करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं टू ओकलैंड एंड इट्स गोइंग टू बी मैसिव फ्रॉम चार्ट टॉपिंग हिट्स टू द एंथम्स जो हर किसी को पता है जो पसंद करते हैं इनके गाने एक्सपीरियंस कीजिए करण औजला लाइव ऑन स्टेज एट स्पाकरीना 25th August को ये परफॉर्म करेंगे एंड दैट्स नॉट ऑल इनको एक स्पेशल गेस्ट हिट मेकर IKKY Icky join in karenge, making this an unforgettable night of music and energy. Aap apna chance miss nahi kar sakte to be part of the P-Pop Culture World Tour. Tickets or more information, aap hum.rover.nz visit kare ya phir livenation.co.nz visit kare. Karan Aujla 25th August Spakarina mein hone ja raha hai. Aapko bhi yahan par pahunchna hai. Aur humare saath hi aapke liye Karan Aujla ka gana daily pesh karenge. Aapko guess karna hoga title of the song. Correct entries ko draw mein shamil kiya जाएगा डबल पास जीतने का मौका होगा आपको टेक्स्ट करना होगा KAI अपने नाम के साथ सही जवाब 5599 पर ड्रो 6 जुलाई को होने जा रहा है

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: वेलकम बैक एवरीवन, ये हमारा फाइनल आवर है और मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ. हमारा साथ रहेगा टिल मिडनाइट और न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट तो आपने सुना. और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूज़िक. गाने में बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं. प्रिया सरैया और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में ये प्यारा सा पहला गाना. विशाल ददलानी और पायल देव आ रहे हैं दूसरे गाने के साथ में. उदित नारायण एंड एवरीवन्स फेवरेट अलका याग्निक, जिनको अभी रिसेंटली पद्म भूषण से नवाजित किया गया है, इनकी आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना. इसके अलावा विशाल मिश्रा और श्रेय घोषाल, फिर मित्राज की आवाज़ में, फिर जुबिन नौटियाल की आवाज़ में बहुत ही प्यारे गाने में.

एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, क्योंकि ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहे और ऐसे ही आपके लिए प्यारे गाने हम पेश करते रहेंगे। बॉलीवुड की खबरों में विक्रांत मेसी का कहना है कि मिर्जापुर हैड 85% मेल कास्ट और क्र्यू और वी इंडल्ज्ड इन आवर मेल ईगोज, इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि ये फिल्म के क्रू और कास्ट काफ़ी बड़े थे लेकिन 85% ऑफ देम वर मेल और इसलिए इन लोगों को बहुत मस्ती भी करने का मौका मिला ऑन द सेट। मिर्जापुर में विक्रांत को आप देख पाएंगे एक अलग अंदाज में। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी बॉलीवुड खबरें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। नाइट कैफे जारी है, मिड नाइट तक मैं आपका साथ दूंगा।

0: से ऑन हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
2: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively in Beds R Us Manukau and Phuket Kohe, where dreams begin. Smile.

0: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
2: अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
5: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to...
6: Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road!
5: In just 23 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.

0: Coffee on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है और आज 29th जून है बिफोर द नाइट इज ओवर एक बार फिर हैप्पी बर्थडे आपको और जितने भी हमारे नाइट शिफ्ट वर्कर्स है फैक्ट्री वर्कर्स है आप हमें हमेशा सुनते रहते हैं बहुत जल्दी टाइम कटता है जब एंटरटेनिंग सॉन्ग्स आपके लिए बजते रहे और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से आपके लिए पेश करते रहे ऊबर ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स आप भी हमारा साथ देते हैं थैंक यू सो मच मंडे नाइट नाइट कैफे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ अगले गाने पर आप सभी को शामिल

नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। आज मंडे नाइट का नाइट कैफे यहीं खत्म होता है, कल मिलते हैं ट्यूसडे नाइट, नाइट कैफे में लेकर आ जाऊंगा। 8 to 9 याद रहे, कोक स्टूडियो रिलोडेड भी आपके लिए रहेगा। कल मिलते हैं, हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट, गुड नाइट।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

ओ मैं क्या की हाल है करन आगे सब दंगा। एक किस्सा सुनो, उस दिन दी बात है जब यारा दा पै गया पंगा। सब करते हैं मेरी तरीफा, तू ही ता जान दे हो मैं किन्ना शरीफ हां।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लव यू अनकंडीशनली सोनिया.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 ईयर्स।
4: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम,
5: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम।
6: दिस टाइम आई वांट फुल फ्रीडम।

0: with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़्वी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
3: मुझे हिट गाने.
4: Night Fly.

0: Flight on Hum.
1: Nee aa jaate nahi.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
0: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल। इंडिया फर्स्ट 2000 करोड़ फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल स्टारिंग अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर।
2: एक जबरदस्त कहानी है।
3: और टाइटल क्या है फिल्म का?
2: वेलकम टू द जंगल।
1: वेलकम टू द जंगल नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
6: Nightfly.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन। Playing Bollywood's biggest hit.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
0: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. People are growing increasingly worried about the government's ability to manage climate risks. A new IAG poll shows 80% believe insurance is becoming less affordable as well. AMI spokesperson Bryce Davies says they also expect hazards to ramp up.
7: They're experiencing it themselves, but also they're looking at government and expecting them to show leadership, and they're not seeing it.
6: The PM has been caught off guard after being grilled about there being no night shelter in Auckland for rough sleepers. Christopher Luxon admits he was unaware of this.
8: Personally, no, but I'm comfortable with the government's program and the amount of investment that we've put into housing.
6: There are signs the road to economic recovery is taking longer than expected. A Kiwibank report found higher oil prices and weaker spending have slowed the rebound. Chief Economist Jared Kerr says there are pockets of resilience, though.
9: We will bounce out of it, and we'll bounce out of it faster than we had feared, and we'll be heading into next year with a bit of momentum.
6: More than 2,000 rescue workers from around the world are helping with the ongoing search for quake survivors in Venezuela. Miraculous stories have been emerging, including a mother and her 3-week-old baby being pulled from the rubble. More than 1,400 are dead and tens of thousands are still missing. In sport, the Black Caps are the first cricket team to come from behind and win a 3-test series in England. Captain Tom Latham's team taking out the 3rd test at Trent Bridge by 160 runs to claim the series 2-1.
10: Very proud of the efforts that the guys have put in over the last 3 weeks to be in this position. Yeah, we'll enjoy this one.
6: And an upset's brewing at the FIFA World Cup in Houston. Japan are leading 5-time champions Brazil 1-0 at halftime of their round of 32 match. Football updates brought to you by Hisense.
4: Sports news
0: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: 6.5 degrees temperature Auckland mein bhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 15, overnight kam se kam 5 degrees rahega. Aaj mausam saaf aur suhana rahega. Sunrise 7:34 am par aur sunset aaj ka sham 5:16 par hone ko hai.
0: Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
2: 2:30 हो रहे हैं, 6:00. नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका. वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज मंगलवार है, 30 तारीख जून. सबसे पहले आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी.
3: गुड मॉर्निंग आप सभी को भी. अ वेरी गुड मॉर्निंग. आज के सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से,
2: और उम्मीद है कल का दिन आपका अच्छा रहा होगा और अब एक नई सुबह के लिए आप तैयार होंगे. और फाइनली देखे तो ये आखिरी दिन है जून के महीने का.
3: Absolutely. और यू नो, देखते ही देखते देखो जून महीना भी खत्म हो गया. और कल भी हम इसी चीज के बारे में बातें कर रहे थे कि Very soon, even this month will be gone and एक नया महीना जो ये हम शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत होगी आप सभी के साथ. तो the year is going quite fast और उम्मीद है कि आप भी समय के साथ चल रहे हैं. समय से आगे तो कोई नहीं चल पाता, लेकिन समय से पीछे अगर आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान भी माना जाता है. बट वी होप यू आर टुगेदर विद टाइम, और जो भी आपकी चीज़ें आपको करनी है, जो डेडलाइंस आपको मीट करने हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग, और आपने जो भी प्लान किया हो वो समय के हिसाब से, समय के अनुसार आप हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में.
2: तो आज के इस सफर को हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, और इस घंटे ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ हम आज की अपनी पहली कहानी लेकर आएंगे.
3: तो तैयार रहिएगा क्योंकि कहानियों के साथ साथ आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारियां जो है खबरों के मामले में ये भी रहेंगी. बट शुरुआत करेंगे आपकी सुबह की एक अच्छी खबर के साथ, एक ऐसी स्टोरी के साथ विच नॉट जस्ट मेक्स यू फील हैप्पी, लेकिन साथ ही साथ आपको एक अच्छी सीख जो है ये भी दे. तो कोशिश हमारी ओर से यही रहेगी, जिसके लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.

0: Sunnyside Up.
1: आज का जो सनी साइड अप स्टोरी है उसका वक्त हो चुका है और आज सबसे पहली कहानी जो है ये यूनाइटेड किंगडम से है। एक इंडस्ट्रियल टाउन में लोकल हेल्थ वर्कर्स जो है उन्होंने ये नोटिस किया कि काफ़ी लोग थे जो साउथ एशियन कम्युनिटी के थे, वो काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रहे थे, सीवियर क्रॉनिक आइसोलेशन, फिजिकल मोबिलिटी, और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो समाज से, कम्युनिटी से, बाकी लोगों से एकदम अलग हैं। तो फिर क्या हुआ कि द सेक्रेटरी ऑफ ए लोकल मॉस्क, उन्होंने अपना जो एम्प्टी कम्युनिटी हॉल है इसे देखा ऑन थर्सडे आफ्टरनून, और उन्हें एहसास हुआ कि दे हैड अ सेफ हेवन सिटिंग राइट अंडर देयर नोजेस। उन्होंने बिल्कुल मुफ्त में मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्लासेस जो है ये शुरू किए, खासतौर पर पुरुषों के लिए जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। वीडियो ऑफ ओल्डर अंकल्स, ग्रैंडफादर्स और रिटायर्ड लेबरर्स जो हैं उनको दिखाया गया कि वो योगा जो है और फिजियोथेरेपी स्ट्रेचेस वगैरह जो हैं ये कर रहे हैं, और उसके बाद उनका ये वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और लोगों ने काफ़ी उनको प्रेज किया कि इट्स अ ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग इमेज दैट कम्प्लीटली फ्लिप्स एक्सपेक्टेशन की क्या होता है हमारे ट्रेडिशनल कम्युनिटी स्पेस में। सो कभी कभार जो है प्रॉब्लम तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हम सभी बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन उसके साथ सॉल्यूशंस जो हैं ये भी देना हमेशा ज़रूरी होता है।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, देखो मैं आ गए।
4: Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
6: Professional financials है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
8: Jen didn't think she needed a DVS system.
9: Oh, I've got insulation in that.
8: But Jen had forgotten about the mold on her walls and curtains.
9: Ah, yeah.
8: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mold and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
11: Bunnings Warehouse.
10: Lowest prices are just the beginning.
12: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
11: TradeDepot.co.nz.
0: The beat of Bollywood.
13: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में, यूएस और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोहा में दोनों देशों के बीच मीटिंग होगी। हालांकि ईरान ने अभी तक इस टॉक्स को कंफर्म नहीं किया है। इस बीच सीज फायर के बावजूद लेबनान में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच फाइट जारी है और ईरान ने शर्त रखी है कि यूएस के साथ फाइनल डील के लिए इसराइली फोर्सेस को लेबनान से पूरी तरह हटना होगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वोडोवे में कमर्शियल शिप्स का ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, जहां ज्यादातर वेसल्स अब ओमान कोस्ट के पास वाला रूट चुन रहे हैं, जो तेहरान के दबदबे के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत में टीवी के सरकार के आने के बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और एसपीज के साथ अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में वुमेन सेफ्टी को सबसे बड़ी प्रायोरिटी बताया है और FIR दर्ज करने में जीरो टॉलरेंस की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर विजय ने साफ किया है कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों न हो, गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा और मासूम को फंसाया नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने ऑफिसर्स को बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के स्वतंत्र रूप से काम करने का भरोसा दिया है। फिजी में फॉर्मर सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम ने वर्तमान सुपरवाइजर आना मताईजीवा के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर्स कमीशन में फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई है और उन्हें सस्पेंड करने की मांग की है। ये कदम चीफ जस्टिस सलेसी तेमो द्वारा सनीम और फॉर्मर इकोनॉमी मिनिस्टर अय्याज सईद कय्यूम को अब्यूज ऑफ ऑफिस के आरोपों से बरी करने के बाद उठाया गया है, जहां कोर्ट ने इस केस को बिल्कुल गलत बताया था। सनीम का आरोप है कि मताईजीवा ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, जबकि प्राइम मिनिस्टर सिद्धिवेनी रंबुका ने कन्फर्म किया है कि कमीशन के मेंबर्स इस कंप्लेंट पर जल्द ही रिव्यू करके आगे का एक्शन तैयार करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत राउंड ऑफ 32 का दूसरा मैच फिलहाल खेला जा रहा है। इस मैच में अभी जापान और ब्राजील एक एक गोल से बराबर हैं। यह मैच दूसरे हिस्से में जारी है और मैच पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे।
14: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
0: Bollywood's most wanted.
4: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
15: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 26 मिनट हो रहे हैं फिलहाल, अब अच्छा बजकर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और हम बातें करते हैं हर सुबह बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में भी। कल इफ यू रिकॉल हम लोग बातें कर रहे थे अबाउट क्या बोलते हैं ट्रिक्वल्स जो अलग अलग फिल्मों के आने वाली हैं और उनमें से एक फिल्म जो लिस्ट में आई थी जिसको लेकर आपने थोड़ा डाउट जो है ये जताया था वो थी हेरा फेरी 3।
1: नहीं, मैंने ये कहा था कि कब की अनाउंस हुई है और अभी तक कुछ खास उसका हुआ नहीं है ना।
0: तो अभी हिंदुस्तान टाइम्स पर एक रिपोर्ट जो है ये आई है जहां पर हेरा फेरी 3 के जो फैंस हैं उनके लिए एक अपडेट है और अपडेट ये है कि फिल्म मेकर प्रिया दर्शन इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद द फिल्म एनीमोर।
1: मतलब क्या वो उसे ना तो डायरेक्ट करेंगे और ना तो उसे प्रोड्यूस करने वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
0: जो प्रोड्यूसर हैं फिरोज नडियाडवाला, उन्होंने बताया कि जो ट्रिक्वल हैं ये एक राइट डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन द वेटरन डायरेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रियदर्शन को कांटेक्ट किया और उनसे पूछा इसके बारे में और उन्होंने कंफर्म किया है कि आई एम नॉट

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: समय की ओर अगर देखें तो अभी 28 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे. आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. राम राम, जय बजरंग बली हनुमान. हैप्पी ट्यूसडे एवरीवन, हैव अ गुड डे. मिस्टर मटर मटर, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.
3: और इनके अलावा एक और गुड मॉर्निंग मैसेज लाइक एवरी मॉर्निंग हमारे पास आज आया है. एंड दिस इज नन अदर देन बॉबी मान जी. इन्होंने कहा है, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव एन ऑसम डे. जय सिया राम, जय हनुमान, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच बॉबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए और आपके मैसेज के लिए भी.
2: जय श्री राम पूजा और एन विजय, मंगलवार का ये दिन शुभ हो, माता रानी की कृपा आप दोनों पर रहे. हैप्पी ट्यूसडे एंड हैव एन अमेजिंग डे. जया, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.
3: Good morning, Ram Ram Vijay ji, Pooja ji, wishing you a wonderful day. Vimlesh and Priya, thank you so much aap dono ke bhi message ke liye.
2: To aap ke waqt aur messages ke liye bahut bahut shukriya. Aaj 30th of June, agar aap apna birthday ya wedding anniversary celebrate kar rahe hain, family mein koi hai, friend circle mein koi hai jo apna special day celebrate kar rahe hain, to apne messages samay se pehle bhejna hame na bhule, kyunki hum agle ghante aapko wish karenge. Aur aaj 30th of June, by the way, aaj social media day ye bhi celebrate kiya ja raha hai.
3: सोशल मीडिया डे
2: ग्लोबली 30th जून को ये मार्क किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है उन्होंने उसने ग्लोबल कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है. यू नो, नेटवर्किंग, मॉडर्न

0: अभी कल्चर जो है और 2010 में आई थिंक इसकी शुरुआत जाकर हुई थी और अब तो हर दिन या हर साल जो ग्लोबल सोशल मीडिया डे है इसे सेलिब्रेट किया जाता है।
1: आई गेस आजकल के ज़माने में ये काफ़ी रेलिवेंट भी है बहुत से लोगों के लिए। इट्स समथिंग दैट इज़ टू रेलिवेंट टू यू नो टू बी पार्ट ऑफ एंड दे वुड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। तो सेलिब्रेटिंग इट आजकल इट डज मेक सेंस और सोशल मीडिया इतना इम्पैक्टफुल भी है दैट इट नीड्स दैट रिस्पेक्ट, इट नीड्स टू बी यू नो सेलिब्रेटेड। बट वेन इट कम्स टू द राइट थिंग्स, बहुत से मामलों में सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल रहा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है, लेकिन बहुत से मामलों में काफ़ी रिस्की भी रहा है, डेंजरस भी साबित हुआ है। But that's the whole point कि जब social media day मनाया जाए, not just the advantages of it, but the fact कि disadvantages पर भी awareness हो, चर्चा हो, ये जरूरी है।
0: और इन सभी चीज़ों के बारे में जो चर्चा है ये हम करते रहते हैं। एंड जो डिजिटल 2026 मीडिया रिपोर्ट है ये भी डाटा रिपोर्टल द्वारा पब्लिश कर दिया गया है और इस पर डिटेल्स जो है ये हम आपके लिए आज बाद में चलकर इस प्रोग्राम में ज़रूर लेकर आएंगे। वी विल बी टेकिंग अ लुक एट सम ऑफ द नंबर्स। यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट डाटा दिखाता है कि अभी धरती पर 8.28 बिलियन पीपल हैं, 8.28 बिलियन। एंड ये फिगर जो है इस 69 मिलियन हायर जो लास्ट रिपोर्ट किया गया था अप्रैल 2025 में। और उसके अलावा दे आर 5.83 बिलियन यूनिक मोबाइल यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड, 5.83 बिलियन। दुनिया का अगर देखें तो अराउंड 70.4% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं।
1: Quite interesting, man. So let's see आज social media day पर और क्या कुछ updates और क्या कुछ interesting information आपके लिए है जो हम आपके साथ जरूर share करते रहेंगे, जिसके लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है। पर on the other hand आपके लिए कई तरह के updates, stories, ये सारी चीज़ें तो होती ही है, but साथ ही साथ हम सवाल वगैरह जो है ये भी लेकर आते हैं। और सवाल की बातें हों तो आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इस बार बेसिकली क्या होगा कि मैं आपको एक फिल्म का नाम बताऊंगी या फिर एक शब्द बोलूंगी जिसका ऑपोजिट वर्ड या समथिंग ऑपोजिट टू दैट वुड बी बेसिकली अ फिल्म टाइटल, और आपको अनुमान लगाना होगा कि ये कौन सी फिल्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम अलग अलग हैं, अगर मैं ये बोलूँ तो इसके ऑपोजिट से आपको कौन सी फिल्म का टाइटल याद आता है?
0: हम साथ साथ हैं।
1: एग्जैक्टली, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो मैं आपको एक वर्ड बोलूंगी या फिर ऐसे एक अलग सा लाइन बोलूंगी और आपको बस उसका एक ऑपोजिट यू नो वो ढूंढना है, जवाब ढूंढना है, जो कि बेसिकली एक फिल्म का टाइटल भी होगा। ना रिमेंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा हम अलग अलग हैं और इसका ऑपोजिट एक हिंदी फिल्म टाइटल क्या हो सकता है? हम साथ साथ हैं, जो आपने जवाब दिया, राइट? सो दूसरा जो वर्ड होगा या फिर बेसिकली आज का जो सवाल होगा जो आप हमें आंसर कर सकते हैं वुड बी मैनी मैनी हीरोज।
0: मैनी मैनी हीरोज
1: नहीं, मैनी हीरोज।
0: अच्छा, मैनी हीरोज,
1: यस।
0: ओके, मुझे मिल गया जवाब।
1: तो इसका ऑपोजिट क्या होगा जो एक हिंदी फिल्म का टाइटल है? और अगर आपने जवाब ढूंढ लिया है तो बस BF लिखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम, अपना जवाब और भेज देना है 5599 पर।
0: तो मैनी हीरोज इसके ऑपोजिट में एक फिल्म का नाम जो है ये आपको मिलेगा, वो कौन सा नाम है वो आपको लिखकर सुबह सुबह हमारे पास भेजना है। BF आंसर और नाम 5599 पर। अभी 22 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, थोड़ी देर बाद और भी अपडेट्स हम आपको देंगे। जो राउंड ऑफ 32 का मैच खेला जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत जापान और ब्राज़ील के बीच, इस पर लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए होंगी।

0: 18 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में और फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 का जो मैच है ये जापान और ब्राजील के बीच खेला जा रहा है. अराउंड 10 मिनट्स टू गो फुल टाइम. दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर हैं. दूसरी तरफ जय सियाराम विजय और पूजा जी हैव अ ग्रेट डे. हनुमान बाबा ब्लेसिंग्स अपॉन यू ऑल. पर महाराज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. और सवाल आपने पूछा, मेरे ख्याल से 2-3 लोगों ने ही अपने आंसर्स अभी तक हमारे पास भेजे हैं.
1: अभी हम आपको नहीं बताएंगे कि जवाब आपका सही है या गलत, लेकिन हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा रहे हैं कि व्हाट वाज आवर क्वेश्चन ऑल अबाउट और बेसिकली क्या सवाल था जो आपको जवाब देना है. तो आज मैंने क्या किया, मैंने एक और एक गेम जो ये खेलने का फैसला किया जहाँ पर ओला सेड वाज कि मैं आपको एक वर्ड बोलूँगी और उसका ऑपोजिट जो भी जवाब होगा बेसिकली वो होगा एक फिल्म का टाइटल और आपको वो जवाब देना है. जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक लाइन बोला हम अलग अलग हैं और उसका ऑपोजिट जो एक फिल्म का टाइटल हो सकता है वुड बी हम साथ साथ हैं. फिर उसके बाद में ये एक एग्जाम्पल था जो हमने आपको दिया और फिर उसके बाद में हमने आपसे जो सवाल पूछा वाज बेसिकली जो वर्ड जिसका ऑपोजिट एक फिल्म का टाइटल होगा जिसका आंसर आपको देना है इज मैनी हीरोज. मैनी हीरोज का ऑपोजिट क्या होगा जो कोई एक हिंदी फिल्म का टाइटल हो सकता है. अभी आंसर आपने जो दिया है, जो 3 लोगों ने हमारे पास बेसिकली आंसर्स भेजे हैं, आपका सही है या गलत, नितिका, श्वेता और साथ में रोनल्ड, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे. लेकिन देखते हैं कि आपके अलावा क्या कोई कोशिश करता है या नहीं और क्या कोई सही जवाब दे पाता है या नहीं.
0: सो BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं.
2: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Tu bojao, papi ho. Tu bojao.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Traffic. Ice hockey games this weekend.
2: Fine and clear today with a high of 15 degrees. Motorways coming in not too bad so far. Southern 32 minutes, Manukau to the city. Hour plus from Drury. Heavy at Papakura. Slow patches to Mount Wellington. Northwestern 28 in from Massey. Slow patches Massey to Point Chev. Slow all the way from St. Luke's. Northern 23 in from Constellation. 50 from Silverdale. Heavy Greville to Constellation. Slow patches to the bridge.
1: Hard hitting, high intensity, fun for the whole family. Search ice hockey tickets.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए। Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए।
4: Maddie didn't think she needed a DVS system.
5: I've got a heat pump.
4: That should do.
5: But it didn't do it, did it, Maddie?
4: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
5: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
7: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
6: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
7: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
8: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
9: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: Breakfast Catch Up. Throwback.
11: 13 मिनटों के बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे। लेकिन ख्याल रखें, हम आपको बताते आए हैं, बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि आपका ईस्टर 2027 सबसे बढ़िया कैसे हो सकता है, जहां पर यू नो लाजवाब खाना पीना, रोड ट्रिप प्ले लिस्ट, नई दोस्ती, खूबसूरत नज़ारे, ये सब कुछ जो है कि आपका हो सकता है। और कैसे, ये जानने के लिए आपको हमारे शामिल रहना है ओनली ऑन हम,
12: डेफिनेटली, क्योंकि हम पर ही ये डिटेल्स आपको हम देंगे, जहां पर यू विल फाइंड आउट कि हाउ इज ऑल ऑफ दीज पॉसिबल फॉर यू। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, जबकि अभी करीबन 12 मिनट बाकी हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में, ठीक 7 पर तो न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए रहेगा ही, लेकिन अगले घंटे हम मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए शुरू करने वाले हैं। तो और भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज आपके साथ हम बातें करना चाहते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का जो ट्रेंड हो, टाइम हो, तो वो इतना ज़्यादा होता है कि वो चीज़ आपको हर जगह दिखनी शुरू हो जाए, और जैसे ही हर जगह वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओके, नाउ दिस इज़ द ट्रेंडिंग थिंग। आज ऐसी है एक चीज़ जिसके बारे में हम बातें करेंगे ट्रेंड पेट्रोल में, और ये जो चीज़ है ये ट्रेंड कर रही है फिलहाल न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड में काफ़ी पॉपुलर हो रही है ये दिन ब दिन, कि हर ओर हर जगह ये आपको दिखेगी। बट ये है क्या, जानने के लिए आपको हमारे साथ ही बने रहना होगा और ट्रेंड पेट्रोल का इंतजार करना होगा।
11: बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया के एक दादाजी हैं, ही इज गोन वायरल राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो करने के बारे में शायद हम इससे कई लोग यू नो सोच भी नहीं सकते, कि ऑलरेडी इसके बारे में सुनकर ही हम लोग हिम्मत हार जाते हैं कि भाई मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। हैव यू एवर डन स्काई डाइविंग?
12: नहीं, कभी नहीं किया और मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है।
11: तो ये जो दादाजी हैं, इन्होंने पहले 15,000 फीट से स्काई डाइव किया था, और दिस टाइम अराउंड उन्होंने डिसाइड किया कि ही इज गोइंग टू रेज द बार। और वो 15,000 के बजाय 18,000 फीट से स्काई डाइव करेंगे और उनके साथ जो है उनके जो ग्रैंडसन हैं ये भी थे। ये वीडियो जो है अंकित नाम के एक व्यक्ति ने शेयर किया जिन्होंने रिवील किया कि ये उनके दादाजी का पहला स्काई डाइव नहीं था। ही प्रीवियसली जंप फ्रॉम 15,000 फीट। वीडियो की शुरुआत में अंकित जो है वो शुरू करते हैं, कहते हैं कि सो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेकर आए हैं स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार 15,000 फीट से करवाई थी, इस बार 18,000 फीट से करवा रहे हैं। और जस्ट मोमेंट्स बिफोर बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट अंकित जो है अपने दादा से पूछते हैं, दादाजी से, बाबा डरता तो नहीं, यानी कि आपको और
12: उनके, तो नहीं लगी।
11: हाँ, उनके दादाजी ने कहा डरता कौन है मैं। और उसके बाद बोथ ऑफ देम वेंट और 18,000 फीट से उन्होंने जंप चाहेंगे। हाँ, जस्ट इमेजिन,
12: वेरी इंटरेस्टिंग यार। ये सम पीपल आर सो करेजियस, उनको लाइक नहीं लगता है किसी भी चीज से डरने लगता है, एंड हाइट बीइंग वन ऑफ दोस थिंग्स। एंड कुछ लोग होते हैं जिनको डर भी लगता है लेकिन हिम्मत भी होती है कि चलो अपने डर पर काबू करेंगे। दीज आर टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इतना डर लगता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डर है रहने दो, कोई काबू वाबू नहीं करना है, फॉल इन दैट थर्ड कैटेगरी। बट आई मस्ट से कि ये जो शख्स हैं एट सच अ एज प्रूविंग एवरीथिंग रॉन्ग, कि हर चीज़ करने की एक उम्र होती है, एक टाइम होता है, और वो टाइम निकल गया, वो उम्र निकल गई, तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली ही इज़ प्रूवन दैट रॉन्ग, क्योंकि आजकल के यार कितने सारे यंग लोग होंगे जिनमें शायद हिम्मत नहीं होगी कि वो स्काई डाइव जैसी चीज जो ये करे, पर ही हैज डन इट एंड ही हैज प्रूवन एवरीवन रॉन्ग। सो इफ देयर इज एनी सच थिंग जो आपके मन में भी हो ऐसा कि यार ये थोड़ी डरावनी है, थोड़ी ऐसी चीज है जो हर कोई शायद ना कर पाए लेकिन मुझे करना है कभी ना कभी, तो डू लेट अस नो कि ऐसी कौन सी चीज है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग।
11: वैसे क्रिस्टीन है और एक और आंसर है रंगा है मेरे ख्याल से, और तेश आपने भी अपने आंसर्स जो है ये भेजे हैं हमारे पास। और अगर आपको भी जवाब भेजना है तो 5599 पर अपने आंसर्स भेज सकते हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज ऑकलैंड में मौसम साफ और सुहाना रहेगा. अभी ऑलमोस्ट 7 डिग्रीज है टेम्परेचर. आज का हाई 15, ओवरनाइट कम से कम 5 डिग्रीज. सनराइज 7:34 AM पर और आज का सनसेट शाम 5:16 पर होगा.
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून.

0: .nz. अभी 3 मिनट हो रहे हैं 7:00 मॉर्निंग मैडनेस में आपका स्वागत हम कर रहे हैं और इस घंटे तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके लिए होने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें फीफा वर्ल्ड कप का जो मैच है ये खेला जा रहा था जापान और साथ में ब्राज़ील के बीच। इट हैज़ फाइनली कम टू एन एंड और इस मैच के साथ ब्राज़ील का सफ़र जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ख़त्म हो चुका है क्योंकि जापान की हार अभी ब्राज़ील के खिलाफ 2-1 से हुई है।
1: जापान की हार जब ब्राज़ील से हुई तो ब्राज़ील का वर्ल्ड कप में कैसे सफर खत्म हो गया?
0: आई मीन जापान का खत्म हो गया है।
1: ओके, नाउ दैट मेक्स सेंस। आई गॉट अ बिट कंफ्यूज्ड एक्चुअली। कितने पॉइंट से कितने गोल से हार हुई है इनकी?
0: 2-1
1: 2-1 ओके। सो ब्राज़ील जो कि वन ऑफ द फेवरेट्स रही है फीफा वर्ल्ड कप में, वी विल से कि जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है इट्स वन ऑफ दोज मोस्ट पॉपुलर टीम्स जिसको बहुत से लोग सपोर्ट शो करते हैं। एंड दिस टाइम अराउंड इफ इट्स डूइंग सो वेल देन डेफिनेटली देयर आर सो मेनी फैंस ऑफ ब्राज़ील टीम एज वेल जो काफ़ी खुश होंगे ना सुबह का मैच देखकर।
0: डेफिनेटली खुश होंगे लेकिन अभी 2 और मैचेस आज बहुत ही ज़बरदस्त खेले जाएंगे। 8:30 से जर्मनी वर्सेस पेरुगुए और दिन में 1 बजे नेदरलैंड्स और मोरक्को का मैच जो है ये खेला जाएगा। इन पर भी अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। वैसे पिछले घंटे सवाल आपने पूछा था,
1: सवाल बड़ा सिंपल सा था। मैंने कहा था कि आपको एक शब्द हम बोलेंगे या फिर कोई भी एक लाइन बोलेंगे जिसका ऑपोजिट बेसिकली एक हिंदी फिल्म का टाइटल होगा और आपको बस वही हिंदी फिल्म टाइटल जो है ये गेस करना होगा। फिर हमने आपसे जो वर्ड बोला था वॉज मैनी हीरोज, अब उसका ऑपोजिट कौन सी हिंदी फिल्म का टाइटल हो सकता है ये आपको अनुमान लगाना था और जवाब हमारे पास भेजना था। आज बहुत से लोगों ने तो अपने आंसर्स नहीं भेजे, प्रोबेबली दे डिडंट रियली नो व्हाट कुड बी द आंसर या फिर वो थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। एंड इज द वेरी फर्स्ट डे जब ये गेम हम आपके साथ खेल रहे हैं तो ऑल गुड, हम आपको जरूर टाइम दे रहे हैं हमारे साथ होकर बाद में भी इसमें पार्ट लेने का। बट अभी के लिए आज जो हमने आपसे पूछा उसके जितने भी आंसर्स आए सब ने सही जवाब दिया और द करेक्ट आंसर ऑफ मैनी हीरोज वुड बी एक विलन। उसका ऑपोजिट जो हिंदी फिल्म का टाइटल होगा वुड बी एक विलन।
0: थोड़ी देर बाद आज के आपके राशि वाइब्स भी इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे।
2: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। विजिट indelibleHomes.co.nz।

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले आज मेष यानी एरिस आपके लिए कहा गया है, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन बहुत सोच समझ कर ले, बिजनेस अच्छा चलेगा और लीगल मैटर्स जो है ये आपके फेवर में जाएंगे, कुछ फायदे के मौके भी आज आपको मिल सकते हैं।
3: वृषनी टोरस, आज आपके लिए बताया गया है कि दिन आपका थोड़ा हैवी रहने वाला है, देयर सो मेनी थिंग्स जो आपको करने थे और बहुत सी चीज़ों के लिए आपको कुछ ज़रूरी फैसले भी लेने थे। अच्छा दिन है आज ये फैसले लेने का, इन पर काम करने का और अच्छे रिजल्ट्स जो है ये हासिल करने का। वैसे आपके लिए ये भी बताया गया है कि आज शारीरिक कष्ट संभव है, यानी फिजिकली किसी तरह से आपको चोट वगैरह लग सकती है, हार्म पहुँच सकता है, तो इसीलिए अपना ख्याल रखिएगा।
2: मिथुन यानी जेमिनी, कुछ सोशल वर्क करने के लिए आप काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे, इससे आपको मान सम्मान मिलेगा। नए प्लान्स आप बनाएंगे बट इमीडिएटली उसका कुछ खास फायदा आपको नहीं मिलेगा, घर बाहर खुशियां होंगी आज आपके लिए।
3: करके ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है बिजनेस है अगर आपका तो अच्छा चलेगा, इससे रिलेटेड कोई ट्रिप पर जाने वाले, इवन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आज बिजनेस के मामले में आप एक प्रोग्रेस देखेंगे, शारीरिक कष्ट वैसे संभव है इसीलिए अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा भी आपके लिए बताया जा रहा है।
2: सिंह यानी लियो, किसी दूसरे की बातों में ना आए, आप जब आज आपको भी बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा, बिजनेस वैसे अच्छा चलेगा आपका, लेन देन करते समय थोड़ा सावधान रहना है और सिमिलरली मशीन्स या व्हीकल का इस्तेमाल करते वक्त भी केयरफुल रहें।
3: कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि पैसों के मामले में आज दिन आपके लिए काफ़ी हैवी रहने वाला है, हैवी इन अ सेंस कि कुछ स्ट्रगल वगैरह शायद आप फेस करेंगे, तो इसीलिए एडवाइजेबल वुड बी अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो दैट यू कैन नेवर फॉरगेट, कीप दैट इन योर माइंड, लेकिन वर्क इट फॉर योर बेनिफिट। आप उस तरह से अपने प्लान्स बनाइए, सेविंग्स वगैरह कीजिए कि आगे चलकर आपको पैसों की दिक्कत ना हो या किसी से मांगना ना पड़े। घर और बाहर आज हैप्पी एनवायरनमेंट रहेगा, ये भी आपके लिए बताया गया है, और भाई के साथ आपका काफी अच्छा समय बीतेगा, आपका रिश्ता अपने भाई के साथ और भी मजबूत होगा। आज
2: तुला यानी लिब्रा, आज पैसों का फायदा आपको हो सकता है, नौकरी हासिल करने की अगर आप कोशिश में थे तो ये भी आपको मिल सकता है, किस्मत का पूरा साथ रहेगा और आज अपने सुख के साधन खरीदने पर कुछ पैसे आप स्पेंड करेंगे।
3: और इसके बाद अगर देखा जाए तो आज वृश्चिक ने स्कॉर्पियो के लिए बताया गया है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के गाइडेंस की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से आपका मुश्किल से मुश्किल काम आज आसानी से हो पाएगा, बिजनेस में भी फायदा हाथ लगेगा और नौकरी में आपका प्रभाव जो है, इम्पोर्टेंस जो है आपका, ये आज बढ़ेगा।
2: धनु यानी सेजिटेरियस, अपनी वैल्यूबल चीजें संभाल कर रखें और दौड़ धूप कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी, इससे थकावट आप महसूस करेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, वैसे कहीं अगर पैसे इन्वेस्ट करना था आपको अच्छी तरह से सोच समझ कर रही अपने जो पैसे हैं आप कहीं इन्वेस्ट करें और ट्रेवल करते समय जल्दबाजी ना करें।
3: मकर यानी कैप्रिकॉन, आपकी कोशिशें आज सफल होंगी, कम्युनिटी में भी आपका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ेगा, कम्युनिटी वर्क में आप काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, आज मान सम्मान भी मिलेगा, इस वजह से आपको काफ़ी एक सलाह भी दी जा रही है कि लेन देन के मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, अगर पैसे इन्वॉल्व्ड है तो आपका नुकसान संभव है, इसलिए बी केयरफुल।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, दूर से कहीं अच्छी खबर आपको मिलेगी, घर पर मेहमान आ सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आज आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, बिजनेस भी ठीक ठाक चलेगा और आज आपकी लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने वाली है।
3: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए बताया जा रहा है कि बिजनेस है अगर आपका, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, स्पेशली इससे रिलेटेड आज जो भी फैसले आप लेने वाले, जो भी काम आप करने वाले हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नौकरी के मामले में आप जो कोशिशें कर रहे हैं, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, किसी बड़ी समस्या से आज छुटकारा भी मिलेगा, विच विल मेक यू फील रियली वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल रिजल्ट्स जो है आप हासिल करेंगे। सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ रिमाइंडिंग यू ऑल टू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल ट्यूसडे, और थोड़ी देर बाद जबकि आपके लिए आज का सेलिब्रिटी अलार्म भी हम लेकर आएंगे, होपफुली इसके लिए भी आप तैयार हैं।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।
5: माजे दिए मोमबत्ती है, पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगिए ते।

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
3: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
4: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
5: Dad, I feel sick.
6: Yep, we've all been there, and so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness. Avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
7: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटेड एंड मेगा बॉटनी में। फ्री किड्स एक्टिविटीज, क्लासिक सॉसेज सिजल, लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज, प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट्स स्टोर वाइड। टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट माइटेड एंड मेगा बॉटनी।
8: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fox.

0: 20 मिनट हुए हैं 7 बजकर, अब वक्त है, अब देखें कि क्या आज के हमारे सेलिब्रिटी को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। कल गिने चुने सही जवाब आए थे, तो आज एक और अपॉर्चुनिटी है अब आपके खातिर इस प्रोग्राम में।
1: इनफैक्ट कल जब हमने सेलिब्रिटी अलार्म किया था, द वॉइस वाज द सेलिब्रिटी जिनकी आवाज हम आपके लिए कल लेकर आए थे, इट वाज नन अदर देन आलिया भट्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। या सो आलिया भट्ट इतनी फेमस सेलिब्रिटी है ये, और इतना हमें लगा था आसान है ये कि पीपल वुड बी वेरी यू नो पीपल वुड बी वेरी वेरी ग्लैड कि उनको इतना इजी मिला और वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किनकी आवाज़ है। पर कमाल ये हुआ कि कल भी बहुत से लोगों ने गलत आंसर्स भेजे, कुछ ने दीपिका पादुकोण, ईशा देओल, कंगना रनौत जैसे आंसर्स भी हमारे पास भेजे थे। बट लेट्स सी कि आज का सेलिब्रिटी अलार्म का रिजल्ट जो ये क्या होता है। आई डोंट नो हु द सेलिब्रिटीज, तो आपकी तरह मुझे भी अभी पता चलेगा, बट देखते हैं कि आप में से हम सब में से कौन है जो आसानी से ये आवाज़ पहचान ले।
0: तो पहले आवाज सुन ले आप।
2: मकड़ी ने लगाया है यहाँ पे एक जाला।
0: ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी।
1: आई थिंक आई नो ये कौन है, बट जिनकी आवाज आपको लग रही है वो तो हरगिज नहीं है, क्योंकि जिनके जैसे ये साउंड कर रहे हैं, सिर्फ उनके जैसे साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं है। बट लेट्स सी इफ यू कैन फिगर आउट कि ये कौन है। It's a very intelligent celebrity alarm for today, I would say. But let's see, कितने लोग figure out कर पाते हैं.
0: So have a listen very, very carefully once again.
2: मकड़ी ने लगाया है यहाँ पे एक जाला।
0: तो अब करना क्या है आपको?
1: अपना जवाब हमारे पास आपको भेजना है। सबसे पहले लिखना है BF, उसके बाद अपना आंसर, अपना नाम, और भेज देना है 5599 पर। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन फिगर आउट कि आज की सेलिब्रिटी हमारे सेलिब्रिटी लाम में कौन है।
3: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
5: मैं लाऊं अपना ए गेम।
3: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Co.nz.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू केसेस के सामने आने के बाद न्यूजीलैंड हाई अलर्ट पर है और बायो सिक्योरिटी मिनिस्टर एंड्रयू होगार्ट का कहना है कि अब ये इफ नहीं बल्कि वेन का मामला है कि वायरस यहां कब पहुंचता है। अगर ये वायरस न्यूजीलैंड के बड़े पोल्ट्री फार्म्स में फैला तो 75% से 100% बर्ड्स तक की मौत हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफ एलक्सन ने माना है कि उन्हें ऑकलैंड में रफ स्लीपर्स के लिए कोई नाइट शेल्टर ना होने की बात पता नहीं थी, जबकि ऑकलैंड सिटी मिशनर ने बताया कि शहर में सड़कों पर सोने वालों की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा है। टीवीएनजेड की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एमएसडी स्टाफ को एमरजेंसी हाउसिंग नंबर्स कम रखने के लिए परफॉर्मेंस टारगेट्स दिए गए हैं, जिससे ऑपोजिशन और सोशल वर्कर्स ने आम जनता को मदद देने से मना करने का एक गलत इंसेंटिव बताए हैं। हालांकि हाउसिंग मिनिस्टर तामा पुताका ने क्रिस्टोफ एलक्सन के इस नए पॉलिसी का बचाव किया है। ऑपोजिशन लीडर क्रिस हिपकिंस ने आरोप लगाया है कि सरकार बिना कोई सॉलिड सपोर्ट दिए लोगों को इमरजेंसी अकोमोडेशन से बाहर निकाल रही है। फ्रांस के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच से पहले ऑल ब्लैक्स टीम अपने तीन खिलाड़ियों को वापस टीम में शामिल करने के लिए तैयार हैं। विल जॉर्डन, टुपाउ वाई और वॉलेस सितिति ये तीनों ठीक हो गए हैं और फ्रांस के खिलाफ होने वाले मैच में ये खेलेंगे। कोच डेव रेनी का कहना है कि इन तीनों खिलाड़ियों के टीम में शामिल होने से टीम का मोराल काफी बढ़ गया है। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत राउंड ऑफ 32 का आज का पहला मैच पूरा हो चुका है। इस मैच में ब्राजील की जीत जापान के खिलाफ 2-1 से हुई है। 8:30 बजे जर्मनी पेरेग्वे से खेलेगा और आज का आखिरी मैच दिन में 1 बजे नेदरलैंड्स और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हमले कराएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. The Breakfast Show.

0: Remember, this National Brands Awareness Month, everyday brand hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
1: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
2: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari good brands bhi hai.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
3: Birthday greetings.
6: Iska birthday bhai?
7: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
8: Happy birthday to you.
9: Many, many happy returns of the day. Aaj 30th of June ke din agar apna birthday ya shaadi ki salgirah aap mana rahe hain, is din ki bahut sari शुभकामनाएं और बधाइयां हैं आपके लिए. और आज सबसे पहले अ वेरी हैप्पी बर्थडे जो आपको हम कहना चाहेंगे. आज जोश अपनी सालगिरह मना रहे हैं, इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और तमाम परिवार वालों की ओर से आज आपको शुभकामनाएं मिल रही हैं. माँ हैं आपके, भैया भाभी हैं, नीसेस नेफ्यूज़ और तमाम जितने भी परिवार वाले हैं, हम सभी की ओर से भी ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
10: Happy birthday, many many happy returns of the day. वैसे आज अपना 9th birthday जो है ये celebrate कर रहे हैं आज प्रशीक कुमार पापा टोई टोई में. और जन्मदिन के खास मौके पर आपको ढेर सारा प्यार मिल रहा है, लव एंड बेस्ट विशेज आपके मम्मी और पापा हैं अर्चना एंड प्रनीत, और ओनली बहन है आपकी प्राची, इनकी ओर से भी ढेर सारा प्यार. ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेज आपके सभी परिवार वालों की ओर से जो बैक होम इन फीजी से आपको ढेर सारा प्यार जो है ये आज भेज रहे हैं. हमारी ओर से भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे प्रशीक, जन्मदिन बहुत बहुत बार मुबारक हो आपको.
9: मेरी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम कहना चाहेंगे. और भी जितने लोग जहां कहीं पर भी आज 30th of June को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं,

0: underscore.nz। अभी अगर देखें तो 23 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और आज के सेलिब्रिटी अलार्म की जो गति हुई है उसका तो हम उसकी हम चर्चा भी नहीं कर सकते अभी तक।
1: आई थिंक इट्स गुड कि डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, बिकॉज इट बिकम्स ईजियर फॉर अस, क्योंकि अब क्या होगा कि अगर कोई भी सही जवाब नहीं गेस कर पाता है तो कल सही आवाज़ हम लेकर आएंगे ना, इट विल बी फन एज वेल। एंड तब तक ये आवाज़ आपके लिए सेलिब्रिटी अलार्म में रहेगा जब तक कि कोई सही सही पहचान न ले, तो उसमें भी मज़ा बहुत आता है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, आई थिंक एक ही बार हुआ जहाँ पर फर्स्ट डे नो वन वॉज एबल टू रिकोगनाइज द वॉइस, बट सेकेंड डे जब हमने वही आवाज़ आपके लिए प्ले की, इट बिकेम ईजियर फॉर एवरी वन टू आइडेंटिफाई कि किन की आवाज़ थी। बट आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि एक तो आवाज़ जो सुनी, किसी ने अपना जवाब भेजा है विद्या बालन, माउंट ईडन से इनका मैसेज आया है।
0: अच्छा।
1: ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग आंसर लगा अभी तक का।
0: तो आप सुने आवाज एक बार फिर, आज हम आखिरी बार ये आवाज आपको सुना रहे हैं। लिसन वेरी केयरफुली।
2: मकड़ी ने लगाया है यहाँ पे एक जाला।
0: तो ये कौन है आपको हमें बताना है, इतना हम आपको बता दें, अमिताभ बच्चन नहीं है।
1: हाँ, अमिताभ बच्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, मेजोरिटी लोगों ने वही भेजा। इनफैक्ट जब हमने पहली बार आपको आवाज़ सुनाई तो मैंने यही तो बोला था ना कि अगर आपको लग रहा है कि ये वो शख्स है जो जैसा ये साउंड करे वो नहीं है ये, दैट्स व्हाट आई मेंट कि इफ़ यू फील लाइक इट्स अमिताभ बच्चन तो ये डेफिनेटली अमिताभ बच्चन नहीं है। बट विद्या बालन कौन से एंगल से ये साउंड कर रहे वो भी मुझे पता नहीं चल रहा है, इसीलिए मैंने बोला ना मुझे ये सबसे इंटरेस्टिंग यही जवाब लगा, विद्या बालन जिस किसी ने भेजा था। तो अमिताभ बच्चन एंड विद्या बालन टोटली रॉन्ग, लेकिन कौन हो सकते हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म, ये आपको पता करना है।
0: BF आंसर और नाम ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है। जब तक आप अगला गाना सुनेंगे तब तक का ही टाइम होगा आपके पास। लेट्स सी क्या आप में से कोई और है जो करेक्टली इस आवाज़ को पहचान सकता है और आज का हमारा जो सेलिब्रिटी अलार्म है उसे क्रैक कर सकता है या नहीं।

0: with Vijay and Pooja.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Traffic.
3: Thanks for your trust, Auckland.
4: A little cool, but it should stay fine today. High of 15. Coming in, Northern Motorway, 35 minutes. Constellation to the city, 53 from Silverdale. We're heavy at Silverdale and all the way Constellation to the bridge. Northwestern, 40 minutes in from Massey. Now heavy on and off there to the city. Southern, 50 in from Mutoko. Slow all the way from Papakura. Plenty of heavy patches. Southwestern, slow both ways. Northbound at Whitty, southbound at Mount Roskill.
3: Harcourts, Cooper & Co. Part of New Zealand's most trusted real estate brand. Licensed REAA 2008.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
6: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
7: Sorry about that.
6: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
7: Kogan Mobile, true Aussie value.
6: Terms and conditions apply.
8: Sun Tours ke successful March 2026 Best of India Tour ke baad. Ab bookings open hai for Best of India September 2026 Tour. Delhi ke shopping, Agra ka Taj Mahal, Jaipur Amer Fort aur Elephant Ride. LP mein houseboat ka experience aur aanche Mumbai ki Bollywood Studios visit with all buffet meals, rides aur 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 478686. Limited spaces.

0: 14 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आने वाले हैं। और अभी वक्त है देखें आज का हमारा जो सेलिब्रिटी अलार्म था।
1: बाकी क्या किसी ने कोशिश की या किसी ने कोई भी अटेम्प्ट करते हुए सही जवाब दिया या नहीं वो भी देखना है हमें। कई लोगों ने अपने अपने आंसर्स हमारे पास ज़रूर भेजे, बट गेटिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, जब हमने सेलिब्रिटी अलार्म आज सुबह आपके लिए किया, तो सबसे पहला जवाब जो हमारे पास आज आया था, जैसे कि हमने कहा कि ये आंसर था विद्या बालन, जो किसी ने माउंट एल्बर्ट से या माउंट ईडन से भेजा था। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा पर जवाब ज़रूर दिया। उसके बाद हमारे पास वैभव का आंसर आया और साथ में लविका चौहान, इन्होंने भी अपना आंसर दिया। अभिषेक ओ नहीं सॉरी दीप्ति ने अपना आंसर दिया और इसके अलावा अली है, कविता है, इनका भी आंसर जो है गेम में मिला है। देयर सो मेनी अदर पीपल जिन्होंने अपने आंसर्स भेजे हमारे पास।
0: तो कुछ गलत और काफ़ी सही आंसर्स सेकंड टाइम के बाद हमारे पास आए हैं। एंड द करेक्ट आंसर टुडे दैट वी वर लुकिंग फॉर वाज सुनील ग्रोवर।
1: Yes, a lot of you had even texted saying ki Krishna Abhishek is the correct answer, but nahi, Sunil Grover is the correct answer. Aur unfortunately har kisi ka naam hamare liye bolna thoda difficult ho jayega because so many people had answered like second time jab humne aapko awaaz sunai tab, aur Sudesh Bhosle bhi kisi ne likha tha to wo bhi galat hai. So Sunil Grover ekdam correct, absolutely correct as far as our celebrity alarm for today is concerned.
0: वैसे आपने कृष्णा अभिषेक के बारे में बातें की हैं तो आपको बता दें कि ये 18th of July को रहेंगे विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में। ट्राइविजन इवेंट्स लेकर आ रहे हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट और इसमें कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर एक साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं। टिकट्स बहुत लिमिटेड अब बाकी रह गए हैं और इसके लिए bookmyevent.co.nz याद रहे bookmyevent.co.nz विजिट करते हुए टिकट्स अपने ले लें और आफ्टर पे ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। और अगर आप क्योंकि आप में से कई लोगों ने जो आंसर है कि कृष्णा अभिषेक लिखकर हमारे पास भेजा था, तो आज एक सवाल हम पूछेंगे, अगर आप हमें सही सही जवाब दे देते हैं तो आपका नाम हम एक ड्रॉ में शामिल करेंगे जिसमें इनाम आप जीत सकते हैं।
1: एब्सोल्युटली, और आपको बस इतना करना है कि कॉमेडी लिखना होगा सबसे पहले COMEDY, फिर उसके बाद में अपना आंसर लिखकर हमारे पास 5599 पर अपने नाम के साथ आपको सेंड करना होगा। एंड क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल सा है। आज इनफैक्ट हमारा शो खत्म होने से पहले हम बताएंगे हु द विनर इज। इनफैक्ट कल भी हमने कॉम्पिटिशन रन किया था बट अनफॉर्चुनेटली हम अनाउंस करना भूल गए थे कि विजेता कौन है, सो वो भी आज हम जाने से पहले करेंगे। एंड दो लोग जो हमारे साथ विनर्स होंगे उनका नाम जो है हम जरूर रिवील करेंगे। क्वेश्चन हमारा वेरी सिंपल, मिमिक्री की बातें हो रही है सिंस जो ऑडियो आज हमने सेलिब्रिटी अलार्म में सुनाया वो सुनील ग्रोवर थे हु वॉज मिमिकिंग अमिताभ बच्चन, राइट? When it comes to mimicry, Krishna Abhishek भी बहुत ही talented artist है जो बहुत ही बढ़िया mimicry करते हैं, और मैं आपको तीन option देने वाली हूँ आज।
0: Okay.
1: पहला गोविंदा, दूसरा जैकी श्रॉफ और तीसरा धर्मेंद्र। These are the three characters जो इन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी skit में, किसी program में, किसी episode में mimic किया हुआ है। And आपको ये तीन options इसलिए दे रही हूँ मैं because these are the most three popular आर्टिस्ट्स जिनको कृष्णा अभिषेक ने मिमिक किया हुआ है। अब आपको चूज करना है कि इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा है, लाइक व्हाट डू यू लव जब कृष्णा अभिषेक किनकी मिमिक्री करते हैं, गोविंदा की, जैकी श्रॉफ की या फिर धर्मेंद्र की। आई फील कि मुझे पर्सनली पसंद है जब वो जैकी श्रॉफ वाली मिमिक्री करते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत हंसी आती है व्हेन ही कम्स इन दैट रोल एज जैकी श्रॉफ।
0: अच्छी बात, तो आपको क्या करना है, आपको बस चूज करना है कॉमेडी, उसके बाद गोविंदा, जैकी श्रॉफ या धर्मेंद्र, इनमें से किसकी मिमिक्री जब कृष्णा अभिषेक करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, बस इतना ही आपको बताना है। कुछ सही गलत नहीं, जो आपको पसंद है वो आप बताएं, आपका नाम हम ड्रॉ में शामिल करेंगे। और आज तो दो दो लोगों को डबल पासेस जो है ये मिलने वाले हैं फॉर द ग्रेट कॉमेडी नाइट जो ट्राइविजन इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बाय द वे आपको पता है कृष्णा अभिषेक का असली नाम क्या है?
1: कृष्णा अभिषेक का रियल नेम?
0: हाँ,
1: आई थॉट उनका नाम कृष्णा अभिषेक ही है, उसके अलावा भी कुछ नाम है, आई डोंट नो, आई हैव नो आईडिया।
0: नहीं, उनका असली नाम कृष्णा अभिषेक नहीं है।
1: तो अभी बंद बताओ ना।
0: अच्छा,
1: किसी दिन ये सवाल भी पूछ लेंगे और फिर देखेंगे कितने लोग हमें सही जवाब दे पाते हैं।
0: तो चलो किसी दिन इसके बारे में भी बातें करेंगे, बट अभी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कॉमेडी, उसके बाद गोविंदा, जैकी श्रॉफ या धर्मेंद्र, इनमें से किसकी कॉमेडी करते हुए कृष्णा अभिषेक आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, सबसे ज्यादा आप एंजॉय करते हैं? काजल हैं, मंदीप हैं, नवनीत हैं, कृणाल हैं, सोनल, मोविन, आप सभी के आंसर्स आ चुके हैं और आप सभी के नाम ड्रो में भी शामिल हो चुके हैं। जब तक आप थ्रोबैक एंजॉय करेंगे तब तक का ही टाइम होगा आपके पास।
1: एब्सोल्युटली, तो स्पेसिफिकली अगर हम आपको बताएं 5 मिनट्स है आपके पास, और ये याद रखें कि ये ड्रॉ जो है ये बाद में कल परसों नहीं आज होगा, और तब होगा जब हम अपना शो जो है फिनिश करेंगे, जाने से पहले विल अनाउंस कि किसने डबल पास जो ये जीता है। सो अभी कंपटीशन में आप हिस्सा ले रहे हैं और आज ही आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने जीता है या नहीं। सो इफ यू वांट टू विन अ डबल पास टू दिस वेरी अमेजिंग शो जो होने जा रहा है ऑन द 18th of July एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर, विच इज बेसिकली द ग्रेट कॉमेडी नाइट, जहां पर कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड परफॉर्म करने के लिए, एंड दैट टू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो आप टिकट्स bookmyevent.co.nz से जरूर ले लीजिएगा, लेकिन डबल पास जीतने के लिए हमारे पास अपना जवाब भेजिएगा। 5599 पर कॉमेडी लिखना है, फिर अपना ऑप्शन बताना है, गोविंदा, जैकी श्रॉफ या धर्मेंद्र किसकी मिमिक्री करते हुए कृष्णा आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, और फिर अपना नाम लिखकर 5599 पर सेंड करते हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Close to 7 degrees अभी आप फील कर रहे हैं. अच्छे स्टार्ट टू द डे आज का है. 15 ओवरनाइट कम से कम 5 डिग्रीज आज होने वाला है. मौसम साफ और सुहाना रहेगा. सनसेट शाम 5:16 पर होगा.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: ट्रेंड पेट्रोल, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में बातें करेंगे जो यहाँ न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है. और अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो आपको पता होगा कि दिस इज़ समथिंग दैट यू नो इज़ गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. एंड हो सकता है यू मस्ट हैव वॉक्ड इनटू सम बेकरी एंड स्टफ लाइक दैट, एंड आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा. एक ब्राइट पर्पल इन्ग्रीडियंट जो फिलीपींस से है इज़ बिकमिंग one of New Zealand's hottest food trends. I don't know if I'm pronouncing it right, but I think that's how it's pronounced. Ube, U-B-E, इसे spell किया जाता है U-B-E, और pronounce किया जाता है as ube, जो एक naturally purple yam है. And now, ये जो purple yam है, ये आपको ice creams में, cakes में, coffees में, desserts में, cafes में across New Zealand देखने को मिलेगा. I've seen it in many bakeries where I've seen the ube buns. And I think I've seen it in some cafe जहाँ पर किसी एक drink को ube flavor जो है ये इन्होंने introduce किया था very recently. While many people are actually attracted by its vibrant color, ube has long been a favorite in Filipino cooking or is known for its sweet creamy flavor. Cafe owners ने कहा है कि demand इतना बढ़ गया है thanks to the social media कि New Zealand में जो ग्रोइंग फिलिपिनो कम्युनिटी है उन्होंने इसे इतना पॉपुलर कर दिया है कि अब ये आपको हर जगह न्यूजीलैंड में दिखेगा. इवन जो जी पेट्रोल स्टेशन है यहाँ पर उन्होंने उबे फ्लेवर ड्रिंक्स जो है ये भी इंट्रोड्यूस किया है. नाउ एज आई हैड सेड कि मैंने कहीं तो देखा था इसे. एंड बिजनेस ओनर्स आर ऑल्सो इनकरेजिंग कस्टमर्स ताकि वो इसके बारे में ज़्यादा समझ सके, जो इसके फिलिपिनो रूट्स है इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सके. सेइंग इट इट्स मच मोर देन अ कलरफुल फूड ट्रेंड, और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है जो ऑफकोर्स फिलिपीन से आया है. फिलिपिनोज के कल्चर का, उनके ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा तो है ही, लेकिन न्यूजीलैंड में भी कहीं ना कहीं अपना जो एक जगह है ये बना चुका है. एंड बिकॉज ube doesn't grow well in New Zealand, cafes जो है इसे फ्रोजन ubes को इनफैक्ट ये इम्पोर्ट करते हैं, या फिर रेडी टू मेड ube जैम जो है ये इम्पोर्ट करते हैं ऑल द वे फ्रॉम फिलिपींस. और ये जो पॉपुलर यम है, जैसे कि हमने कहा, इफ यू हैव ट्राइड इट यू वुड अंडरस्टैंड द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इट, द फ्लेवर ऑफ इट. इफ यू हैवन ट्राइड इट, आप अगली बार जब किसी भी कैफे, किसी बेकरी कहीं पर जाए, या फिर यू सी एनी सोर्ट ऑफ आइसक्रीम, केक, कॉफी, या फिर कोई भी डिजर्ट, एनी वेयर दैट यू सी, डू ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ, एंड देन यू फिगर इट आउट कि ये जो ट्रेंडिंग फूड ट्रेंड है न्यूजीलैंड में इतना पॉपुलर हो रहा है, हाउ वुड यू रेट इट.
1: ube जो है yam जो है, वैसे तो yam अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन ये पर्पल yam जो है, आई थिंक रिसेंटली मैंने कहीं पर कपकेक या केक जो है ये खाया था, और समवन मेंशन कि ये पर्पल yam फ्लेवर या उसके फ्लावर से बना हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ किसी ने बताया था मुझे. एंड अगर वो सही था देन इट वॉज रियली नाइस, इट वॉज यमी, इतना तो मैं बता सकता हूँ.
3: I haven't tried it as yet, पर मैंने सुना है कि इसका एक केक होता है जो बहुत टेस्टी होता है, इससे बनता है ये प्योरली मेड विद द पाउडर और बेसिकली जो ग्रेटेड ube है. जैसे कसावा इज अनदर रूट क्रॉप विच इज़ वेरी पॉपुलर इन फीजी एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज. आई थिंक साउथ अफ्रीकन कुछ जगह पर साउथ अफ्रीका में फूफू बनता है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल ईट दैट, राइट. जैसे हम रोटी, नान, चपाती, राइस वगैरह खाते हैं तो वहाँ पर फूफू बहुत पॉपुलर है, और फीजी में कसावा केक जो है ये बहुत पॉपुलर है. और ये बहुत टेस्टी भी होता है. सो द सेम वे जिस तरह से कसावा ग्रेट कर उसका केक बनता है, उस तरह से उबे का भी केक बनता है. एंड इट्स वेरी टेस्टी, अपेरेंटली वेरी लवली, द पीपल यू नो रियली एंजॉय. बट इफ़ यू हैवन ट्राइड इट, ये जो उभरता सितारा है यहाँ न्यूजीलैंड में, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. उबे फ्लेवर्ड केक हो, जो भी हो दैट यू प्रिफर, एंड डू ट्राई इट आउट. और अगर आपने पहले कभी ट्राई किया है, यू हैव एन एक्सपीरियंस अबाउट इट, डू लेट अस नो कि आपको कैसा लगा.
1: उबे, उबे को क्या कहते हैं आपके यहाँ?
3: मतलब क्या कहते हैं
1: है?
3: मतलब क्या कहते हैं?
1: नहीं, उबे जो है फिलिपिनो नाम है ना.
3: हाँ,
1: ये पेपल येम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आमतौर पर उसको क्या कहते हैं?
3: मुझे क्या पता क्या कहते हैं, मैंने सुना ही इसे पहली बार है, तो मैं कैसे बताऊंगी.
1: अच्छा, आपने उबी नहीं सुना कभी?
3: उबी और उबे फर्क होता है ना इसमें?
1: नहीं भाई, फर्क नहीं है, वो येम
3: चीज़ है.
1: हाँ, ये वैरायटी ही सिर्फ डिफरेंट है.
3: I had no idea about that, by the way. तो मेरे लिए तो काफी नया है ये. It's a new thing for me actually.
1: आपके आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या वहाँ पर yams जो है ये मिलते हैं? You know, there are some yam root crops ना. आप जैसे डालो ले लें, टेरो कहते हैं, कसावा ले लें, yams जो है ये ले लें, कुमरा जो है, ऐसे बहुत सारे रूट क्रॉप्स जो हैं,
3: क्रॉप्स होते हैं या
1: हाँ. उबी, एक और चीज, आई डोंट नो उसको क्या हम लोग, क्या हम जनरली हम लोग तो क्या बोलते हैं उसको, टुइया बोलते हैं उसको इंग्लिश में.
3: oh,
1: क्या बोलते
3: हैं
1: उसको इंग्लिश में? क्या
3: मुझे
1: बोलते
3: नहीं पता उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. बट टुइया आई लव, एंड इट्स वेरी रेयर कि यहाँ न्यूजीलैंड में आपको फ्रेश टुइया जो ये मिलेगा. And बहुत छोटे छोटे होते हैं, that's like one of the smallest root crops that I've seen apparently, but बहुत tasty होता है, मुझे बहुत पसंद, इसकी सब्जी I absolutely love. But as I said कि यहाँ तो नहीं मिलता है उतना, मुझे जहाँ तक याद है आई थिंक 5 or 7 years ago मैंने लास्ट उसे यहाँ न्यूजीलैंड में फ्रेश मिला था तो खाया था, पर उसके बाद आई नेवर सीन इट. बट ऑन द अदर हैंड उबे इज क्वाइट पॉपुलर. बट जैसे कि हमने कहा, ये यहाँ पर उगता नहीं है, इसे इम्पोर्ट किया जाता है, एंड जनरली ये फ्रोजन उबे इम्पोर्ट किया जाता है, या फिर उसका जैम जो है ये इम्पोर्ट किया जाता है, जो बाद में चलकर एक अलग डिश में इसे तब्दील किया जाता है. सो अपना अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा, आपको कैसा लगा, इफ़ यू ट्राइड इट, इफ़ यू हैवन ट्राइड इट, इफ यू गोना ट्राई इट, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, डू लेट अस नो.
1: या कुछ लोग तो स्पेशली यू नो इसकी फार्मिंग करते हैं. अभी आई नो ऑफ समवन हुज ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड बैक टू फिजी ताकि वो जाकर अपना जो येम का प्लांट है उसे हार्वेस्ट कर सकें.
3: That is quite interesting.
1: हाँ, special यहाँ से फ्लाइट बुक करके he told his family members कि जब तक मैं नहीं आऊंगा कोई उस प्लांट को अप्रूट नहीं करेगा, उखाड़ेगा नहीं,
3: हाथ नहीं लगाएगा उसको.
1: हाँ, कोई नहीं, वो गए उन्होंने खुद अपने नेचुरल दोनों हाथों से उसको उखाड़ा.
3: वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग.
1: सो
3: 10 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर, और रश आवा आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक आपके लिए रहेगा.
1: फिलहाल आपके यहाँ पर येम को क्या कहते हैं वो 5599 पर हमें टेक्स्ट करके बताएं. देखें उबी के अलावा और कोई नाम किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है या नहीं.

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: What's your take?
2: 20 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर और व्हाट्स योर टेक का वक्त अब हो चुका है. आज एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं. लाइक एनी अदर डे हमारी ओर से तो कोशिश यही होती है कि टॉपिक जो है ये हमेशा आपकी खातिर इंटरेस्टिंग हो. सुबह इफ़ यू रिमेंबर हमने बातें की थी. आज सोशल मीडिया डे है, ग्लोबली इसे मार्क किया जाता है. न्यूजीलैंड का जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर देखें डाटा रिपोर्टल के मुताबिक 80.6% ऑफ न्यूजीलैंड्स टोटल पॉपुलेशन जो है उनका एक्टिव सोशल मीडिया जो है आइडेंटिटी था इन अक्टूबर 2025.
3: कितना 80.6% उतने लोगों के पास एक्टिव सोशल मीडिया अकाउंट्स है बेसिकली.
2: हाँ,
3: न्यूजीलैंड में
2: 4.24 मिलियन पीपल वे एक्टिव ऑन सोशल मीडिया इन न्यूजीलैंड लास्ट ईयर अक्टूबर में. एंड उसके बाद जो डेमोग्राफिक्स अगर देखें 3.71 मिलियन यूजर आइडेंटिटीज जो है इनकी उम्र 18 और उससे ज़्यादा थी. एट दैट टाइम 50.9% ऑफ न्यूजीलैंड सोशल मीडिया यूजर आइडेंटिटीज वे फीमेल, 49.1% मेल. और 4.24 मिलियन यूट्यूब यूजर्स थे लेट 2025 में.
3: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग डाटा आई वुड से. नंबर्स तो काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं. बट आज का आपका टॉपिक फॉर व्हाट्स योर टेक, जो लोग सुनते अपने अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकेंगे.
2: हाँ, वो मैं बता रहा हूँ. उससे पहले फेसबुक यूजर्स 3.45 मिलियन ये न्यूजीलैंड में एक्टिव थे लास्ट ईयर. और उसके अलावा इंस्टा 2.65 मिलियन एंड टिकटॉक 2.04 मिलियन यूजर्स. लिंक्डइन 3.3 मिलियन यूजर्स. मैसेंजर यूजर्स इन न्यूजीलैंड 2.85 मिलियन. स्नैपचैट यूजर्स 1.46 मिलियन. रेडिट यूजर्स 3.8 मिलियन. और एक्स यूजर्स 678,000 न्यूजीलैंड में. पिंटरेस्ट मिलियन यूजर्स जो है ये थे. इतने सारे लोग, यू नो, मिलियंस ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया. और आज हम आपसे जानना चाहते हैं हाउ सोशल डू यू थिंक सोशल मीडिया इज, या हमने उसे कितना सोशल बना रखा है. इज इट रियली सोशल, इज इट सेविंग द पर्पस या फिर नहीं.
3: ओके, तो आप अपने अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं. गिव अस अ कॉल ऑन 0800 हम 0800 004866 पर और हमसे आप अपने व्यूज जो है ये शेयर कर सकते हैं. हम सभी से इनफेक्ट आज बातें करते हुए आप भी बता सकते हैं व्हाट डू यू थिंक. आज का हमारा टॉपिक, आज सोशल मीडिया डे है और सोशल मीडिया डे पर जो आंकड़े अभी हमने आपके साथ शेयर किए वो सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने एक्टिव हैं लोग यहाँ न्यूजीलैंड में पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया. बट ऑन द अदर हैंड यू जस्ट नीड टू लेट अस नो अकॉर्डिंग टू यू हाउ सोशल वी हैव केप्ट द सोशल मीडिया, या फिर किस तरह से इसका इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं. इज इट लाइक समथिंग यू बिलीव इट्स क्वाइट सोशल, इज इट इन गुड हैंड्स, आर वी यूजिंग इट वाइजली और नॉट. गुड मॉर्निंग.
4: Good morning. How are you, Vijay?
2: हम बढ़िया हैं. आप कैसी हैं मैम?
4: बिल्कुल ठीक. आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट्स वेरी शॉकिंग टू सी द नंबर्स कि कितने सारे यूजर्स हैं यू नो सोशल मीडिया के. आई थिंक जब सोशल मीडिया मैंने पहली बार अपना फेसबुक पे अकाउंट बनाया था तो वो इसीलिए था कि आई कुड कनेक्ट विद माय फैमिली जो ओवरसीज में थी. कि भाई वो कहीं घूमने जाते थे तो फोटोज डालते थे, वीडियोज डालते थे और हमें दिखता रहता था कि वो क्या कर रहे हैं. आज की डेट में इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट बिकम अ शो ऑफ प्लेटफॉर्म मेरे अकॉर्डिंगली. मैं हार्डली अपना फेसबुक अकाउंट यूज करती हूँ, हार्डली एनीथिंग. और आज की डेट में तो इंस्टा पे आप चले जाओ या टिकटॉक पे चले जाओ तो आपको यूजली टीनेजर्स दिखेंगे. That's it. आपको और कोई दिखेगा ही नहीं. मेरा बेटा इज 11 ईयर्स ओल्ड और वो यूट्यूब पे फुटबॉल वीडियोस देखता है सीखने के लिए, विच इज ग्रेट, यू नो, इट वर्क्स फॉर हिम. पर उससे ज्यादा कुछ नहीं. बट देन आजकल तो 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स 15 ईयर ओल्ड गर्ल्स आर जस्ट यूजिंग इट टू मेक वीडियोज एंड पूरा टाइम उनका स्क्रीन टाइम आप देखो इट्स क्रेजी. इट्स लाइक वीक में दे स्पेंड लाइक एटलीस्ट 3 डेज ऑफ देयर वीक हैव गॉन ऑन इंस्टा. तो पढ़ाई कब करते हैं बच्चे. इट इज नॉट सो जिस रीजन के लिए सोशल मीडिया बना था वो तो अब है ही नहीं.
2: अच्छा
4: बिल्कुल भी नहीं है.
2: नहीं
4: नॉट फॉर सोशलाइजिंग विद पीपल एनी मोर. इट्स मोर अराउंड अ शो ऑफ कि मेरे पास नया फोन है, मेरे पास नई गाड़ी है, मेकअप ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं बच्चे. एंड इट्स फनी, इट्स वियर्ड, इट्स अनसेफ अकॉर्डिंग टू मी.
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और 800-00-HUM और 800-00-4866 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग. हेलो.
1: गुड मॉर्निंग अंकल. गुड मॉर्निंग आंटी.
3: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग रोशनी. कैसी हो आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
3: एकदम बढ़िया. और रोशनी आप बताइए, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर योर व्यूज एज वेल कि आपको क्या लगता है व्हाट्स द यू नो सिचुएशन आउट देयर व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया.
1: पर्सनली आई हैव नेवर हैड सोशल मीडिया बिफोर. सो मैं अभी भी मेरे पास नहीं है कमिंग टू न्यूजीलैंड. बट मैं स्कूल में देखती हूँ बच्चे, हमारे स्कूल में फोन अलाउड नहीं है बिल्कुल भी. तो बच्चे बैठते हैं क्लास में, टीचर बाहर जाती है, वो अपना फोन निकाल कर टिकटॉक पर स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं.
3: फोन नहीं अलाउड है लेकिन फिर भी फोन आ जाता है.
1: सो आई फील लाइक इतना एडिक्टिव है दैट एट दिस पॉइंट इट्स नॉट गुड फॉर यू. मेंटल हेल्थ भी बहुत खराब होती है देखकर ऑन सोशल मीडिया. सो आई डोंट थिंक दैट इट्स अ गुड थिंग.
2: ऑलराइट. थैंक यू रोशनी, थैंक यू सो मच आपके भी कॉल के लिए एंड शेयरिंग व्हाट्स योर टेक. तो आज सोशल मीडिया डे, आपसे हम जानना चाहते हैं व्हाट डू यू थिंक, हाउ सोशल इज एक्चुअली सोशल मीडिया. मिलियंस ऑफ यूजर्स यहाँ न्यूजीलैंड में है. आपने शायद अपने अपने अलग अलग कंट्रीज में या दुनिया के अलग अलग जगह पर ये देखा या एक्सपीरियंस किया होगा. गुड मॉर्निंग. हेलो.
5: गुड मॉर्निंग विजय. पूजा कैसे हो?
2: हम ठीक हैं सर, आप कैसे?
5: I'm very good, thank you. I'm just going to be more concentrating on your question, ki social media. Question was that whether it's a good thing or bad thing, is that what you said?
2: Yeah,
3: kitna social hai social media.
2: Is it really social?
5: Oh, how social? Yeah, if I use the word social, I think it is social. The main reason for connecting is basically providing the social medium through all these different channels that you've spoken about. I think it's a good thing. That is the purpose. And if it is fitting the purpose with those numbers that you've called out, I'm not surprised at all. It is a way to socialize depending how much far you go with. If within the boundaries of the medium, I think it is a good thing.
2: थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए भी. अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं है टू टेक एनी फर्दर कॉल्स. आप 5599 पर टेक्स्ट हमें जरूर कर सकते हैं.
3: अपने अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए. आज है सोशल मीडिया डे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट हाउ सोशल इज सोशल मीडिया दीज डेज. और आप हमारे पास अपना आंसर जो है ये जरूर भेज सकते हैं 5599 जैसे कि हमने कहा. इस नंबर पर आप मैसेज सेंड कीजिए एंड वीड लव टू हियर फ्रॉम यू.
0: Hollywood's most wanted.
6: Gundi ghad dao ya seedha andar aao.
7: Main laau apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Book your ski G trip today.
4: A chilly start to what should be a mainly fine day, a high of 15 degrees. Northern Motorway, 35 minutes, Constellation Drive to the city, 58 from Silverdale. We're slow at Silverdale and heavy all the way Constellation to the bridge. Southern, 50 minutes in from Manukau, slow all the way from Papakura, quite heavy from Otahu. Northwestern, 45 minutes in from Massey, heavy on and off from there. Southwestern, slow northbound at Whitty, southbound at Mount Roskill.
3: To book your next ski G trip to Vancouver or Japan, go to fijiairways.com.
5: Whether you have a tickly or razor blade sore throat, there's a Difflam sore throat lozenge to soothe or numb your pain. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
6: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss Tech. Available exclusively in Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
2: फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Warsi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
8: Ek zabardast kahani hai.
9: Aur title kya hai film ka?
8: Welcome to the Jungle.
2: Welcome to the Jungle now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
10: अरे सुनो मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला
9: फ्री कंटेनर तो अच्छा है लेकिन डोसा कैसा था
10: डोसा तो ठीक ही था लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है
11: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं
12: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू
0: The Breakfast Show.

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: अभी 21 मिनट रह गए हैं अब 9 बजने में और हमने कहा था फीफा वर्ल्ड कप पर अपडेट्स जो है ये भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे. राउंड ऑफ 32 का अगला मैच शुरू हो चुका है जर्मनी और पेरेग्वे के बीच और अभी तो दोनों टीमें निलोल से बराबर हैं और भी अपडेट्स आपकी खातिर इस प्रोग्राम में हम जरूर लेकर आएंगे.
2: तो तैयार रहिएगा हमारे साथ बने रहिएगा इसके लिए. बाय द वे द ग्रेट कॉमेडी नाइट जिसके लिए हमने कहा था आपको डबल पास भी हम देंगे एंड ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको अपना जो फेवरेट कैरेक्टर कृष्णा अभिषेक प्ले करते हैं ये हमारे पास भेजना था अपने नाम के साथ. सो अ लॉट ऑफ यू हैव सेंट इन योर एंट्रीज, थैंक यू सो मच. आपका नाम डेफिनेटली हम रो में शामिल कर रहे हैं जिसके बाद हमने जो उबे है बहुत ही पॉपुलर फिलिपिनो येम इसके बारे में बातें की तो वी गॉट अ फ्यू मैसेजेस अबाउट देयर एज वेल. और किसी ने कहा कि हीप्स of ubi in Savu Savu and Lambasa, nothing new. Kisi ne message kiya hai ki ube pronounced as ube. My work colleagues who are Filipinos, they always bring yummy cakes and desserts made from ube. It's totally yummy. They also make cassava cakes and desserts from cassava similar to our vaklolo. Ye unhone kaha hai.
1: सो थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए. और कुछ देर बाद आज और भी कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें हिस्सा लेने का मौका हम आपको देंगे और साथ ही में जो आज का हमारा व्हाट्स योर टेक था. बैक इन इंडिया आई वाज अ वेरी सोशल पर्सन बट आई हैव नेवर सी बीन समवन हु पोस्ट मच ऑन सोशल मीडिया. आई जेन्युइनली बिलीव नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी शेयर्ड ऑनलाइन. समटाइम्स द मोर यू पब्लिसाइज योर लाइफ द मोर यू इनवाइट अननेसेसरी अटेंशन कंपैरिजन नेगेटिविटी एंड व्हाट मेनी पीपल कॉल द नजर लग्न. आई प्रिफर टू कीप माई हैप्पीएस्ट मोमेंट्स प्राइवेट एंड लेट देम बी एंजॉयड बाई पीपल हु आर एक्चुअली पार्ट ऑफ माई लाइफ. So Gaurav ne ye message hamare paas bheja hai. Thank you so much, Gaurav.
3: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Celebrate Matariki at Auckland Art Gallery.
2: A high of 15, a cool start to what should be a mainly fine day. Into the city, motorways are easing. Southern at 43 minutes, Manukau to town. Slow joining at Drury. Fine to Otahuhu, then heavy there to the city. Northwestern, 33 minutes in from Massey. Heavy on and off from Te Aratu. Northern at 28 minutes, Constellation to the CBD. Slow at Silverdale. Heavy patches, Constellation to the bridge. Southwestern easing up really nicely.
1: Matariki at Auckland Art Gallery. Waiata, Art, Kapahaka, Kai and more. 10th July.
3: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
4: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
5: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
6: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
9: नौ मिनटों के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में. वैसे ये भी याद रखें, लेजेंडरी उस्ताद राहत फतेह अली खान आ रहे हैं ऑकलैंड एक बहुत ही यादगार म्यूजिकल नाइट के लिए. इनके बहुत ही लाजवाब जो सूफी गाने हैं, कव्वालियां हैं और इनके जो फिल्मी ट्रैक्स हैं, ये सभी एक साथ आप एंजॉय कर सकेंगे 25th of July को एट द ट्रस्ट अरीना. और इसके लिए याद रहे टिकट्स dryTickets.com विजिट करते हुए जल्द से जल्द आप ले लें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े. जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस की ये पेशकश. 25th of July इज द डेट, लेकिन उससे पहले ही अपने टिकट्स जो हैं ये आप ले लें ताकि लास्ट मिनट आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े और इस बहुत ही खूबसूरत शाम और रात को आप अपने चाले वाले के साथ एंजॉय कर सकें. राहत फतेह अली खान साहब के साथ एक बहुत बड़ी टीम जो है ये आ रही है इस बार न्यूजीलैंड, जो लाइव ऑन स्टेज आपके लिए परफॉर्म करने वाली है. सो रिमेंबर dryTickets.com ये विजिट करते हुए अपने टिकट्स जो है ये आप जल्द से जल्द ले लें. अगले थ्रोबैक का टाइम अब हो चुका है और थ्रोबैक के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट और अगले घंटे आपको बताएंगे हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारियां तो होंगी ही आपके लिए. उसके अलावा तमाम अन्य चीज़ों के बारे में बातें, आज का हमारा डेली राउंडअप और जो मैच खेला जा रहा है इस पर भी लेटेस्ट अपडेट्स बारी बारी से हम प्रोग्राम में आपकी खातिर लेकर आते रहेंगे. फिलहाल हिमेश रेशमिया का ये गाना आज का हमारा अगला थ्रोबैक ऑन हम.

0: sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
1: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
2: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
5: Free gifts लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
6: Introducing the new chutney range from Amma's Food. Traditional coconut, tangy tomato or crunchy peanut chutney. Perfect with Amma's idli or dosa batter. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. Now available at grocery stores near you.
7: हम time check.
8: Good morning, इस समय ठीक 9 बज रहे हैं।
7: By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Morning, I'm Grace Conker with the latest at 9. A lucky escape for residents of an Auckland home after it was shot at with the alleged gunman still on the loose. Police say the offender failed to gain entry into a Point England home just before 9 last night and opened fire. No one was injured. There's hope that economic recovery will soon be back on track despite recent setbacks. A new Kiwi Bank report highlights global tensions and oil prices as reasons growth has slowed. But Chief Economist Jared Kerr is confident it'll bounce back.
10: Prices go up and then the supply shock ends. Prices fall back again. It's temporary and we can look through it and we can get excited about where we're headed into next year.
9: Police are working to find a man considered dangerous in the Auckland region. They say 43-year-old Francis Vervoorz is actively avoiding them. A warrant is out for his arrest for allegedly breaching his home at detention conditions. The battle against the clock to find survivors in the rubble of Venezuela's twin quakes faces multiple risks. Heavy rain is now forecast as the death toll passes 1,700. And a UN spokesperson says it's still shaking.
11: We have had 500 aftershocks. And the latest was early this morning, at 5.2 aftershocks. So you can understand that we keep on operating in a high-risk environment.
9: To rugby with Shift 4, All Blacks forwards coach Jason Ryan says the whole squad are likely to get a crack during the 3 July tests.
12: You know, there'll be guys that'll get opportunities over this Nations Cup for sure, yeah, because they've been exceptional for their super teams.
9: The team to face France in Christchurch on Saturday is named on Thursday. And Brazil are through to the round of 16 at the FIFA World Cup following a last gasp 2-1 win over Japan in Houston.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari koi branch nahi hai.
7: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
8: Almost 9 degrees ho chuka hai temperature. Aaj ka high 15, overnight kam se kam 5 degrees rahega. Aaj mausam saaf aur suhana, sunset sham 5:16 par aaj hoga.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
15: What's going on? Kya bakte ho?
16: Are kehna kya chahte ho?
17: क्या बकते हो आपके लिए, जबकि हम लेकर आते हैं हर रोज एक ऐसी कहानी दैट एक्चुअली मेक्स यू थिंक दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड. और ऐसी बहुत सी किस्से कहानियां जो ये दुनिया भर में होते रहते हैं, बट दिस इज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग विच हैपेंड. आई थिंक कभी ना कभी आपने ऐसा कुछ सुना होगा या किसी को ऐसा करते हुए एक्सपीरियंस किया होगा, बट दिस इज हिलेरियस एट द सेम टाइम. एंड व्हेन इट हैपेंड इट वाज कैप्चर्ड इन अ वीडियो, जिसके बाद चलकर ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ और काफ़ी लोग इसके बारे में बातें भी कर रहे हैं. बट इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द फैक्ट कि आपको एज अ पेरेंट कितना केयरफुल भी रहना पड़ेगा. अपेरेंटली कहा गया है कि ये जो हिलेरियस वीडियो है, इंसिडेंट ये कैप्चर हुआ वीडियो में एंड इट इज़ कम यू नो इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, जहाँ पर बताया गया है कि एक घर पर एक डिलीवरी पहुंची एंड द डिलीवरी वॉज ऑफ अ मैसिव टेलीविजन विच वॉज अराउंड 65 इंच का गूगल टीवी जो इनके घर पर पहुंचा। जब महिला ने ये डिलीवरी रिसीव की तो वो थोड़ा परेशान हुई क्योंकि उन्होंने ये मैसिव टीवी तो लिया ही नहीं था। द मदर वॉज एक्चुअली वेरी कन्फ्यूज, द लेडी वॉज एक्चुअली वेरी कन्फ्यूज एंड शी इंसिस्टेड कि ये उन्होंने कभी परचेस ही नहीं किया, उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। और जब उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि ये टीवी आखिरकार आया कहाँ से क्योंकि उन्होंने ऑर्डर तो दिया ही नहीं, तब उनको पता चला कि उनके बेटे ने अलेजली उनका फ़ोन इस्तेमाल किया बिना उनकी नॉलेज के, ये ऑर्डर प्लेस किया। एंड द मदर वॉज एक्चुअली सीन कन्फ्रंटिंग अपने बेटे को इन फ्रंट ऑफ द डिलीवरी गाय जो वहाँ पर डिलीवर करने आए थे, क्रिएटिंग अ मोमेंट दैट हैज एक्चुअली गेन्ड अ मिलियन ऑफ व्यूज। और ये जो क्लिप है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है जहाँ पर बच्चा जो है ये चुपचाप सामने खड़ा हुआ है एंड मम्मी जो है काफ़ी परेशान उनसे पूछ रही कि ये क्या किया, मतलब इतना बड़ा टीवी कैसे तुमने मेरे बिना मुझे पता चले कैसे किया। सो दिस हैज़ बीन क्वाइट हिलेरियस, बट द मोस्ट हिलेरियस थिंग वॉज द रिएक्शन ऑफ द डिलीवरी गाय। वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा होकर वो पूरा सिचुएशन जो ये देख रहा था। आई अनफॉर्चुनेटली डोंट हैव मोर डिटेल्स अबाउट द फैक्ट कि इसके बाद क्या हुआ, टीवी वापस लिया गया, रिफंड हुआ या नहीं, या फिर इन्होंने टीवी रख लिया, नो आइडिया। बट इस क्लिप के बाद कई रिएक्शन सोशल मीडिया पर आए विद मैनी यूजर्स जोकिंगली सेइंग कि बच्चे जो हैं ये फेमिलैरिटी से यू नो काफ़ी फेमिलियर हो रहे हैं चीज़ों के साथ, स्पेशली विद ऑनलाइन शॉपिंग एंड स्मार्टफोन्स एंड स्टफ। और ऐसे मामले में आपको भी थोड़ा यू नो केयरफुल रहना चाहिए एज अ पेरेंट। डोंट लिंक योर कार्ड्स विद योर फोन एंड स्टफ। ऑनलाइन शॉपिंग आप कर रहे हो अगर तो केयरफुल हो जाए, बच्चों के सामने ना करें। एंड इफ यू गिविंग योर फोन टू देम ओर दे यूजिंग योर फोन, जस्ट ट्राई एंड बी अलर्ट कि वो किस साइट पर जा रहे हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
8: तो शायद सुनने में आपको अभी ऐसा ना लगे लेकिन मामला है जरूर सीरियस। अब जब भी अपने बच्चों को स्पेशली बहुत छोटे बच्चों को आप देते हैं अपना जो क्या बोलते हैं स्मार्टफोन या आईपैड जो भी, तो उस पर कड़ी नज़र बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। 5 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर, अभी क्वींसटाउन में मालूम है टेम्परेचर कितना है राइट नाउ?
17: कितना?
8: -2.5 degrees।
17: -2.5 degrees।
8: अगर उधर माउंट कुक की ओर देखें इट्स -3.7 degrees राइट नाउ।
17: वेरी नाइस।
8: ये नाइस है?
17: हाँ, मैं मतलब इतना ठंडा है कि माइनस में जा रहा है, मैं क्या बोलू।
8: और क्राइस्टचर्च में अगर देखें क्राइस्टचर्च सेंट्रल 0.3 degrees वहाँ पर अभी आप फील कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद देखेंगे जो क्या बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड में कहाँ कहाँ पर क्या कुछ टेम्परेचर्स जो है ये आप फील कर रहे हैं। एंड अगर आप चाहें तो हमें बता सकते हैं कि आपके एरिया में अभी टेम्परेचर जो है ये आप क्या फील कर रहे हैं। और वेलिंगटन सेंट्रल इज़ अराउंड 6 degrees और यहाँ ऑकलैंड में तो अराउंड 8 degrees सेंट्रल ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी चिली डे। आज तो रात में भी अब जो अनुमान है ये बताया गया है कि इट्स गोना बी 5 degrees, तो इट विल फील अराउंड 3 degrees में भी। सो एडिक्वेट प्रिपरेशन आज की रात के लिए आपको चाहिए होगा।
17: अभी आपके लिए कंबल इनफ नहीं है और जो हीट पंप होता है इसका इस्तेमाल तो आप करते हैं लेकिन बिजली का बिल इज़ अनदर कंसर्न दैट मेक्स यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स स्पेशली विंटर के टाइम पे। सो यू नो गो द ओल्ड फैशन वे, यूज़ योर बिनीज, यूज़ योर जंपर्स एंड सॉक्स एंड एवरीथिंग, कीप योरसेल्फ वार्म विद योर क्लोथिंग। और सोने से पहले अपने कमरे को गर्म कर लीजिए ताकि आपको रात भर हीट पंप की ज़रूरत ना पड़े, बिजली का बिल जो है इसमें भी बचत हो। लेस अनटिल यू आर ऑन सोलर पैनल्स एंड ऑन दी अदर हैंड यू नो आप हीट वाटर हॉट वाटर बैग्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल इन फैक्ट आपको वार्म रखने के लिए। जस्ट दो हॉट वाटर बैग्स हो आराम से, कीप इट विद यू इन द बेड, आपको वार्म रखेंगे वो।

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: क्या हो रहा है हमारी कम्युनिटी में, इसकी जानकारियां आपको हम पर हम देते रहते हैं. और सबसे पहले तो याद रखें कि न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री रामलीला होगी वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो पापटोई टोई में 8 तारीख अगस्त को. स्टॉल इंक्वायरीज या फिर इस टीम में आप शामिल होना चाहते हैं एज क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर, मास्टर अशोक से आप बातें कर सकते हैं 02117954459 पर. और टिकट्स जो हैं जय फ्रेश मार्ट पापटोई टोई से आप ले सकते हैं.
3: इसके अलावा आपको याद दिला दें कि गुज्जू भाईनी एक्सचेंज ऑफर, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग गुजराती कॉमेडी प्ले है, इसका मजा आप ले सकते हैं, जहां पर सिद्धार्थ रंडेरिया और उनका गुज्जू भाई प्रोडक्शन ये आ रहा है सुपर सिटी ऑकलैंड. अपना ये बहुत ही हिलेरियस ब्रांड न्यू कॉमेडी शो गुज्जू भाईनी एक्सचेंज ऑफर लेकर, जहाँ पर गुज्जू भाई खुद को एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर में पाते हैं और फिर उसके बाद क्या कन्फ्यूजन होता है, क्या सिचुएशन होता है, जो आपके लिए एक हिलेरियस मौका जो ये बन जाता है. तो ये आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, जहां पर गुजराती ह्यूमर का मजा आप रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स के साथ ले सकते हैं. सो इट्स हैपनिंग ऑन फ्राइडे 13 जुलाई, यानी कि इसी फ्राइडे को ये होने जा रहा है. एंड इफ यू हैवन ग्रैब्ड योर टिकट्स एज येट, premiertickets.co.nz आप अपने टिकट्स जरूर ग्रैब कर लीजिएगा. विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में इसका मजा 7:30 PM से आप ले सकते हैं.
2: आपके पास भी कम्युनिटी की कोई खबर है जो और लोगों तक आपको पहुंचानी है, buzz@hamfm.com buzz@hummfm.com पर अपने ईमेल से आप हमें जरूर भेज सकते हैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो आ गए.
0: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
7: वो भी आई लव यू वाला.
6: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
7: अच्छा आप दिलजीत तो
6: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
9: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
10: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July, T's and C's apply.
11: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के.
12: There are easy ways to save up to $500 on power bills this winter, like only heating the rooms you're actually using, by shutting doors and blocking sneaky gaps, or turning off appliances that aren't in use, especially the ones you might have forgotten were even on, or by checking if an off-peak plan is right for you, to make the most of when power's cheaper. For more winter saving advice, visit EECA, that's EECA.govt.nz.
13: Some things belong in a warm home. A cup of tea, a cozy hot water bottle, a steaming hot bowl of soup. In homes just like yours, serious burns happen every day, especially to curious little hands over winter. Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. text BURN to 44999 to make a $3 donation now.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
2: 21 मिनट हो रहे हैं अभी 9 बजकर ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. और फीफा वर्ल्ड कप का जो मैच ये राउंड ऑफ 32 का खेला जा रहा है जर्मनी और पेरेगुए के बीच. फर्स्ट हाफ इज डन. पेरेगुए की जीत अभी जर्मनी के खिलाफ 1-0 से हो रही है. सेकेंड हाफ में जो भी अपडेट्स होंगे ये आपको हम जरूर देने वाले हैं. फिलहाल ये भी आपको याद दिला दें कि आज हो चुका है 30th of June. अब धीरे धीरे वो टाइम भी करीब आ रहा है जब करण औजला जो है ये पहुंचेंगे स्पार्क अरिना 25th ऑफ अगस्त को.
3: बिल्कुल. और आपके पास मौका है कि आप इस बहुत ही अमेजिंग एंटरटेनिंग म्यूजिकल नाइट का हिस्सा जो है ये बने. 25th ऑफ अगस्त इज नॉट फार अवे एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, योर चांस टू बी पार्ट ऑफ दिस आइकॉनिक पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो करण औजला लेकर आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड. इज गोइंग टू बी मैसिव फॉर श्योर. लेकिन आप इस मैसिव हिस्टोरिकल मोमेंट का हिस्सा बनेंगे या नहीं ये आप पे निर्भर करता है. इनके बहुत से गाने हैं जो चार्ट टॉपिंग रहे हैं, हिट्स रहे हैं, बेसिक एंथम्स रहे हैं जो लोग हमेशा गुनगुनाना या सुनना पसंद करते हैं. एवरीवन नोज एंड लव्स कि करण औजला जो है ये कितने कमाल के परफॉर्मर हैं. तो आप भी इस बहुत ही अमेजिंग अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ एनर्जी का हिस्सा बन सकते हैं पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर के तहत जो होने जा रहा है 25th ऑफ अगस्त को इट्स पार्क रेना. टिकट्स पर जानकारियों के लिए, टिकट्स लेने के लिए hum.rover.nz आप विजिट करें या livenation.co.nz जो है ये आप विजिट करते हुए टिकट जरूर ग्रैब कर सकते हैं. तो ये तो रही बातें ऑफ यू गेटिंग द टिकट्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने लिए टिकट्स ले लें क्योंकि अभी क्या है ना कि हम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं जहां यू कैन विन योरसेल्फ सम पासेस. बट हमारे पास इतने सारे टिकट्स नहीं हैं जो हम आप सबको आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को दे पाएंगे. वी कैन एक्चुअली गिव यू अ डबल पास लेकिन बाकी के लिए आपको लेना तो पड़ेगा. सो एज वी सेड विजिट hum.rover.nz for details या फिर livenation.co.nz आप विजिट कर सकते हैं परचेज करने के लिए. लेकिन अगर आपको हमारे साथ डबल पास जीतना है तो इसके लिए एक छोटी सी चीज करनी होगी.
2: All you've got to do is एक गाना जो है करण औजला का हम आपको थोड़ा सा सुनाएंगे और आपको उसके बाद आइडेंटिफाई करना होगा इस गाने का टाइटल क्या है. कि इस गाने का जो टाइटल है वो हमारे पास भेजना होगा. सबसे पहले लिखना होगा K-A करण औजला का शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद गाने का टाइटल और अपना नाम और उसे 5599 पर हमारे पास भेजें. एंड अगर सही आपने भेजा यू गोइंग टू द ड्रॉ जो 6th of July को होगा, नेक्स्ट वीक मंडे को होगा और आपका नाम निकलता है तो एक डबल पास आपको मिलेगा टू गो एंड वॉच करण औजला. और वो अकेले नहीं, उनके साथ स्पेशल गेस्ट हिटमेकर इक्की भी आ रहे हैं टू परफॉर्म ऑन 25th of August स्पार्क अरिना में. तो आज का जो गाना है ये अब हम आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुने और उसके बाद आपको अपना जो जवाब है ये भेजना होगा.

0: लड़कियां।
1: ये है आज का गाना।
2: आपने शुभा ना सही जगह पर रोका, ऐसे तो नहीं गाना ही रिवील कर दिया?
1: ना ना, नहीं रिवील किया है, इतना मुझे पता है।
2: ओके, चलो हमने आपको सुना दिया है, अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो हमने आपको सुनाया उस गाने का टाइटल क्या है। इफ यू नो व्हाट्स द टाइटल ऑफ द सॉन्ग, यू आर अ ट्रू करण औजला फैन। एंड इफ यू वांट टू विन अ डबल पास, तो के ए लिखे, गाने का टाइटल लिखे, अपना नाम लिखे और 5599 पर इन द नेक्स्ट 6 मिनट्स हमारे पास सेंड कर दे।
1: तो एक बार फिर जो गाना है थोड़ा सा हम आपको सुना रहे हैं, लिसन वेरी वेरी केयरफुली।
0: दो दो कोड़े महगनानी, चार जी महगनानी, उत्ते नू मैं छे छे इंच चक्कियां।
1: तो ये है आज का गाना, अब के आई इस गाने का टाइटल और अपना नाम ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है।
3: Bollywood's most wanted.
4: Gundi khad gao ya seedha andar aao.
5: Main laun apna A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: या बीस को चाहते हो, या ब्रीज, मोर, एज, रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स। क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
2: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
3: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
4: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
5: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
8: What's going on?
9: आपको हर दिन हम बताते हैं डेली राउंड अप में खबरों में क्या

0: को चाह रहे हैं, इसकी जानकारियां हम पर आपके लिए होती हैं। सबसे पहली खबर आज जो आई है, इट्स अबाउट अ प्रॉपर्टी जहां पर गोली जो है ये चलाई गई। पुलिस एक व्यक्ति की तलाश कर रही है जो पैदल भाग निकला गोली चलाने के बाद पॉइंट इंग्लैंड में एक प्रॉपर्टी पर। ऑकलैंड सिटी CIB डिटेक्टिव सीनियर सर्जेंट रेबेका कर्क ने बताया कि एक शख्स जो है ये इस घर के पास पहुंचा कल रात 9:45 के वक्त, और जब वो घर के अंदर नहीं जा सका तो उसने घर के सामने से घर पर गोली चलाई और वहां से भाग निकला। किसी को कोई चोट चपेट नहीं लगी और पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेशंस कर रही है।
1: इसके अलावा एक और एक खबर सामने आ रही है, इफ़ यू रिमेंबर टुमारो इज 1st of July, और 1st of July से यहाँ न्यूजीलैंड में बहुत से चेंजेस आने वाले हैं। सेवरल चेंजेस विल टेक इफेक्ट इन न्यूजीलैंड फ्रॉम टुमारो। और इसमें सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि जो न्यूजीलैंड पोस्ट यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर जो पोस्टेज प्राइसेस है ये अब बढ़ने वाले हैं। मतलब अगर आप एक्सटेंडेड मीडियम लेटर जो है ये सेंड करने वाले हैं, इट विल नाउ कॉस्ट यू $3.60, वाइल अदर कुरियर सर्विसेज जो है ये भी बढ़ जाएंगे और एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ACC वीकली कॉम्पेंसेशन पेमेंट्स जो है ये बढ़ जाएंगे बाय 1.97% फॉर पीपल जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिसीव कर रहे हैं। पेड पेरेंटल लीव पेमेंट्स जो है ये भी बढ़ रहे हैं, विद द मैक्सिमम वीकली पेमेंट राइजिंग टू $811.05 बिफोर टैक्स। और फायर इमरजेंसी न्यूजीलैंड इंश्योरेंस लेवीज जो है ये बदल रहे हैं, व्हीकल इंश्योरेंस लेवीज विल इंक्रीज व्हाइल द मैक्सिमम लेवी ऑन हाउस एंड कंटेंट्स इंश्योरेंस जो है ये अब घट जाएंगे। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग $93 million ओवर द नेक्स्ट 3 years टू हेल्प सोल पेरेंट्स फाइंड वर्क थ्रू एक्स्ट्रा सपोर्ट, जिसमें ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम्स जो है ये भी शामिल है।
0: उसके अलावा IAE का कहना है कि व्हीकल ओनर्स जो हैं दे कुड सून सी पेट्रोल प्राइसेस एट $2.50 अ लीटर। और अगर US ईरान के बीच अभी जो कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ फ्रेजाइल, लेकिन जो भी समझौता या जो भी डील अभी तक हुआ है, इफ इट होल्ड्स ऑन तो प्राइसेस और गिर सकते हैं। इसी महीने पूर्व US और ईरान जो है एक इंटरिम डील पर सहमत हुए थे, और उस डील के बाद कॉस्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में तेल का ये काफ़ी गिरा है, एंड द प्राइसेस एट द पंप इन न्यूजीलैंड जो है ये भी नीचे गए हैं। 91 अब अगर देखें तो एवरेज कर रहा है अराउंड $3 मार्क। IAE के प्रिंसिपल पॉलिसी एडवाइजर टेरी कॉलिंस ने बताया है कि अब धीरे धीरे थोड़ी अच्छी खबर जो है मोटर व्हीकल ओनर्स के लिए आ रही है। बैक इन मई ऑयल प्राइसेस जो है वॉज अराउंड $114 अ बैरल, और अगस्त के लिए देखें तो $72 हो चुका है। सो उनका कहना है कि जो अभी हम देख रहे हैं द प्राइसेस नाउ विच आर इन द मिडल ऑफ द डाउनवर्ड कर्व, और अगर ऐसा कायम रहा तो ये और नीचे जाएगा। कॉलिंस ने कहा कि अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है US और ईरान के बीच जो सीज फायर है उसको लेकर, लेकिन ही एक्सपेक्टेड कि फ्यूल प्राइसेस ऑन स्पेशल डे जो है ये आने वाले महीनों में कम से कम $2.50 पे लीटर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ रिफाइनरीज जो हैं इनको डैमेज हुआ है, अभी तक सारे जहाज जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर भी नहीं निकले हैं। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अनसर्टेनिटी बट देयर कुड बी सम मोर गुड न्यूज ऑन द होराइजन फॉर अस।
1: इसके अलावा एक और एक अपडेट जो मेरी ओर से आज आपके लिए लेकर आए हैं, एंड दिस इज अबाउट पावर बिल्स विच विल बी यू नो गोइंग अप वेरी सून, एंड व्हाट्स ड्राइविंग द इंक्रीज। बेसिकली हाउसहोल्ड पावर बिल्स जो है दे आर अप बाय 8% अबाउट 8% दिस विंटर, और आफ्टर अ सिमिलर राइज जो लास्ट ईयर भी देखा गया था। अराउंड 40-45% ऑफ द इंक्रीज इज ड्यू हाई इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क लाइन्स जो चार्जेस कर रहे हैं उसमें, और लो गैस सप्लाई और लिमिटेड हाइड्रो जनरेशन जो है इसकी वजह से भी जो होलसेल इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है ये दरअसल बढ़ गया है। पावर कंपनीज से कि प्रॉफिट्स आर बीइंग इन्वेस्टेड इन न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसका मतलब ये होता है कि इससे थोड़ी हेल्प होगी इन फ्यूचर टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। इस वजह से अभी फिलहाल कॉस्ट जो है ये सामने आ रहा है ताकि फ्यूचर में जाकर कॉस्ट जो है कम हो और इससे बिल्स भी कम हो। दे ऑल्सो से इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू कीप द पावर सिस्टम रिलायबल एंड रिजिलियंट, और कंज्यूमर ग्रुप्स ने एक्नॉलेज किया है हाउस होल्ड आर अंडर प्रेशर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, तो इस वजह से भी इस दौरान काफी जगह पर पावर बिल्स जो है ये बढ़ते हुए नजर आएंगे।
0: और अंत में फीफा वर्ल्ड कप जो राउंड ऑफ 32 का तीसरा मैच है जर्मनी वर्सेस पेरेग्वे सेकंड हाफ में अब ये शुरू हो चुका है और अभी भी पेरेग्वे की जीत जर्मनी के खिलाफ 1-0 से हो रही है। इसी तरह से आज का पहला मैच जो हुआ शुरू हुआ था उसमें जापान ने जीत जो है ये बढ़ा ली थी अपनी इन द फर्स्ट हाफ एंड ब्राज़ील हैड टू फाइट बैक अपनी जगह जो है ये बनाने के लिए। इस मैच में क्या कुछ होगा अपडेट्स हम आपको बारी बारी से हम पर जरूर देते रहेंगे।
2: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz. Love.

0: आज की दो बातें आपके साथ शेयर करने से पहले, इफ यू रिमेम्बर, हमने प्रॉमिस किया था कि आज जाने से पहले हम आपको बताएंगे कि हु आर द विनर्स जिनके हाथ लगेगा द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए डबल पासेस. और ये जो डबल पासेस है ये सिर्फ आज के लिए नहीं, हमने कल के लिए भी आपसे प्रॉमिस किया था कि कल भी जो आपने हमारे साथ पार्ट लिया था हम अनाउंस करना भूल गए थे अनफॉर्चुनेटली, बट वील डेफिनेटली अनाउंस इट टुडे हु हैज वन इट. नाउ सबसे पहले कल और आज जो देखें अगर हमारे विनर्स दोनों के दोनों सब दोनों एक साथ बता दूंगी मैं. सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए और विनर होने के लिए आपके जो पासेस है वंस वी गेट इन टच विद यू विल गिव इट टू यू, बट राइट नाउ कंग्रेचुलेशन. और सबसे पहले अक्षेश, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स आर 8626. अक्षेश मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, एक डबल पास आपने जीता है. और दूसरे विजेता है विमलेश 0402 0402, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स. मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू यू, आप भी हमारे विजेता हुए हैं.
1: तो अपॉर्चुनिटीज और भी आपको मिलती रहेंगी डबल पासेस जो है ये जीतने के लिए. वैसे bookmyevent.co.nz विजिट करते हुए अपने टिकट्स भी आप ले सकते हैं. राइट नाउ अब वक्त है कि आज की दो बातें हम आपके लिए लेकर आएँ और थोड़ा गौर से आप सुने, होपफुली आपकी समझ में आए. कहते हैं कि कुछ लोग अगरबत्ती में भी धुएं को देखते हैं, खुशबू को नहीं. उसी तरह किसी और का नजरिया तुम्हारा अस्तित्व निर्धारित नहीं करेगा.
0: जो आपको जिस तरह से देखेगा वैसे आप बन नहीं जाओगे. डिपेंड्स व्हाट यू एक्चुअली आर.
1: कौन कैसे देखता है इट डज नॉट डिफाइन योर कैरेक्टर. सिंपल इज दैट ना. कि तो कुछ लोग अगरबत्ती देखते हैं उस या धुएं को देखते हैं, उसकी खुशबू को नहीं. तो कोई और क्या देखता है.
0: फोकस करते डिफरेंट चीज पे.
1: या और आज की दूसरी बात इसको भी थोड़ा गौर से सुने. कहते हैं कि ये व्यक्तित्व की गरिमा है कि फूल कुछ नहीं कहते. ये व्यक्तित्व की गरिमा है कि फूल कुछ नहीं कहते, वरना कभी कांटों को मसल कर दिखाइए.
0: ओह यस, हालत खराब हो जाएगी. दैट्स व्हाई पीपल डोंट डेयर डू दैट.
1: तो इसीलिए कहते हैं कि मौन किसी की सिर्फ कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन भी हो सकता है. अगर कोई चुप है इसका मतलब ये नहीं कि दैट पर्सन इज वीक. वो उसका बड़प्पन भी हो सकता है कि वो कुछ नहीं बोल रहा है. तो वो फूल उनको फूल समझें और ये उनकी गरिमा है, ये उनका कैरेक्टर है. एंड चाहे तो आप कांटे को मसल कर देख सकते हैं.
0: राइट, तो चलिए थैंक यू सो मच आप सबके साथ के लिए, आप सबके समय के लिए, आज के सफर में हमारे नाम करने के लिए. और अब तो हमारा जाने का समय हो रहा है, तो जाना तो पड़ेगा ही, बिकॉज अभी जाएंगे तभी तो कल वापस आएंगे आपका साथ देने के लिए. उम्मीद है आज का शो, आज का ये सफ़र आपने इन्जॉय किया. और जैसे कि हमने कहा, आपके साथ आपके समय के लिए हर सुबह हर रोज़ हम शुक्रगुजार होते हैं. उसी तरह से आज भी थैंक यू सो वेरी मच. कल एक बार फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम प्लेस.
1: सुबह 6 बजे आ जाएंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. बस 10 मिनट बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट और काशिका आएंगी माई टाइम में आपका साथ देने के लिए. आज फीफा वर्ल्ड कप के और भी जो मैचेस खेले जा रहे हैं उन पर भी अपडेट्स बारी बारी से आपके लिए होंगी. और भी तमाम चीज़ें हो रही हैं जिनकी जानकारी होंगी. ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है ये भी खेला जा रहा है, इस पर भी जानकारियां हैं आपके लिए. ऑल ब्लैक्स तैयारियां कर रहा है अपने मैच के लिए, डिटेल्स उस पर भी होंगी. और उसके अलावा OFC वुमेंस नेशंस कप ये भी खेला जा रहा है, इस पर भी डिटेल्स होंगे आपके लिए. और सुपर रग्बी वुमेंस कॉम्पिटिशन के सेमीफाइनल्स की तैयारियां भी चल रही हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स स्पोर्ट्स वाइज देखें जो हो रहा है. इन पर जानकारियों के लिए हम पर ही आप बने रहें 104.2 FM या रोवा पर.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
3: MediaWorks complaints. How can I help?
4: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
3: Thank you.
4: It's all I can think about.
3: What does it sound like?
4: Yeah, I'd rather not.
3: Go on, why don't you have a crack?
4: Okay, got a plumbing problem.
3: Oh, I need a bit more than that.
4: They've got your back.
3: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
4: Oh, okay.
5: There's no better plumber to give it a crack.
3: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
4: No, I want a plumber.
2: Advertise with
6: MediaWorks.
2: New Zealand listens to us.
7: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey, Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions and exclusions apply.
8: If your bank makes gajillions in profit, how come you never get a slice of it? At the Cooperative Bank, we share our profits directly with our customers. Over $25 million and counting, in fact.
9: Better.
8: To prove we put our money where our mouth is, if you switch your banking to us, you'll get a share of 25K. Not bad, eh?
9: Better.
8: Bank better, New Zealand. Switch to the Cooperative Bank today. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
0: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. New Zealander Everly Weihongi has broken her silence after 73 days in ICE detainment in the US. In an online post, she says she was never given official charges or a reason behind the detainment, but she says she is incredibly grateful to everyone who fought for her release throughout the horrific ordeal. Here, the hunt is on for a man wanted in the Auckland region. Police believe Francis Vervoorts is actively avoiding them, accused of breaching bail conditions. He is considered dangerous and should not be approached. Concerns are mounting over plans to charge tourists for visiting Cathedral Cove. Nearly 70 locals packed a recent community meeting on the issue. Acting Mayor John Grant says it might be necessary.
11: Great to have the visitors, but we would also like to balance out the costs so that our ratepayers are not having to fund some of the infrastructure.
10: And overseas, the death toll is rising in Venezuela while hope remains of finding survivors well past the 72-hour golden window. More than 1,700 are confirmed dead after last week's twin earthquakes and 10,000 body bags are being sourced by the UN. More than 5,000 are injured, 12,000 displaced. In sport, to rugby with shift four and All Blacks second five, Geordie Barrett likes what he's seen so far from the new coaching team under Dave Rennie.
12: There's such a buzz in the group, which is exciting, and we've adapted and we're learning pretty fast, and training's fun, so it's enjoyable.
10: The first test against France is in Christchurch on Saturday, the All Blacks team named on Thursday. And a fresh dumping of cash for Snow Sports New Zealand, given just over $16 million in funding across the next 4 years by High Performance Sport NZ.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: मौसम की तरफ अगर हम देखें, the highs of 15, overnight temperature of 5, आज का forecast बताया जा रहा है, south east की हवाएं धीरे-धीरे शाम तक कम होंगी. It feels like 10 degrees right now. 5-16% से बताया गया है.
0: Non-stop Bollywood.
14: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
15: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai.
0: My Time with Kashika.
13: Namaskar and a very, very good morning to you people. How are you? 30th June, yani ki ye bhi mahina chala gaya, yani ki aadha saal nikal gaya. Aur ab jab ye aadha saal nikal hi raha hai, to kyun nahi aapko हम याद दिला दें, थोड़ा लुक बैक करिए आप तो नोट की रीख करिएगा ये चुटकियों में कैसे समय निकल जाता है। ऑफकोर्स जब ये मैं बात करती हूँ कैसे चुटकियों में समय निकल जाता है, तो भाई आप चुटकी बजाते हैं और फटाफट अपनी रील को पूरा करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंस जब आप कोई रील कोई गाना देखते हैं, जब आपकी खास तौर पे गर्लफ्रेंड्स मिलती हैं। आदमी लोग तो बॉयज़ लोग तो नहीं करते ना इतना ज़्यादा रील्स वील्स, बट फिर भी करते हैं कुछ कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं घसीट लेते हैं आप। क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है? आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ ऐसा रिलेट कर पाते होंगे कि अपने आप पार्टनर्स को खींच लेते हैं रील में, या तो फिर वो कैमरा पकड़ने के लिए या मोबाइल पकड़ने के लिए भी आप उनको यूज़ कर लेते हैं। भाई इसी नोट पर उन सबको हैट्स ऑफ कहना चाहती हूँ जो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बहुत से लोग छाए हुए हैं, लेकिन ऐसे में आप जो भी करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं कशिक आपका साथ निभाने के लिए स्टूडियोज में आ चुकी हूँ। 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा। आज इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया का डे है और आज सोशल मीडिया पे एक रील तो बनती है आपकी, है कि नहीं? कोशिश कीजिएगा कि ये रील आप बनाएं और पोस्ट करें और हैशटैग ज़रूर करें। ओके, कशिश फूड्स की ओर से आपके लिए मैं टाइम लेकर मैं तो हाजिर हो जाती हूँ रिमाइंडर क्लॉक बन के, याद दिलाते हुए कि आज क्या दिन है, कल क्या दिन है, और ऐसे में ही हमारा समय इस तरह से निकल जाता है। भाई अगले हफ्ते से मैं थोड़ा छुट्टी लेना चाहती हूँ, थोड़ा भी मैं अपने लिए मी टाइम रखना चाहती हूँ, इसीलिए इस हफ्ते में ज़ोरदार आपके साथ काम करने के बाद फिर आऊँगी 15 से, लेकिन अभी के लिए गाना बजाती हूँ, वापस आती हूँ।
0: बचाओ क्या,

0: எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அட்டா. एक्सपर्ट अड्डा में एक बात तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. बहुत से लोग अपने घरों को जब बनाते हैं, अपने नए घर में जाते हैं, एक आइडियल होम में जाते हैं, तो एक क्रूशल स्टेप होता है जहाँ आप घर को एक नाम देने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर सके, है ना. ऐसा होता है और कभी कभी अपनी प्रॉपर्टी के नाम आप डिफरेंट तरीके से चूज करते हैं. समटाइम्स आप पता नहीं चलता, नेम प्लेट पे कोई नाम होता ज़रूर है. तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो होम ओनर्स को नए घर में नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आप एक नाम सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना. इफ़ इट्स अ लेंदी नेम, बहुत इंप्रेसिव साउंड करता है, बट इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एन इफेक्ट व्हेन इट कम्स टू इंस्टॉलिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर हाउस. हो एंड सो की जैसे यू नो कार के पीछे बिल्लू ते बबली दी गड्डी, यू नो, और समथिंग लाइक दैट. इट मे बी वेरी हार्ड टू रिमेंबर लंबे लंबे नाम, क्योंकि दूर से देखेंगे शायद आपको समझ में भी ना आए. तो एक घर का नाम जब आप सेलेक्ट करने लगते हैं वो मेमोरेबल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और जो नेम प्लेट है इट शुड लुक एलिगेंट. उस पर कई बार ऐसा होता है, कई घर जो होते प्रिटी साउंडिंग नेम्स होते हैं और बिना किसी नाम के मीनिंग के आप यू नो वो घर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपके घर की तरफ एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए तो उसका एक नाम होना चाहिए, एक सर्टेन मीनिंग होना चाहिए. इसीलिए शायद आप कभी हैप्पीनेस, नेचर, होप, इस तरह की मीनिंग्स के साथ लोग रखते हैं. इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू सेलेक्ट अ ट्रेंडी नेम जो प्रॉबेबली इट माइट बी यूज्ड जब वो फ्यूचर के लिए, आगे के लिए. यूजुअली जो लोग होते हैं वो जो नाम घर के रखते हैं वो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है. इट्स वाइज टू पिक अ नेम प्लेट जो इंस्पायर करता है, जहाँ पे कोई नेम प्ले यू नो कोई नेचर हो, कोई क्लासिक लिटरेचर हो, एंड यू नो समथिंग विच नेवर गेट्स ओल्ड, समथिंग्स लाइक दैट. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नेम प्लेट के लिए कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए उसकी स्पेलिंग और फॉन्ट. और जो लेटर्स आप सेलेक्ट करते हैं दे शुड बी हैविंग अनफ कॉन्ट्रास्ट, जो नेम प्लेट का बैकग्राउंड होता है उससे उसका कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए. अदरवाइज कई बार बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है. कई बार आप नोट करते हैं जो गेस्ट होते हैं आपका एड्रेस पढ़ना चाहते हैं दूर से, वो अगर नियॉन है तो शायद दिखाई भी दे जाएगा. गुड आइडिया इज़न्ट इट. और नेम प्लेट को देखते आपके घर को भी लोग पहचान लेते हैं. कई बार जो होते हैं लोग जो नाम सेलेक्ट करते हैं और जिसमें पेरेंट्स के नाम होते हैं या कुछ होता है शांति निवास या समथिंग लाइक दैट, कई बार वो रेलेवेंट हो जाता है. जब लगता है घर में स्प्लिट होने लग गया तो वो शांति कहाँ चली गई. तो इट्स नेसेसरी टू फाइंड अ नेम जो कि एक टाइमलेस हो, सूटेबल हो, और जब भी कुछ चेंज हो रहा हो घर के अंदर वो नाम कंसिस्टेंट रहे. ठीक है, अच्छा चलो यहाँ तक तो पहुँच गए. अब पहुँचते हैं हम अपने ऑफिस शाउट आउट की तरफ. जल्दी से 5599 पे आप भी मुझे कुछ टेक्स्ट कर सकते हैं.
1: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
2: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
1: कौन है?
2: Hunua और Waitakere.
1: अच्छा Hunua west में.
2: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
3: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
6: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours. दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6. लिमिटेड स्पेसेस.
7: Bunnings brings you the lowest prices on Solid Energy 15-litre kindling box, just $13.40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
9: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the redeveloped Waitemata station, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to...
10: Hey, noodles with friends in a Kingsland restaurant!
9: In just 13 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
11: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
12: अच्छा
11: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
3: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
4: Office shout out.
0: ऑफिस शाउट आउट की जब बात करते हैं तो हमारे दोस्त जो हैं अभी विलिंगटन में, आप लोग सब ठीक है ना? आई होप सो। वेरी हैप्पी चुटकी बजाते हुए साल आधा खत्म करने वाली, हैप्पी सोशल मीडिया डे वाली और थोड़ी सिकनेस वाली एंड लास्ट मिस यू ऑन योर हॉलिडे वाली। वेरी गुड मॉर्निंग काशिका जी, इतना कुछ आप याद कर लेते हैं, हैट्स ऑफ टू यू ऐश। मज़ा आ गया आपसे। वैसे मेरे से जब भी मैं वेलिंगटन आऊँगी आपसे मुलाकात ज़रूर करने वाली हूँ, बट ऑनेस्टली आप बहुत बहुत प्यार से आपने इतना खूबसूरत मैसेज लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फिर से मैं पढ़ना चाहूँगी इसे, वेरी हैप्पी चुटकी बजाते हुए साल आधा ख़त्म करने वाली। मैं अकेली नहीं हूँ, आप भी हैं मेरे साथ जहाँ आप साल आधा ख़त्म कर रहे हैं। और हैप्पी सोशल मीडिया डे वाली, बिल्कुल सोशल मीडिया भाई दिखता है तो बिकता है ना कहते हैं। और थोड़ी सिकनेस वाली, अब भाई मैंने सिकनेस कहा, मैं सबको मैं कह रही हूँ थोड़ी थोड़ी आपको छुट्टियाँ लेनी चाहिए, अपना मी टाइम रखना चाहिए। तो शायद इसीलिए मैं भी अपना थोड़ा मी टाइम लेना चाहती हूँ, थोड़ी एनुअल लीव पे जाना चाहती हूँ। तो मैं नेक्स्ट मंडे से नहीं हूँ और 15 तारीख को वापस आ जाऊँगी। एंड लास्ट मिस यू ऑन योर हॉलीडे वाली, थैंक यू सो मच, आई विल मिस यू टू। चलिए आपको लेके चलती हूँ मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक की तरफ, लेकिन इसके साथ साथ आपको याद दिला देती हूँ अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन द 3rd of July 7:30 विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में। सिद्धार्थ रंदेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शन आपके लिए। भाई ये टिकट्स बिक रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, जल्दी जाओ ये टिकट्स खरीद लो, क्योंकि इनका शो गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर आ रहा है विद द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया, जो कि एक हाउस होल्ड नेम है फॉर गुजरात। और ये अपना प्रोडक्शन जब लेकर आते हैं ना तो बहुत ही हंसी के फवारे उसमें होते हैं। इनका कॉमेडी कैरेक्टर लाइव आपको देखने का मौका मिलेगा। पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ट्विस्ट होने वाले हैं, क्या सिचुएशन होगी, जब इस प्ले का नाम इन्होंने रखा है गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, क्या एक्सचेंज करने वाले हैं सिद्धार्थ रंदेरिया, पता चलेगा। वैसे चलिए आपके लिए अब ये गाना बजाती हूँ।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वाह,
1: हाँ,
0: अद्भुत।
2: वैसे एक जो खबर आ रही है ना वन न्यूज पे, वो बहुत राहत दे रही है। अब ये कहा जा रहा है कि मोटरिस्ट्स कुड बी अबाउट टू सी फर्दर रिलीफ एट द पंप इफ द फ्रिजाइल यूएस ईरान सीज फायर डील कंटिन्यूज टू होल्ड, सेज द एए। और ये बात जो है ये प्रोबेबली जो टेरी कॉलिंस हैं पॉलिसी एडवाइज़र एए के, उन्होंने बताया कि वी आर सीइंग अ बिट ऑफ सनशाइन ऑन द होराइज़न। और कहा इन्होंने कि मई के महीने में जो एक बैरल $114 का यूएसडी का हुआ करता था, इट वाज ड्रॉप्ड टू $72 फॉर द प्राइस ऑयल इन ऑगस्ट। सो इट लुक्स लाइक दैट वी आर इन द मिडल ऑफ द डाउनवर्ड कर्व। तो ये हो सकता है एक गुड न्यूज़ हमारे लिए बन पाए, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। और ट्यूसडेज एंड थर्सडेज के दिन बेस्ट डेज होते हैं टू स्नैग अ डिस्काउंट ऑन फ्यूल, इज व्हाट वाज हिज टिप्पणी। सोशल मीडिया को माइंड में रखते हुए पर्टिकुलरली लगता है यही गाना बनाया गया होगा, क्योंकि आप कहीं पे भी हॉलिडे के लिए जा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, एक ही चीज कहते हैं, यहाँ से तू मेरी फोटो खींच, तुम यहाँ से मेरी फोटो खींचो, इस एंगल से फोटो खींचो, साड़ी पहन ली तो फोटो खींचो, अगर आपने कुछ अलग से तैयार हुए तो फोटो खींचो, कैंडिड फोटो खींच लो।

0: better.
1: Eat better, live better, और मैं चाहती हूँ कि laugh better. Laugh better इसीलिए क्योंकि आपके लिए एक डबल पास जीतने का सुनहरा मौका आ रहा है मेरे साथ. Of course, ये हंसाने के लिए आपको आ रहे हैं कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर. ट्राई विजन एंटरटेनमेंट की ओर से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा ये मौका है जहाँ पर आपको ये एक डबल पास जीतने का मौका मिलेगा. डोंट मिस दिस चांस क्योंकि ये कॉमेडी लेजेंड लाइव होने वाले हैं आपके लिए 18 जुलाई को एट द विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. bookmyevent.co.nz के जरिए आप टिकट खरीद सकते हैं. लेकिन अभी के लिए अगर आप रेडी हैं लाफ्टर के लिए आपको मुझे बताना है. 5599 पे आपको मुझे टेक्स्ट करना है. ठीक है, अब आप जब टेक्स्ट करते हैं तो आप सिंपली आप यही बता दीजिए मुझे कि आपका फेवरेट जो लाफ्टर किंग था या कॉमेडी किंग था कौन था. कॉमेडी लिखिए 5599 पे, टेक्स्ट कीजिए और अपना नाम लिख के भेजिए. जाने से पहले मुझे ये ड्रॉ करना है तो मैं ये ड्रॉ करूँगी, लेकिन आपका नाम आ जाना चाहिए. कॉमेडी लिखिए कीवर्ड, उसके बाद लिखिए आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है बॉलीवुड का. बस जल्दी से लिख भेजिए क्योंकि मैं चाहती हूँ जाने से पहले मैं आपको टिकट दे सकूँ ताकि आप कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर को लाइव परफॉर्म करते हुए देख सकें. ट्राई विजन एंटरटेनमेंट, ट्राई विजन इवेंट्स आपके लिए ये अमेजिंग सा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं. ही इज़ हैविंग फैंटास्टिक टाइमिंग. कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर की अमेजिंग टाइमिंग है और मैं चाहती हूँ कि ये आप साक्षात इसे देखें डेफिनेटली. अच्छा, नीलेश आपने लिख के भेजा जॉनी लीवर, वेल डन, आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर दिया. जाने से पहले मैंने बोला कि मैं ये ड्रॉ करने वाली हूँ तो अपने फेवरेट कॉमेडियन का नाम आप जरूर लिखकर भेजें 5599 पे.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
4: बनिंग्स ट्राइड इज हियर टू हेल्प गेट इंसुलेशन jobs sorted. Save time and money with Earthwall Glasswall R7.0. It's quick and easy to install in a single layer, meeting H1 ceiling compliance. Call 0800 134 872 to arrange a quote and easy on-site delivery at Bunnings Trade.
5: Get in the loop with ANZ to earn cash back. So when you update your wardrobe,
6: gorgeous,
5: money loops back,
6: gorgeous.
5: Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
7: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
8: Are you ready for some extra money? If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. Look out for information from Entrust in your letterbox or email inbox. Check your payment details are correct and let us know of any changes as soon as possible. If we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in late September. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: Dream Diary में मेरे पास एक आपका आया है कि आपने बताया कि failing in an exam. तो आपने बताया कि failing in an exam. तो ये dream ये completely एक अनप्रिपेयर्ड है किसी भी टेस्ट के लिए, या आप कुछ करना चाहते हैं तो ये ड्रीम में आपका फेलिंग इन एग्ज़ाम, पता नहीं कहाँ, शायद फॉर अ टेस्ट और फॉर इन अ क्लासरूम, या कोई आंसर आप भूल गए, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग फेलिंग इन एन एग्ज़ाम. तो एक यू नो इसका एक मीनिंग हो सकता है एक मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फ डाउट, या फिर एक प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या आपको लगता है आप बार बार इवैल्यूएट होते चले जा रहे हैं, डू यू थिंक यू शुड बी गेटिंग इवैल्यूएटेड और नॉट. तो ये कभी कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं और प्रेप करने में आपके लिए नज़र आ जाती हैं. अरे आई एम लविंग दी आंसर्स, कितने सारे लोग माई टाइम सुनते हो और बाकी जगह क्यों नहीं बोलते हो, बोलो बताओ. चलो ओके सलमा, चलो आपका कॉमेडी लिख के भेजा, सही कॉमेडी लिख के भेज, राजपाल यादव आपने लिख के भेजा, कॉमेडी लिख के भेजा जॉनी लीवर, मगर ये तो जॉनी लीवर आंसर सही है, लेकिन आप कौन है? अगर मैं आपको यू नो कहूँ कि आप विजेता है तो मेरे पास आपका नंबर ही नहीं, आपका नाम ही नहीं. आई लव कादर खान एंड अनुपम खेर 1921, आपका भी नाम नहीं है. कॉमेडी लिख के भेजा जॉनी लीवर राजेश्वरी आपने, भावना आपने तो नाम ही नहीं लिखा, अपना ही नाम लिख के भेज दिया. फिर कृष्णा अभिषेक लिख के भेजा आपने 2680, अच्छा आपने अपना नाम लिख के अब भेजा. अरशद वारसी मीत आपने लिख के भेजा 0169. जॉनी वॉकर आर्या आपने लिख के भेजा 8824. जॉनी लिवर क्रिश आपने लिख के भेजा, एंड अगेन जॉनी लिवर, जॉनी लिवर लुक्स टू बी वेरी वेरी फेमस. चलिए कोई बात नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के दिन है. कादर खान आपने लिख के भेजा अयाज, ठीक है मैंने आपकी भी एंट्री ले ली, थैंक यू सो मच फॉर योर एंट्रीज. अगले घंटे का वेट करो, अभी भी आपके लिए लाइंस खुली हुई हैं टेक्स्ट प्लेटफॉर्म की. दिल से दिल तक. ऐसा होता है ना कि कभी भी सोशल मीडिया पे रील्स बना रहे होते हैं, स्टेप्स बता रहे होते हैं, तो क्या करना चाहिए, शायद ऐसा

अच्छाई की तरफ मैं आपको लेके तो चल रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई रील वील बनाना चाहते हैं ईस्टर 2027 का, वेट करिए, क्योंकि ऐसे में आपको बहुत मौके मिलेंगे, चाहे वो सनराइज के व्यूज हों, सारी नई दोस्तियां करने का मौका हो, या फिर रोड ट्रिप का आपका एक जबरदस्त प्लेलिस्ट हो, जबरदस्त खाना हो और हंसते हंसाते आपका एक ट्रिप हो, तो कैसा रहेगा? ये एक स्टोरी आपकी खुद की बन सकती है और ये आपके लिए ईस्टर 2027 की स्टोरी बन सकती है। क्या होगा इसके बारे में, क्या चलने वाला है, आपको पता तो चलेगा। एक बात तो है, दैट मैं जब सोशल मीडिया की बात करती हूँ ना, इस सॉन्ग को जब भी आप सुनते हो ना, आप डेफिनेटली हिलने लगते हो, झूमने लगते हो, गाने लगते हो और रॉक करने लगते हो।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 15, overnight temperature of 5. आज का फोकस बताया जा रहा है. सदलीज धीरे-धीरे शाम तक कम होंगी, but it feels like 10 degrees right now. 5:16 पर सनसेट बताया जा रहा है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Ladies and gentlemen, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आ रही है.
3: My time with Kashika.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 11:03 होने वाले हैं. आपका साथ मैं काशिका निभा रही हूँ ऑल द वे अप टू मिड डे. एंड साथ साथ याद दिलाना चाहती हूँ, बीइंग हियर रिमाइंड योर क्लॉक, दैट आज सोशल मीडिया का एक ऐसा डे है जो अब सब बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो भाई, आपने आज क्या पोस्ट किया, क्या पोस्ट नहीं किया? मैं खुद सोच रही हूँ मैं क्या पोस्ट करूँ. ओके, सो मेरी तरफ से तो अभी कुछ भी, मैं ब्लैंक हूँ. लेकिन लेट मी थिंक, अगर कोई आप कुछ आइडिया दे सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताओ. ठीक है, आई'ड लव टू डू दैट. चलिए, यहाँ तक पहुँच गए हैं. लेकिन हाँ, आपकी एंट्रीज़ मैंने ले ली हैं ऑलरेडी फॉर दी कॉमेडी नाइट्स विद कृष्णा अभिषेक. थोड़ी देर बाद मैं विनर का नाम अनाउंस करूँगी, क्योंकि मुझे अब जो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट है उसकी तरफ भी जाना है, जो कि करण औजला आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड है. बाय द वे, आप हमारे म्यूजिक स्टेशंस को सुनते आते हैं कि नहीं? रोवा ऐप पे कौन मुझे सुन रहा है इस समय? चलो लिख के फटाफट बताओ. वैसे रोवा ऐप पे हमारे तरह तरह के जॉनर्स जो हैं आपको सुनने को मिलते हैं, चाहे वो 60s 70s के हिट्स हों, हम रिवाइंड में 80s के हों तो आप जुक बॉक्स सुन सकते हैं. फीजी कीर्तन का जो एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है भजन का, वो आप कीर्तन का और भजन का दोनों सुन सकते हैं. चढ़दी कला पंजाबी गाने सुन सकते हैं, और राहत फतेह अली खान के सूफी कव्वाली और उनके गाने, बॉलीवुड के सॉन्ग, ये सब भी आप डेफिनेटली इनके म्यूजिक स्टेशन के जरिए सुन सकते हैं. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए आ जाता है माय टाइम मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान. मैं क्योंकि आपकी रिमाइंडर क्लॉक हूँ, मुझे बताना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हो सकता है, लगता है कि कुछ दिनों बाद न्यूजीलैंड में कुछ एक हाई अलर्ट आ सकता है. अब ये क्या है, कुछ लैंड हो रहा है और बताऊंगी इसके बारे में. अभी के लिए गाना.
0: बचाओ क्या,

0: सो केसेस ऑफ बर्ड फ्लू जो है वो पता चल रहा है कि दूसरी तरफ चल रहे हैं. अब न्यूजीलैंड को इसमें हाई अलर्ट का एक साइन आ रहा है, जहां पे लगता है कि ये बहुत जल्द यहां लैंड होने वाला है. बायो सिक्योरिटी के मिनिस्टर एंड्रयू हॉगर्ड ने बताया कि बर्ड फ्लू हैज़ बीन एक्सपेक्टेड टू हिट आवर शोर्स पिछले साल से, एंड ही इज सेइंग दैट कि ऑस्ट्रेलिया में तो ये सर्टनली डेफिनेटली है, बट इट्स ऑन इट्स वे. इवेंचुअली वी विल स्टार्ट गेटिंग दिस सी बर्ड्स कमिंग इन अंटार्कटिका से, एंड प्रॉबेबली ये जो स्प्रेड इन है ऑस्ट्रेलिया में, दे विल बी कमिंग अक्रॉस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. इट्स वेरी प्रिटी मच श्योर दैट ये सिनेरियो हो सकता है. और उन्होंने बताया कि ये बर्ड फ्लू का आउटब्रेक न्यूजीलैंड में इम्पैक्ट कर सकता है टू द प्राइस ऑफ एग एंड चिकन मीट. बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं जो बांस में हैं, जहाँ पे फ्री रेंज के फ्लॉक उनके हैं, वहाँ पे डेथ रेट जो है इज राइट नाउ अराउंड 75%. बर्ड फ्लू जो है उसके एजेंडा में ये है कि मिस्टर हॉगार्ट की मीटिंग जो हुई थी असिस्टेंट मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के एग्रीकल्चर, उनसे बातचीत जब हुई तो उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड में आउटब्रेक अभी नहीं हुआ है, बट ये डिस्कशन चल रही है कि क्या हो सकता है आगे. सो इन्होंने फर्स्ट बर्ड फ्लू जो था ऑस्ट्रेलिया ने 20 जून को इनको वो पकड़ा, एंड इन अ ब्राउन स्कुआ बर्ड जो बीच पर थी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. और उसके बाद एक सेकेंड केस 2 दिन के बाद कन्फर्म हो गया. अब न्यूजीलैंड इज़ अंडर प्रिपरेशन, क्योंकि ये रोल आउट करना चाहते हैं फ्री रेंज के जो चिकन फार्मर हैं उनको बताना चाहते हैं कि जो विजिटर्स एंटर कर रहे हैं इन हिज कार्टन फार्म और बाकी के एरियाज़ में बाकी लोगों से. उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू पिछले 5 सालों से ऐसा लग रहा है अब आ रहा है अब आ रहा है. न्यूजीलैंड इज़ द लास्ट प्लेस ऑन द अर्थ to get this disease. So we have some advantage definitely to ourselves. लेकिन हो सकता है ये birds जब migrate करके आती हैं वो stress सबके लिए बना होता है, खासतौर पर ये farmers के लिए. तो we'll wait and watch के क्या होता है, but be very very careful. एक official advice ये था that anyone जो observe करते हैं group of 3 or 4 dead birds, अगर आप observe करते हैं immediately आपको मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को रिपोर्ट करना है. आप बीच पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो डेफिनेटली आप क्रूज़ करने जाते हैं कहीं पे भी, लेकिन इकट्ठे आप डेड बर्ड्स को देखें तो बी वेरी वेरी अटेंटिव, बी वेरी वेरी केयरफुल. कमिंग अप नेक्स्ट इज अ 6-word स्टोरी.
1: कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन.
2: ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के.
3: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
5: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a smart shopping buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
6: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
7: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
8: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six-word story.
9: Alright, मेरी आज की सिक्स वर्ड स्टोरी काफ़ी सिंपल है. इट्स नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट. तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ लिखूं जो शायद आप लोगों को पसंद आए. एंड दिस इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट. और मैं ये कह सकती हूँ, एक आपका आया कि डेफ ईयर्स हर्ड आई लव यू. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट. आई थिंक जो मुझे मेरा हल्का सा मुझे अपनी मेमोरी जो है ध्यान आ रही है वो उससे पता चलता है. लेकिन मैं कहना चाहती हूँ दैट द क्वाइट नर्सरी सेड एवरीथिंग नेसेसरी. द क्वाइट नर्सरी सेड एवरीथिंग नेसेसरी. क्या मतलब हुआ इसका? द क्वाइट नर्सरी सेड एवरीथिंग नेसेसरी कि वहाँ कोई बच्चा ही नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि बच्चे सारे के सारे सो गए थे. कुछ भी ऐसा हो सकता है कि नहीं? अच्छा चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे विनर का नाम अनाउंस करना है. सो भावना, आपके लास्ट डिजिट्स हैं 2680. हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और बताएगी किस तरह से कॉमेडी नाइट्स में कृष्णाभिषेक को आप देखने जा रही हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस.
8: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Go.nz.
1: बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है अभी यहाँ पे वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32, जहाँ पे दोनों का स्कोर इक्वल है एंड जर्मनी एंड पैराग्वे का बिल्कुल 1-1 ऑल पर हैं। ये लाइव पेनल्टीज भी चल रही हैं। इसके साथ साथ नेदरलैंड्स एंड मोरक्को का जो मैच है वो आज दोपहर 1 बजे होने वाला है। कहा ये जा रहा था कि भाई किसकी जीत होगी जापान एंड ब्राज़ील के बीच में, तो ब्राज़ील की जीत हुई 2-1 से। और ऐसे में अपडेट्स आपके साथ हमारी चलती ही चले जाएंगे। स्टे ट्यून, कीप हमिंग ऑन, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट।

0: वैसे एक बात तो है कि जब मैंने आपसे कहा था कि करण औजला से रिलेटेड मुझे आपको कुछ करना है, लेकिन एक करेक्ट एंट्री जो है आपकी टाइटल सॉन्ग जो है, मैं आपको गेस करना पड़ेगा कि क्या है. सो आप बहुत सिंपल तरीका है, के ए याद रखना है आपको, के ए यानी कि करण औजला का शॉर्ट फॉर्म. मैं गाना बजाऊंगी और आपको गेस करना है कि गाना कौन सा है और गाने का टाइटल क्या है, ठीक है. 5599 पे आपको के ए लिख के उसको मुझे टेक्स्ट करना है. दैट्स अबाउट इट. याद रहे कि ये पधार रहे हैं हमारी सुपर सिटी में पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर, और दिस इज़ गोइंग टू बी मैसिव, क्योंकि इसमें चार्ट टॉपिंग हिट्स होने वाले हैं, कुछ एंथम्स जो आपको बहुत पसंद है वो होने वाले हैं. स्पार्क अरीना में 25 अगस्त के दिन करण औजला लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. एक स्पेशल गेस्ट जो है, जो हिट मेकर इकी, ये भी आने वाले हैं अपनी एनर्जी लेवल्स लेके. वैसे हम .rova.nz के ज़रिए आप टिकट्स और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, या livenation.co.nz के ज़रिए भी. 6 जुलाई के दिन ये ड्रॉ होने वाला है. अब भाई ये महीना तो ख़त्म समझो ना, और जुलाई 6 यानी कि कमिंग मंडे मैं आपके लिए गाना बजाती हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट. आपको गेस करना है कि वो कौन सा गाना है. तो बहुत सिंपल आप लोगों के लिए आज मैंने किया.
1: My time with Kashika.
2: Wow.
0: बस मैंने आपके लिए जो बजा दिया था, इसका एक हुक स्टेप बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड आई एम श्योर बहुत से लोग इसको पहचान भी पाएंगे. वैसे एक चीज़ जो है, यू नो, हम लोग आज जब बातें कर रहे हैं कि अबाउट सोशल मीडिया क्या चलता है क्या नहीं, तो एआई ने इसको भी एकदम कैप्चर कर लिया. आपको रील बनानी कुछ करनी है, आप बस उसमें एआई में डाल दो, आपके लिए रील बना के रेडीमेड कर देती है. लेकिन एआई एक्चुअली इसका क्या मीनिंग है हमारी ज़िंदगी में, आपको ये बताना है, आपको ये समझना है. लेकिन आपको समझाने के लिए एआई स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या जो है सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर प्लेटफॉर्म एट सेरको और AWS कम्युनिटी बिल्डर हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बताने वाले हैं. तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपको फ्रॉम चैट GPT टू AI, किस तरह से आपकी जॉब सिक्योरिटी है, प्राइवेसी कंसर्न है, अपॉर्चुनिटीज़, और क्या स्किल्स जो हैं आपको अब से लेके फ्यूचर तक में आपको चाहिए. तो बस आपको थोड़ा क्यूरियस है अगर जानने के लिए, तो ड्राइव शो के सैंडी और रुस्बे ने इनसे बात की. अनफिल्टर्ड ड्राइव में आप ज़रूर इनके साथ ये कैचअप कर सकते हैं, जहां ड्राइव आप लिख के भेजें. ब्रेकफास्ट शो की नोकझोंक जो पूजा विजय की है, अगर आप इसको भी सुनना चाहते हैं तो BF लिख के भेजें. एंड अच्छा चलो भाई, 0003 ऑलराइट, 0302 राइट. अच्छा चलो, नाम भी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, चलेगा.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
4: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का, और वेसिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
5: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time.

0: From the redeveloped Waitemata station, you'll be able to go from instant noodles for one and the library to... Hey, hey! Noodles with friends in a Kingsland restaurant! In just 13 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
1: Don't miss it. Get 2 months free when you sign up to NIB Everyday Health Cover for dental, physio, GP and more. Offer extended to 30 June 2026. Credit applies after paying for your first month. Eligibility criteria and T's and C's apply. Visit nib.co.nz to find out more.
2: Please use your imagination for the following ad.
3: If I won Powerball, I'd build my dream. Then I'd even things out with a massive donation to...
2: Imagine winning $17 million this Wednesday. Play in store or online.
4: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
5: Rescue me, recycle me.
6: रेस्क्यू में रिसाइकल में एक चीज़ जो थी जो मेरी मुलाकात हुई किसी से और मैंने उनसे जब बातचीत की तो यही पता चला कि उन्होंने कहा कि भई हम ऐसा करते हैं ना, हम घर में कितनी सारी सब्जियां होती हैं वो हमारी जब बच जाती हैं तो हम क्या करें. तो उन्होंने कहा अरे बड़ा सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, आपको छोटा छोटा प्याज काटना है. कहाँ काट लिया आपने, छोटा छोटा टमाटर काट लिया, काट लिया अदरक लहसुन, ऑफकोर्स उसका पेस्ट हमारा रेडी ही रहता है, फ्रिज में पड़ा हुआ रहता है. आपने छोका लगाया, पहले तो आपने प्याज लिया उसको अच्छे से गुलाबी कर दिया और गुलाबी करने के बाद प्याज को आप फिर जा सकते हैं उसमें अदरक लहसुन डालें, फिर टमाटर डालें और ये जो वेजिटेबल्स बची हुई हैं ना इनको हल्का सा आप मैश कर दीजिए और साथ में आलू अगर इसके साथ आप मैश कर दें. तो मैंने ये सब चीज़ें डालनी शुरू की, मैं कहती ये तो पाव भाजी बन गई. कहते हाँ एग्जैक्टली एज सिंपल एज दैट. मैं कहा अच्छा ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका आपने मुझे एक्सप्लेन किया, विच इज़ फैंटास्टिक. आई थिंक इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा क्रिएटिव बन जाएं तो वी कैन प्रोबेबली डू मैनी मैनी थिंग्स विद इट. अगर आपके माइंड में भी कुछ है तो ज़रूर मेरे साथ आप शेयर करते हैं. बट आज की टेक्स्ट देखकर मुझे लगता है माई टाइम बहुत से लोग सुनते हैं. सो बिग थैंक यू टू जितने लोग भी इस समय मेरे साथ ट्यून्ड इन हैं. मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी साथ में रहते हैं ना एक अलग से हौसला हमारा बन जाता है और अगर आप किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो वो हौसला डबल ना ट्रिपल हो जाता है. तो अगर आप भी आप चाहते हैं कि हम आपकी कम्युनिटी की आवाज़ बने तो आप बस hum.fm.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं. और न्यूजीलैंड आर्ट कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए श्री राम लीला लेकर आ रहे हैं. स्टॉल्स की इंक्वायरी के लिए मास्टर अशोक से संपर्क करें ऑन 02-179-5459 के जरिए. आपकी 6 वर्ड की स्टोरी मेरे पास आ चुकी है. माय बैड, मैंने इसे देखी नहीं थी. 4281, थैंक यू सो मच. और आपने लिख के भेजा है मुझे, फेलियर टीचेस व्हाट सक्सेस कुड नेवर. यस आई एग्री विद यू, फेलियर टीचर्स व्हाट सक्सेस कुड नेवर. बिल्कुल सही बात है, हम जब तक चोट नहीं खाते, जब तक हम गिरते नहीं, जब तक हमें वो एक धक्का नहीं लगता तब तक हम कैसे हम कुछ सीख पाते. जब तक हम गिरते नहीं हैं, गिरने के बाद उठते नहीं हैं, संभलते नहीं हैं तब तक हम कैसे उठना सीखेंगे. ब्यूटिफुली सेड, फेलियर टीचर्स व्हाट सक्सेस कुड नेवर. लविंग इट, थैंक यू सो मच. चलिए ये गाना आपके लिए डेडिकेटेड.

इससे पहले कि मैं थ्रोबैक की तरफ बढ़ूं, मैं बता देती हूं कि जर्मनी के खिलाफ पैरागे की जीत हुई फुल टाइम पर, और चलिए उनकी शायद 4 पेनल्टीज थी और जर्मनी की 3। ऐसा हो जाता है, और कहाँ हम कितने लोग जर्मनी को जब पुश कर रहे होते हैं तो सडनली एक नया रिज़ल्ट आता है, जैसे कि ब्राज़ील के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत मौका है जब वो आगे आ गए हैं, राउंड 32 जब चल रहा है। तो ऑफकोर्स कल फ्रांस एंड स्वीडन का जो मैच होगा लगता है, एंड मेक्सिको एंड इक्वाडोर का मैच होगा, एंड ये चलने वाला है। लेकिन आज 1 बजे न्यूजीलैंड टाइम के अनुसार नेदरलैंड्स एंड मोरक्को का मैच होगा, तो हमारी जो अपडेट्स होंगी उनके लिए आप डेफिनेटली ध्यान देते चले जाएं। आज सोशल मीडिया का दिन है, और जब मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया का दिन है तो एक पर्टिकुलर सॉन्ग हमेशा जब रील्स बनती हैं वो बनती हैं तब जब खास तौर पे किसी की एनिवर्सरी होती है या फिर वैलेंटाइंस डे होता है, कुछ ऐसी ऐसी दिन होते हैं, ऐसे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे वो मेमोरेबल बनाने के लिए, वाउज लेने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। आई नो ये थोड़ा लंबा है बट बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। आई एम श्योर मीनाक्षी शेषाद्री इसमें इतनी सुंदर लगी है अलॉन्ग विद विनोद खन्ना जी, देख के मज़ा आता था इस गाने को। सीरियसली इसी गाने के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ, एंड कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है मंगलवार, आपका दिन और भी मंगलमय बनाने के लिए केतन नारायण का साथ दीजिएगा। आने वाला दिन है बुधवार, मेरी मुलाकात होगी हम पार्क दिन। टेक केयर, कशिका साइनिंग ऑफ हियर।